बहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंद रहा, आनंद लो.
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज.
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। आज हम देखते हैं

कि आज के समय में लोगों को बोलने से पहले सोचने और समझने की क्षमता कम ही हो गई है। शब्द ही जबकि व्यक्ति की दौलत है। तो आज हम चर्चा करते हैं शब्दों की पूंजी पर। एक गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक की उम्र 12 साल तो दूसरे की 8 साल थी। एक दिन खेलते खेलते बड़ा लड़का गेंद उठाने कुएं के पास गया तो उसका पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। छोटे लड़के ने देखा कि मदद के लिए उनके आसपास कोई नहीं है। तब उसने कुएं के पास बड़ी बाल्टी रस्सी कुएं में डाल दी और बड़े लड़के से उसे पकड़ने को कहा। फिर छोटा लड़का उसे खींचने लगा। आप ही देर की मेहनत के बाद अपनी भरपूर ताकत झोंक कर छोटे ने बड़े लड़के को किसी तरह बाहर निकाल दिया। दोनों ने सोचा कि गांव में जाकर यह बात सबको बताएंगे तो सब नाराज होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सभी ने उनकी बात को मजाक समझ लिया और 8 साल का छोटा सा लड़का 12 साल के बड़े लड़के को कुएं से खींचकर कैसे बाहर निकाल सकता है, यह तो असंभव लगता है। गांव के ही एक समझदार बुजुर्ग को बच्चे की बात पर यकीन था। सभी ने बुजुर्ग से पूछा, आपको क्यों लगता है कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं और छोटा लड़का ऐसा कर सकता है? बुजुर्ग बोले, छोटा लड़का ऐसा कर पाया क्योंकि उस समय उसके आसपास कोई यह कहने के लिए नहीं था कि बच्चे तुम यह नहीं कर सकते। यहाँ तक कि खुद उस लड़के ने भी अपने आप से ऐसा नहीं कहा कि इस परिस्थिति में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखते हैं, अच्छे शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। तो हम जैसे ऊपर देखेंगे, अभी हम देखते हैं कि घटना का जो तात्पर्य है, यहाँ की शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द इतना प्रेरित कर सकते हैं कि व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दे। ये शब्द ही है जो प्रेम का बीज बो देते हैं। तो वेमन्स में हम देखते हैं कि भी बढ़ा देते हैं यहाँ पर, जहाँ अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बात को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है, वहाँ कोई एक नकारात्मक शब्द पूरी बात को ही बिगाड़ देता है। अच्छे शब्द छोटे होते हैं और बोलने में आसान भी, लेकिन इनकी जो प्रतिध्वनि लंबी होती है और कभी कभी तो अंतहीन होती है। अच्छे शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। मनुष्य को जीवन में केवल दो शब्द ही जो है नष्ट करते हैं, अहम और वहम। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है शब्दों की पूंजी। जैसा कि हम देखते हैं, महान व्यक्ति अपने शब्दों पर हमेशा कड़ी नजर रखता है। शब्दों द्वारा ही सम्मान व अपमान होता है, इसलिए सदा शब्दों को तौलकर बोलें। अक्सर सुनने में आता है, किसी ने कहा मेरी जुबान जो है वो फिसल गई, इसलिए मैं अपने बोले हुए शब्दों को वापस लेता हूँ या अपने कहे हुए शब्दों पर माफी मांगता हूँ। जिस व्यक्ति के शब्द जितने गरिमा में होंगे, उसका व्यक्तित्व भी उतना ही सम्माननीय और गरिमापूर्ण बनकर उभरेगा। महान व्यक्ति अपने शब्दों पर हमेशा कड़ी नजर रखता है, क्योंकि एक छोटा सा भी नकारात्मक या अनुपयुक्त जो शब्द होते हैं वो लोगों में घमासान करा सकता है और उसकी जो छवि है उसको दागदार कर सकता है। सकारात्मक शब्द लोगों के अंदर लोगों में जो है उत्साह भर देते हैं, उन्हें चोटी पर पहुंचा सकते हैं। यही है शब्दों की ताकत। हर शब्द का मोल होता है। शब्द सदा कसौटी पर होते हैं। विनम्रता भरी शब्द में वह ताकत होती है जो बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। हर बोल हर शब्द कीमती है। सही शब्द का उचित उपयोग अच्छी समझ और संवेदनशीलता को ही नहीं बल्कि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी जाहिर करता है। हर शब्द के मायने होते हैं, वैसे ही हर शब्द का मूल होता है। तभी तो कहावत है, तोल मूल की बोल। सटीक व अच्छे शब्दों का सही उपयोग वक्ता को प्रेरक और प्रभावी बनाता है। हाँ, तर्क किया जा सकता है कि हम हर समय मंच पर तो नहीं होते हैं जो सही ही बोले, परंतु हर वक्त चाहे कहीं भी हो अपनी छवि की कसौटी पर जरूर होते हैं, जिसका हमारे शब्द

छूट गया, शब्द न वापस आए। शब्द जो हो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए। शब्द में है रंग भाव का, शब्द है मान महान। शब्द जीवन रूपी भी रूप है, और शब्द ही दुनिया जहान। शब्द ही कटुता रूप दे, शब्द ही बैर हटाए। शब्द जोड़ते टूटे मन, और शब्द ही प्यार बढ़ाए। तो आपने देखा, शब्दों की अगर हम भाषा के साथ अपने शब्दों पर भी ध्यान दें, तो शब्दों की महत्ता अधिक होती है। हमारे शब्द हमारी मान, हमारी मर्यादा और हमारे हर व्यक्तित्व को वो प्रस्तुत करता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और मैं ब्रेक के बाद फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है शब्दों की पूंजी। जैसा कि हम देखते हैं, शब्द जो है, शब्द भी एक तरह का भोजन है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है ये आ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोईया कोई नहीं है। शब्द का अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका जीवन सुंदर बन जाता है। अच्छे शब्द मन को आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। जब हम भगवान की याद में बोलते हैं तो हमारे बोल में ईश्वरीय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे सुनने वाले को सुकून मिलता है और वह बदलने लगता है। शब्दों के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। शब्द हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। शब्दों की शक्ति अतुल्य है। अच्छे शब्दों का प्रयोग व्यक्ति का जीवन बदल देता है।

जितनी ज्यादा अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगी उतने ही ज्यादा आप अच्छे शब्द मन में आपके आएंगे। सही बात सही समझ की साथ केवल अच्छे शब्दों के माध्यम से ही की जा सकती है। तो हमारे पास भले ही अधिक संपत्ति अब न हो लेकिन शब्दों की पूंजी जरूर होनी चाहिए। शब्द है जो वही है शब्दों की पूंजी। और यदि किसी व्यक्ति के हाँ किसी व्यक्ति की मौन की धारणा अगर है उसने मौन रखा है तो हम देखते हैं कि तो भी उसे शब्दों का ज्ञान तो है ही अर्थात शब्दों को जन्म देने की क्षमता तो उसमें है ही। शब्द यदि सत्य से जुड़े हैं तो व्यक्ति हल्कापन महसूस करेगा और यदि शब्द झूठ से जुड़े हैं तो अपनी याददाश्त जो उसकी याददाश्त शक्ति है वो तेज रखनी होगी। अतः शब्द ही व्यक्ति की दौलत है इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। इसलिए अपने शब्दों को दूसरों के कल्याण अर्थ को भी करें इसका प्रभाव हमारे पास खुशी के रूप में लौट कर आएगा। तो यही है शब्दों की पहचान और शब्दों की पूंजी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार ओम शांति।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को एक नए अंदाज से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये जाना कि वही रिश्ते जो कई बार बोझ लगने लगते थे, लगता था कि अरे ये रिश्ता कैसे निभेगा, अगर खुद को पहचान के फिर इस रिश्ते को देखा तो लगा कि यही रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है रिश्ता मेरा खुद अपने आप से और परमात्मा से, जिसे मैं आज तक तलाश रहा था और आज खुद उसने अपनी पहचान दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सत्य शिवानी, हमने हर रिश्ते को नए अंदाज में देख लिया, उसे अच्छी तरह से जाना और फिर देखा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, और हर बार की तरह एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये बात कहने लायक बनते हैं। अभी भी एक रिश्ता बाकी है और वो मेरा खुद से। अपनी पहचान तो मैंने कर ली, परमात्मा से पहचान भी हो गई, लेकिन वो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया या परमात्मा से कायम किया, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए?
1: किसी भी रिश्ते को बनाने में इनिशियल स्टेजेस में चाहिए होता है समय। हम कहते हैं रिश्ते की फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जो डेवलप होती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज आई वर्क ऑन द रिलेशनशिप। जितना मैं आपसे मिलती जाऊं, आपके संपर्क में आऊं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है या वो रिस्पेक्ट जिस लेवल पर चाहिए वो डेवलप होती है। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ के समय पर हम औरों के लिए तो सबके लिए समय निकाल देते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार, कलीग्स, एवरीबडी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी टाइम और एनर्जी इतनी फिनिश हो जाती कि हम कहते हैं अपने लिए समय निकालना। सो इफ वी आस्क एनीबडी कि आप रोज सवेरे अपने लिए 15 मिनट निकालिए, जिसमें आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और आप उस परमात्मा के साथ हैं, एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग, जब आपके बाकी सारे रिश्ते सोए हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आपके सारे रिश्ते बाकी जाग जाएंगे, यू विल अगेन गेट इनटू दैट एनर्जी एक्सचेंज, व्हिच इज ओके, व्हिच इज फाइन, लेकिन उससे पहले 15 मिनट फॉर दैट वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप क्या हम निकालने के लिए रेडी हैं? तो जनरली पीपल विल इमिजिएट, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है टाइम नियम।
0: अच्छा, और यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, अपने को वक्त नहीं दे रहा, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
1: दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम समझते हैं अपने को वक्त देना।
0: आई एम सो सेल्फलेस, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट आई थिंक समवेयर वी फॉरगेट।
1: एब्सोल्युटली। एक हम साइकाइट्रिस्ट से मिले, जो बहुत सीनियर लेवल के साइकाइट्रिस्ट हैं, जो लोगों के स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों को ट्रीट करते हैं, लेकिन कहीं उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो खुद बहुत तनाव में है। तो उनसे बात करते हुए हमने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योर सेल्फ एवरी डे। सो ही सेड 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, नो सिस्टर, आई हैव नो टाइम, एंड ही वॉज वेरी proud of this, ke I do not have 15 minutes.
0: I give all my time to others.
1: To everybody. Kyunki mujhe dusron ko heal karna hai. And he said like, 14 ghante mere apne profession mein jaate hain. My work is my top priority. To 14 ghante mere din mein uske liye hote hain. Baki commuting, travel time, aur jo thode se 2-3 ghante bach jaate hain, wo mere parivar ke liye hote hain. To ab is sad mein, apne liye samay nikalna, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप कुछ और बताइए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता, बिकॉज माई टाइम इज फॉर एवरीबडी। तो हमने कहा प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है? वर्क, फैमिली, एंड देन सेल्फ, एंड दिस हैज बिकम प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी पीपल। यू नो, सभी जो वर्किंग लोग हैं, काम, वर्क प्लेस, फिर परिवार, और फिर हम खुद। और ये दोनों कैटेगरीज, परिवार एंड वर्क प्लेस, इतनी सारी टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सो नाउ ईच वन नीड्स टू आस्क देमसेल्व्स कि वर्क, फैमिली, सेल्फ, इज दिस द राइट ऑर्डर? एंड एवरीवन फील्स दिस इज द राइट ऑर्डर बिकॉज दे से आई गेट पेड एट वर्क, यू नो, तो मेरा कर्म मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर मेरी फैमिली, यू नो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। वी वुड फील विद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इट शुड बी टोटली द अदर वे अराउंड। क्योंकि काम पे भी हम क्यों जाते हैं? अपने परिवार के लिए, उन्हीं के लिए वो खुशियां, वो सब कम्फर्ट जो भी हमें लाने, उसके लिए हम काम पे जाते हैं। तो काम से ऊपर एक्चुअली
0: परिवार
1: है, डेफिनेटली, नहीं तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब परिवार को भी मुझे जो देना है, खुशी, सुख, शांति वो मैं तब दे पाऊंगी जब वो मेरे अंदर भरी होगी। तो फिर परिवार से भी ऊपर हो गया माई सेल्फ। नाउ व्हेन आई पुट द इक्वेशन द अदर वे राउंड, वर्क, फैमिली, सेल्फ, तो सेल्फ के लिए समय नहीं निकाला, इंटरनल रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब है, कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट की हालत में सुबह सुबह परिवार के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, टाइम नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर हम ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो एनर्जी लेवल हम ऑफिस में कैरी करते हैं और वो हम सभी को ट्रांसमिट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ उसका असर परिवार पे भी पड़ा और वर्क पे भी पढ़ा। तो ये कहना कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है इज नॉट फेयर, क्योंकि हम उसके साथ भी चीटिंग कर रहे हैं। वी आर ओनली गिविंग नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो हमारी गलती भी नहीं है, वो हमारे पास है। नाउ इफ आई चेंज द ऑर्डर एंड आई से सेल्फ, फैमिली एंड देन वर्क, यू नो सेल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स टॉप ऑन द
0: थिंग। आई थिंक बाकी दोनों चीजें सेल्फ पे डिपेंडेंट,
1: सेल्फ पे डिपेंडेंट है, लेकिन सेल्फ जब हील्ड होगी, अंदर से बिल्कुल भरपूर होगी, उस आत्मा के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे परिवार में, वेरी हेल्दी। और एक हेल्दी फैमिली को छोड़कर जब आप काम पर जाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, यू विल बी टोटली एम्पावर्ड टू गिव एवरीथिंग टू वर्क। तो यू विल बी डूइंग जस्टिस टू ऑल थ्री, रादर राइट नाउ वी आर चीटिंग ऑल थ्री बाई सेइंग आई डोंट हैव टाइम। तो अपने लिए समय निकालना, वी शुड रिमेम्बर दैट आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, because unless I am healed I cannot do anything,
0: I cannot achieve anything. That's very true.
1: kuch bhi
0: nahi, I have met people, ek social organization mein main thi, they said ki hum new year resolutions ki baat kar rahe the, to almost everybody was saying ki main logon ke liye help karunga, main itne logon ko introduce karunga iske bare mein, lekin finally I think kyunki hum khud हील नहीं है तो हम लोगों को क्या बता सकते हैं।
1: क्योंकि आज जो सबको चाहिए वो ये चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ये सबको चाहिए, और ये सबको देने के लिए मेरे अंदर खुद कुट कुट के भरी होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे चाहिए अपने आप से बहुत अच्छा संबंध, और इन सब का जो सागर है, जो स्रोत है, निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, तो उसके साथ

0: जब संबंध जुड़ जाता है तो जो उसके पास है वो ऑटोमेटिकली सब मेरा हो जाता है. सो आई गेट फिल्ड इनसाइड एंड देन आई एम एबल टू गिव टू एवरीबडी. अब जब हम अपने साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं तब अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है.
1: खुद में विश्वास,
0: आज खुद में विश्वास नहीं है, आज हमारे खुद की रिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं डेफिनेटली. और उसका प्रूफ यही है कि हमें औरों को रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जब कोई और हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं. अगर सेल्फ एस्टीम बोई अंदर अगर खोखलापन है तो जैसे ही दूसरा कोई हमें छोटी सी ऐसी बात कहेगा तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे. जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ और उस रिस्पेक्ट से अपने आप को देखते हैं कि आई एम नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ बट आई एम व्हाट आई एम हियर इनसाइड, तो फिर कोई और मुझे हर्ट नहीं कर सकता. आई टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब मैं जो सोचूंगी
1: सही सोचूंगी
0: और वो ही बोलूंगी और वो ही करूंगी. तो ऑनेस्टी विद द सेल्फ. अपने आप से धोखा करना बंद कर देंगे. जब अपने आप से धोखा करना बंद करेंगे औरों से धोखा अपने आप बंद हो जाएगा, और दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले
1: हैं, दूसरों की उम्मीद भी बंद हो जाएगी.
0: दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं ये डर से भी मुक्त हो जाएंगे. तो व्हेन आई स्टार्ट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, मेरा औरों को विश्वास करना बहुत इजी, और मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, इस विश्वास के साथ चलना भी बहुत इजी. ये सारा दिन डर रहना कि मुझे धोखा तो ना दे दे, मुझे छोड़ के तो ना चले जाए, ये सिर्फ उसी आत्मा के अंदर होगा जो अपने आप को बहुत धोखा देती है. सोचती कुछ और है, करती कुछ और है. जिस दिन वो बंद हो गया धोखा देना, थिंग्स गोइंग टू बी वेरी इजी. लेकिन उसके लिए अपने साथ वो रोज समय निकालना पड़ता है, जिसमें हम अपने आप से बैठकर कहें कि सेल्फ काउंसलिंग करते हैं. वी सॉ ड्यूरिंग दिस होल जर्नी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि अपने आप की जो हम काउंसलिंग कर सकते हैं वो शायद कोई भी और नहीं.
1: और एक्चुअली अपने आप से जब हम बात करने लगते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आंसर से मिलने लग जाते हैं.
0: आंसर सारे यही हैं, सारे आंसर्स यही हैं, क्योंकि सोल का, आत्मा का पूरा रोल इस सीडी के अंदर रिकॉर्डेड है. यू नो, तो अगर मेरे को कल कुछ काम है या कोई प्रॉब्लम है, मुझे अगर उसका आंसर चाहिए कि कल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप मुझे नहीं बता सकते क्योंकि आपकी वो सिचुएशन नहीं है. हाँ, आपके अनुभव से मैं कुछ ले सकती हूँ प्रेरणा, लेकिन फाइनल डिसीजन कि मुझे क्या करना होगा हैज टू बी माइन. तो इफ आई कैन बी साइलेंट, आई कैन एक्चुअली सी कि मेरा रोल कैसे इवॉल्व होने वाला है, क्योंकि सारा रोल तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है. तो इसलिए साइलेंट हो जाए तो उससे क्या होगा, इंट्यूशन पावर, क्योंकि व्हाट आई कैन सी मतलब इंट्यूशन, मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ जाएगी कि ऐसे करना है, सोल्यूशन आ जाएगा. क्यों? माइंड साइलेंट. लेकिन माइंड में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे ये जब ऊपर की लहरों में सारी डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो सोल्यूशन है लेकिन दिखाई नहीं देगा. तो अंदर का जो ट्यूटर है उसकी तरफ नहीं देखे, और बाहर के सब ट्यूटर्स की तरफ देखते हैं तो एडवाइस मिलेगी बट नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर मी. वो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट बताएंगे,
1: उनके लिए सही होगा.
0: लेकिन मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो सिर्फ अंदर के ट्यूटर को पता है कि वो कैसे करना है. तो दैट इंट्यूशन पावर विल ऑल्सो डिवेलप. रिस्पेक्ट फॉर हु एम आई एंड ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, ये जब बन गया तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी तक हम कहते हैं मुझे सबकी जिम्मेवारी उठानी है,
1: लेकिन उससे पहले आपने कहा ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ वही सही है. हम 50 बार सोच रहे होते क्या मैं करूँ या नहीं करूँ, ऐसे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा. सो अगेन,
0: क्योंकि हमारी निर्णय शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि निर्णय शक्ति बुद्धि का काम है और ये कमजोर हो गई है, और मेडिटेशन से ये वापस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. और इट विल बी लाइक दिस, आप एक सेकेंड में डिसीजन लेंगे और आपका डिसीजन एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि एक तो आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान से भी जुड़ा है, और जब उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर आपके साथ है, आप हर कर्म करते हुए यू विल हैव दिस क्लियर टचिंग कि आई एम ऑन द राइट पाथ और इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, इमीडिएटली आई विल गेट दैट, नहीं मूव अवे. कर्म जस्ट आप करने लगेंगे और आप रुक जाएंगे, यू नो कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा मेरे साथ है जो मेरे हर कर्म के ऊपर सुपरवाइज कर रहा है, एंड दैट विल टच वेरी क्लियर.

0: में, तो परमात्मा के साथ में जब वो रिलेशनशिप होगा और अपने साथ इंटरनली, तो डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा एंड डिसीजंस विल बी राइट, दे विल बी एक्यूरेट, क्योंकि इंटेंशन बहुत राइट है अब कि हर कर्म के पीछे का भाव क्या है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हटते जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप से संबंध जोड़ना मतलब सोल कॉन्शियसनेस, तो आत्मा अभिमानी जब हो जाएंगे तो इंटेंशंस प्योरिफाई होती जाएंगी, ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ये सब कुछ तो हटता जाएगा, तो जिस कर्म के पीछे की इंटेंशन ठीक होगी, कर्म का रिजल्ट
1: अपने आप
0: ठीक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक है, और जब हम ये डेवलप कर लेंगे तो अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ये इजी हो जाएगा। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, लेकिन अपनी मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। हम कहते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ यू, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू, सो दैट्स नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपने साथ ये समय बिताना शुरू करते हैं तो मुझे क्लैरिटी आ जाती है कि ये इनर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये सारा मेरे कंट्रोल में है, तो हर संकल्प की जिम्मेवारी
1: मैं खुद उठा सकता हूँ। और इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क हियर, कि मैं जानते हुए अगर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ वो कर्म करने जा रहा हूँ, सो आई थिंक वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए।
0: तो तीन चीजें जो संबंधों में चाहिए, विश्वास, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे अच्छी बहुत बढ़िया से जुड़ जाएगी, और जब वो अपने साथ हो जाएगी तो औरों के साथ करना बहुत ईजी हो जाएगा।
1: परमात्मा से रिश्ते की बात करते हैं, ये वो रिश्ता है जिसको हम सब बहुत ज्यादा तलाश रहे थे। अगेन खुद से बात करना, यानी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं देख तो पा रहा हूँ कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतना है कि मैं अपनी बॉडी का एहसास तो है, परमात्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हर बार मैं इमेजिन जरूर करूं जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये बातचीत है उसका जवाब मैं, मुझे लगता है कि क्या मुझे मिलेगा, और वो जो तलाशना है या वो जैसे कहा आपने कि वो कहीं वो विश्वास या वो रिश्ता, एक बार हमने पहले बात की थी कितनी देर लगेगी, तो आपने कहा था कि जहां पहचाना वहीं रिश्ता बन गया, लेकिन हाँ उसमें जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो उसमें समय लग सकता है। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किस आस्पेक्ट को लेकर हम उस रिश्ते को और स्ट्रांग करें।
0: एक्चुअली जो समय लगता है वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं लगता, वो एक क्षण लगेगा। समय जो लगता है वो लगता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में, क्योंकि अभी हम जब बैठते हैं याद करने या संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो शरीर के भान में जब होंगे तो शरीर से संबंधित सारी बातें याद आएंगी, मन उन्हीं की तरफ चलता रहेगा, तो हमें लगता है बट आई एम गिविंग टाइम, आई एम सिटिंग टू डू मेडिटेशन, तो क्यों नहीं मुझे अनुभव हो रहा। तो सेकेंड स्टेज पहले नहीं अचीव हो सकती है, पहले फर्स्ट स्टेज को करना पड़ेगा, तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस ये फर्स्ट स्टेप है। जब तक हम इसको नहीं ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगेगा, अनुभव अभी भी होगा लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि आज तो लगा, यू नो मोस्टली पीपल फील आज तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो रहा था, अब फिर अगले दिन फील करेंगे आज तो बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ, बिकॉज दैट डिपेंड्स मोर ऑन माई कॉन्शियसनेस कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ या सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस अर्थात अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करके मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा स्वरूप में जब टिक गए, ताकि यहाँ की दुनिया की जो सारी बातें, जो सारे संकल्प थे वो फुल स्टॉप, ये नहीं कि बैठे हैं मैं आत्मा हूँ, वो आज क्या बोला उन्होंने, ऐसे क्यों बोला, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ,
1: कि वहाँ ये हुआ, वहाँ से वो हो गया, देन यू कम बैक, नहीं मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, फिर अगेन आप,
0: सो यू आर गोइंग ऑन द सीसो, मैं आत्मा हूँ लेकिन ऑफिस में क्या हुआ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसे क्यों कहा, सो यू नॉट रियली सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस मतलब फिर उसको आत्मा के अलावा और कोई संकल्प नहीं आएगा, आत्मा के स्वरूप के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो मॉर्निंग में जब हम बैठते हैं इसका अनुभव करें, इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको सिर्फ मॉर्निंग तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करें, उसको सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारा दिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो उसी के इम्प्रेशंस बनते जाएंगे। सी दिस इज लाइक अ शूटिंग विच इज टेकिंग प्लेस द होल डे, कि सारा दिन हर एक को मिले, हर एक संकल्प क्रिएट किया, संकल्प किया कर्म में आया, कर्म

0: का इम्पैक्ट रिकॉर्ड होता गया। अब जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सारी सीडी जो रिकॉर्ड हुई होती है वो प्ले करती है ना। अब अगर सीडी में सारे बॉडीली रिलेशंस, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें वही रिकॉर्ड की है और फिर बैठ गए, सीडी प्ले हो गई, उसमें सारी वही बातें रिवाइंड हो रही है और हम बीच में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, यू नो, देन दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। तो इसलिए सारा दिन में एक कॉन्शियस अटेंशन रखना ये बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे फिर वो जब मॉर्निंग में हम बैठेंगे वो अनुभव बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस के थॉट्स सारा दिन में क्रिएट किए थे तो उसके इम्प्रेशंस वो सीडी में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जनरली जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं ना ये सीडी रिवाइंड हो जाती है अपने आप और प्ले होनी शुरू हो जाती है, ब्लैंक नहीं रहता है। तो इसलिए सारा दिन में इस सीडी पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सारा दिन कर्म करते इसलिए हम कहते हैं हरेक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक मिनट जो करें दैट्स फॉर दिस, कि बार बार रुके, अगेन रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं एक शक्ति हूँ, दिस इज माई क्वालिटी, पीस, प्योरिटी, नॉट एंगर, नॉट अग्रेशन, सो व्हाई एम आई यूजिंग इट, यू नो, बिकॉज हर क्षण जब हम इनको यूज कर देते हैं, गुस्से को, संशय को, झूठ, हर क्षण, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमने कितनी लीकेज सारी कर दी। फिर कहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सिर्फ सोचने की बात नहीं लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है सारा दिन। क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरा सारा दिन रोल कैसा होना चाहिए,
1: शांति का,
0: तब हम कहेंगे कि रियली आप सोल कॉन्शियसनेस में सारा दिन कर्म कर रहे थे। ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, और फिर गुस्सा, फिर किसी के साथ कोई खिटपिट, नहीं। सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल की जो क्वालिटीज है उसको सारा दिन की एक्टिविटी में वो दिखाई देनी चाहिए। आई शुड एक्सपीरियंस दोज क्वालिटीज, देन आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होगी वही तो कर्म में आएगा। डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह बिहेव करूंगा, मदर हूँ मदर की तरह, आत्मा हूँ आत्मा की तरह, तो उसका कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे वेरी सिंपल, और फिर परमात्मा से वो संबंध, क्योंकि परमात्मा के साथ जो संबंध है दैट इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट्स द ओनली रिलेशनशिप जहां हमें अनकंडीशनल लव मिलता है, वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड पूरा पूरा ट्रस्ट, ऐसा ट्रस्ट जो कभी टूटता नहीं है, जो दुनिया में बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा हर्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो परमात्मा सिर्फ देते हैं देते हैं देते हैं, ही डजंट हैव एनीथिंग दैट ही नीड्स फ्रॉम अस। तो जब हमारा ऐसा कोई संबंध जुड़ता है जो हमें सिर्फ देता ही रहे देते रहे, और यही हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ मैं ये संबंध जोड़ू, माँ बाप के साथ जोड़ू, पत्नी के साथ, पति बच्चों के साथ, कौन ऐसा जुड़े जो मेरे को देता रहे, कोई दे नहीं पाया, तो फिर वो अंदर पेन आने लगा। जब वो मिल रहा है संबंध फिर हम उसके लिए कह देते हैं टाइम नहीं है, दैट्स चीटिंग विद माई सेल्फ, यू नो, द सोर्स इज देयर रेडी टू गिव एंड आई एम सेइंग आई डोंट हैव टाइम,
1: एंड अगेन रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ, इन रियलिटी हु एम आई, उसके साथ जो रिश्ता है। सिस्टर शिवानी, ये पूरा जो हमारा सफर रहा है रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का, सचमुच बहुत सुंदर रहा है, और उसमें आज जो हमने एक बार फिर उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत अहम हिस्सा है, वही फाउंडेशन है, सो हम थोड़ा सा उसमें फिर जाने की चाहें
0: कुछ क्षणों के लिए। हम वापस वही अभ्यास करेंगे कि मन संकल्प करेगा, इंटेलेक्ट बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करेगी, विजुअलाइज करेगी, क्योंकि हम सीडी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट विल बी थॉट्स प्लस पिक्चर विजुअलाइजेशन, और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होंगे तब वो अनुभव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तीनों पर अटेंशन रख के देखे एंड इफ सम अदर थॉट कम्स तो स्टॉप इट देन एंड देयर, उसको बैठने ना दे और उसकी तरफ ही ना झुक जाए कि हाँ अब तो मेरा लिंक टूट गया, नहीं, स्टॉप, कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा मन हमारी बात मानता है, तो लेट्स गिव इट द इंस्ट्रक्शन देन। कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें।

0: अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है, ये मैं हूं, मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलते हूँ। देखें अपने आप को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं, इतना प्यार देते जो मैं खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, जो अपने आप को पहचानना शुरू कर देती हूँ, अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए, भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ। लेकिन इस स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ,
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ये जो अनुभव आज हमने किया और खुद से कैसा रिश्ता बने और परमात्मा या शिव बाबा से रिश्ता कैसे बनाए, ये पूरा ये कैसी जर्नी है, कैसा अनुभव है, सचमुच अनुभव ही किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। रिश्ते हम बाकी आत्माओं के साथ जब भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन जब हम

0: से बना रहे हैं तो एक नया एस्पेक्ट सामने आता है, और जब हम उस परमपिता परमात्मा से बनाते हैं, उस शिव बाबा से बनाते हैं, तो हम सब कुछ उससे ले रहे हैं। एक एक्सचेंज न होकर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे अधिक मजबूत करें। रिश्तों को नई पहचान देने का ये प्रयास। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3445 9999 3446 9873 6655, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इस पूरी श्रृंखला में हमने रिश्तों को नई पहचान दी है और एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे चलना सीखा है। आगे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। ओम शांति।
1: ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999 3445 5 5, 0999 3446 6, और 0987366655। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब

0: ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट right? वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा, होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट right? अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। जिंदगी है, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि हमें रास्ता मिल गया है। अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में हमने बहुत से मुद्दों को उठाने की कोशिश की है जो हमारे लिए कहीं अड़चन बन जाते थे, कहीं ऐसा लगता था कि इनसे पार नहीं पाया जा सकता। तो आज भी कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए है ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। शिवानी जी, हमने पिछली बार अगर आपको याद होगा तो एक कॉल आई थी हमारे पास, जिसको हमने डिस्कस किया था कि एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की प्रॉब्लम थी
1: शिखा
0: जी, और इतना अच्छा उसका रिस्पांस आया, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों ने कहा कि हम फेस कर रहे हैं, लेकिन लगता था कि ये प्रॉब्लम है या नहीं और कैसे इसके बारे में बात की जाए। तो सोल्यूशन हमें अपने ही अंदर तलाशने हैं, ये बात समझ में आई, और नेगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज जो मुद्दा हम उठाएं वो भी वो मुद्दा है जिसके लिए हमें बहुत से कॉल आए हैं, और वो है रिश्तों की बात। क्योंकि रिलेशनशिप्स जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं, हम में से हर कोई ये जानता है कि रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का या प्यार का रिश्ता नहीं, मेरा और आपका रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, उसमें जो ट्रस्ट की कमी आ गई है, जो फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके लिए क्या करें?
1: आई थिंक औरों पे ट्रस्ट करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि शायद हम पहले खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जो चीज मैं खुद

0: करूं तो मुझे लगता है दूसरे भी वही करते होंगे। खुद की इंटेग्रिटी, अगर हम खुद अंदर से भरपूर हैं, वी आर फिल्ड एंड यू नो वी आर कॉन्फिडेंट, तो फिर हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। ट्रस्ट करना तब मुश्किल हो जाता है जब इनसिक्योरिटी होती है, एंड उसमें भी जो एक बिलीफ सिस्टम फिर आ जाएगा कि वो है कि ये धोखा देंगे, ये गलत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से वो धारणा बन चुकी है कि मेजोरिटी तो सब लोग धोखा ही देते हैं, मेजोरिटी तो सब लोग गलती कर रहे हैं,
1: दुनिया तो ऐसी ही
0: ऐसी है। मतलब ये जो बिलीफ है ना, तो ये थॉट हमें अच्छी वाली लाने नहीं देगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हम ब्लाइंडली यू नो वी जस्ट नॉट केयरफुल और हम ब्लाइंडली सबकी चीज सबके ऊपर सौंप दें, लेकिन एक व्यक्ति को हम इवेल्युएट जब एक बार कर लेते हैं, और एक्चुअली हमें स्टार्ट ऑपोजिट चीज से करना चाहिए। हम नॉर्मली करते हैं कि हम परखते रहेंगे, फिर जाकर बहुत समय बाद हम कहेंगे अब हम उनको ट्रस्ट करते हैं। वी कैन ट्राई टू डू इट द अदर वे अराउंड,
1: कम्प्लीट फेथ।
0: हम पहले कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं,
1: लेकिन मुझे लगता है उससे हम अपनी इमोशन हटा दें, क्योंकि हाँ, वो बहुत हर्ट करता है, यू नो, एक एक बात, बिकॉज आई बिलीव इन दैट।
0: ट्रू,
1: मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ, यू नो, हर बार हम इतना, क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा है कि जिसमें पर्सनल मैं इन्वॉल्व ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। इट्स लाइक आई हैव बीन लाइक दिस, यू नो, कि मैं कम्प्लीट फेथ पे ही जिंदगी जीती। एक बार प्रोग्राम में कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था, नहीं पर एक आंख खुली रखनी चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, वो भी कहीं गलत होगा, कभी कम्प्लीट आंख बंद करके ही फेथ करो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको निगेट करते जाते हैं तो हर्ट साथ में जुड़ता जाता है। पहला धोखा पहला हर्ट देगा, फिर आप दोबारा हिम्मत करके हर्ट विश्वास करते हैं, दूसरा धोखा मिलता है, तो कहीं इमोशन को हम हटा देंगे।
0: अगर हमने रियली बहुत अच्छी तरह से किसी को ट्रस्ट किया था जेन्युइनली अंदर से पूरी तरह से, तो धोखा मिलने का चांस पहली बात बहुत कम है। क्योंकि व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, यू विल ऑलवेज गेट ट्रस्ट इन रिटर्न, दैट्स लाइक मैंडेटरी, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। सिर्फ ये है कि हमें जब हमें किसी से धोखा मिलता है तो हम अपनी वाली स्थिति हम नहीं चेक कर पाते, हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन उनके धोखा देने का कारण क्या। अगर हमने रियली अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट ट्रस्ट किया है किसी पे, द पर्सन जस्ट कैन नॉट डू विदाउट ट्रस्टिंग यू बैक, यू नो, इट इज लाइक इट्स टोटली विद यू, टोटली फॉर यू। वो बिल्कुल मतलब कैसे रुक सकता है आपको ट्रस्ट करे बिना। तो इट विल हैव टू स्टार्ट विथ ट्रस्टिंग द पर्सन, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अभी मैं इनको पहले इवेल्युएट कर लूं, परख लूं, फिर अगर लगे कि ये ठीक है तो।
1: सवाल ये उसमें लगता है कि डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट रियल फेथ इज, सही तरह से विश्वास क्या कैसे किया जा सकता है।
0: सबसे पहले ये सोच कि सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, एक दुकानदार हो, लाइक वी अगेन डिस्कस, थॉट इज ट्रांसमिटिंग, यू नो, तो इट्स एज सिंपल एज अगर मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाऊं और मेरे मन में ये विचार चल रहा हो, ये तो मुझे चीट करने वाला है, मुझे ध्यान से चलना चाहिए, मुझे ऐसे चलना, आई एम क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन, एंड वो वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचेगा ही। एंड दूसरी तरफ अगर मैं ये थॉट क्रिएट करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे से गलत नहीं कर सकता, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, आई एम ऑनेस्ट इन माई डीलिंग विद पीपल, तो ये मेरे साथ क्यों गलत करेगा। बट देन दिस हैज टू बी मेंटेन्ड विद एवरीबडी। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 10 लोगों के साथ गलत करो और फिर मैं आपके सामने आकर ये सोचूं कि मैंने आपके साथ गलत नहीं किया तो आप मेरे साथ गलत क्यों करेंगे। इफ आई एम क्लीन इन माई डीलिंग विद एवरीबडी, देन देर इज नो वे दैट एनीबडी शुड रिबाउंड एंड डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी। लेकिन उसके लिए मुझे वो थॉट रखना पड़ेगा कि ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, देर इज नो रीजन, एंड ट्रस्ट। सिंपल ऑटो रिक्शा, सिंपल शॉपकीपर, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, जैसे बहुत सिंपल बातें होती है, जैसे मैं सब्जी लेने जाती हूँ, पहले हम थे कितने का भैया, ये कितने का है, वजन आपने ठीक से किया नहीं किया, चेक करो, नहीं इसको फिर ऐसे करो, नो बॉन्डिंग, नथिंग। नाउ देर इज अ फिक्स्ड पर्सन जिस आई हैव टू टेक, एंड आई नेवर आस्क हिम व्हाट इज द रेट ऑफ एनीथिंग, बिकॉज एंड आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि क्योंकि एंड स्पेशली अभी के समय पर, क्योंकि बहुत कम लोग उनको ट्रस्ट कर पाते हैं, बहुत कम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो जब उन्हें कोई ऐसा किसी को भी मिलता है जो उनके ऊपर इतना ट्रस्ट कर लेता है, वो उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहते, वो तोड़ेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट ट्रस्ट इज वेरी वैल्यूएबल टू देम।
1: इट्स सो रेयर,
0: इट्स वेरी रेयर, सो इट्स वेरी वैल्यूएबल एंड इट इज सो प्रेशियस कि मैं 5 रुपए के लिए उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगी आपके। तो देन यू नो समटाइम्स जो मेरे साथ हूँ वो कहेंगे आपने पूछा भी नहीं।

0: उसने कहा, मैंने कहा वो राइट ही देगा, वो राइट ही दे रहा है। और अगर उसने 5-10 रुपए ज्यादा ले भी लिए आज नहीं तो कल मुझे कहीं और से अगर पता चली गया, इट्स हिज लॉस। मेन चीज ये है कि दूसरे को ये रियलाइज करना पड़ेगा, इट्स हिज लॉस। उसने 10 रुपए कमा लिए, विश्वास खो दिया। बट फॉर मी, जस्ट बिकॉज ये सोच के कि कोई एक धोखा देने वाला है, आई कीप डाउटिंग एवरीबडी आई मीट।
1: लेकिन जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके 10 रुपए का उसने धोखा दिया, विल यू कंटिन्यू बीइंग विद हिम? आई जस्ट वांट टू
0: आस्क। नो, आई विल जस्ट हैव टू बी वन स्टेप मोर केयरफुल।
1: या एंड अनदर, विल यू गेट हर्ट?
0: नो, बिकॉज ही डिड नॉट टेल मी ट्रस्ट मी। सी, व्हाई आई विल नॉट गेट हर्ट, ये मेरा डिसीजन था। उसने नहीं कहा मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो। उसने ये नहीं कहा कि आप बिना पूछे लो, ये मेरा डिसीजन था। उसने ये नहीं, उसने रेट बताने से मना नहीं किया, ये मेरा डिसीजन था। तो अगर ये मेरा डिसीजन है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। आई प्लेड माई पार्ट, ही प्लेड हिज पार्ट। आई प्लेड माई पार्ट ऑफ नॉट आस्किंग, ही प्लेड हिज पार्ट ऑफ टेकिंग मोर मनी। फ्रॉम टुमोरो आई विल बी केयरफुल, बट आई विल नॉट गेट हर्ट, नॉट विद हिम, because he's fine with what he did.
1: Achha,
0: but I will not stop trusting other people just because one person turned out to be a little different. Lekin jab majority time soch aise chalti hai ki nahi ye galat hi kar rahe hai, matlab aap dekhiye, aap morning se start kijiye, agar maid late aa jaye, kyun late aaye, wo genuine bhi koi reason hoga to nahi doubt. Auto rickshaw wala doubt, shopkeeper se mile doubt, inhi logon par itna doubt karte hain. तो जो अपने कोलीग्स, ये तो मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता, इसको तो आगे बढ़ना है, ये तो मुझे नीचे खींचना चाहता है, ये तो मेरे पीठ पीछे गलत बोलता ही होगा। वी आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ दैट थॉट। ये भी हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कि आपके पीठ पीछे कोई बोल रहा है या कोई कुछ गलत कर रहा है, बट देन हाउ एम आई गोइंग टू चेंज इट? यू सी, इफ आई कीप चर्निंग अबाउट इट एंड वही एनर्जी मैं और ट्रांसमिट करूं, तो वो मिसट्रस्ट और स्ट्रांग होता जाएगा। I will have to still keep that thought कि नहीं ये ठीक है, ये अच्छे हैं। I will have to recognize the goodness in everybody because everybody is so beautiful.
1: And another thing is like maybe we have to continue giving chances. That's what I wanted to ask. Should we continue giving chances even if we
0: actually have given... we are nobody to give a chance to anybody. Who are we? Who has given me the authority to give you a chance? You are what you are. ठीक है, आपको जैसे रहना है आप रहिए, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपको चांस देने का, आपको फॉरगिव करने का। आई एम नोबडी। ठीक है, आई ओनली हैव अ चॉइस कि मुझे आपके बारे में कैसा सोचना है, दैट्स ऑल। आई जस्ट हैव दैट मच चॉइस। आई डोंट हैव द पावर टू चेंज यू, आई डोंट हैव द पावर टू मेक यू लाइक आई वॉन्ट यू टू बी। आई जस्ट हैव द पावर टू चूज माई थॉट। नाउ मेरे पास चॉइस है कि आपके बारे में सोचूं कि आप बहुत अच्छे हैं, या आपके बारे में सोचूं कि नहीं आप तो धोखा दे सकते हैं, आपके बारे में सोचूं कि आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, या ये सोचूं कि आप मेरे साथ गलत ही करेंगे, आपके बारे में सोचूं कि आप सच बोल रही हैं इस टाइम, या सोचूं कि आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं। दैट्स ऑल द चॉइस आई हैव एंड जस्ट डिपेंडिंग ऑन दीज चॉइसिस दैट आई मेक इन एवरी थॉट आई एम बिल्डिंग और ब्रेकिंग रिलेशनशिप।
1: वंडरफुल। लेकिन अगर हम ये जो हमने अभी जो मुद्दे उठाए, जो एग्जाम्पल्स या जो बातें ली, जो कोट किया, वो लोग थे जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं,
0: राइट? डेफिनेटली।
1: लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं,
0: राइट,
1: जिनको हम जो हमारे परमानेंट है, हमारे अपने हैं,
0: राइट,
1: वहां जो ट्रस्ट ब्रेक होना और उसके बाद दोबारा अपने आप को तैयार करना, इवन इफ मेरी उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं एहसान नहीं कर रही कि मैं आप पे दोबारा ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं मान लेती हूँ इस बात को। वैसे ये अभी तक मैं ये नहीं मानती थी, मुझे लगता था कि नहीं, आई एम ट्रस्टिंग यू अगेन,
0: बट वी से दैट लाइक अ फेवर।
1: दैट्स व्हाट
0: आई मीन, यू नो, इट्स लाइक अगर आपके बच्चे ने या आपके कोलीग ने, किसी ने कोई गलती कर दी है और हम कहते हैं यू मेड दिस मिस्टेक बट चलो आई एम गोइंग टू ट्रस्ट यू अगेन, डोंट इफ यू डोंट वॉन्ट टू। आप किस पे फेवर कर रहे हैं? यू आर ट्रस्टिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू ट्रस्ट, डोंट वॉन्ट टू ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट। एंड अगर आप बार बार इस तरह से रब इन कर रहे हैं, देन यू आर रियली नॉट ट्रस्टिंग। ये आप सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, जी हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं, हम आप पर बहुत विश्वास, ये कोई बोलने की चीज है ही नहीं। ये तो आपके हर थॉट और हर एक्शन में दिखाई देगा कि आप किस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। और अगर हमें बार बार उस व्यक्ति को अपनी उसकी गलती याद दिलानी पड़े, आपने ऐसा किया था उस दिन, अब फिर से अपना विश्वास तोड़ना मत, मतलब वो टूटा हुआ है ऑलरेडी, कुछ भी नहीं है, हम अभी भी उसको चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम सबसे पहले अपने पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ट्रस्ट मतलब क्या, कि आपने एक बात कही लेकिन करी दूसरी एंड आई विल से यू ब्रोक माई ट्रस्ट यू नो यू से समथिंग टू मी बट एक्चुअली इट्स नॉट द ट्रूथ तो आई से यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट वट अबाउट माई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ मैं अपने आप से सारा दिन में कितना कुछ कहती हूँ और करती कुछ और आज सुबह डिसाइड किया गुस्सा नहीं करना शाम तक आकर गुस्सा कर दिया किसको धोखा दिया
1: खुद को दे
0: खुद को कहा कि टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है लेकिन सारा दिन टेंस्ड रहे किसको धोखा दिया अपने आप को हम अपने आप को सारा दिन इतना धोखा दे रहे हैं अपना नुकसान सारा दिन इतना कर रहे हैं तो हम दूसरे के साथ लॉयल होना फिर थोड़ा सा इसलिए क्रिटिकल हो जाना जब हम अपने आप से सच नहीं बोल पाते तो औरों से सच बोलना ऑब्वियसली वो बहुत एक ऊंची मंजिल हो जाएगी लेकिन जितना हम अपने आप के साथ यू नो वी कम बैक टू आवर सेल्व्स एंड वी आर फिल्ड एंड देयर इज नो इनसिक्योरिटी वी आर लाइक स्टेबल तो फिर औरों पे ट्रस्ट करना इज इट देयर नो एफर्ट एक्चुअली मिसट्रस्ट करने में फिर आपको एफर्ट लगेगा बिल्कुल एफर्ट लगेगा बिकॉज इट्स समथिंग लाइक विच वी हैव फेल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं आई हैव फेल्ट कि अब किसी के ऊपर मिसट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया एंड द प्रोसेस वंस इन अ व्हाइल इट डज हैपन कि आपने जो ट्रस्ट किया दूसरे ने बिल्कुल उसका यू नो ही जस्ट डिडंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन बट दैट्स फाइन दैट विल बी वन इन अ हंड्रेड उस वन इन अ हंड्रेड के लिए जो सौ में आपने विश्वास किया एक ने धोखा दे दिया लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं एक तो लोगों ने अगर धोखा दे दिया तो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है जी आजकल दुनिया ऐसी
1: दुनिया धोखा देती है इनफैक्ट शरदजीत गांगुली नोएडा से हैं और एक एमएनसी में काम करते हैं और इनका जो मेल हमें आया था और वो ये कह रहे हैं कि मेरे टारगेट्स क्योंकि आजकल जब मार्केटिंग में होते हैं तो टारगेट्स होते हैं फिर उसके बाद उसके हिसाब से आपको काफी कुछ यू नो चीजें मिलती हैं कुछ इस तरह से ये बातें होती हैं तो ही सेज कि मैंने सारी मेहनत की बॉस पे अपनी पूरी तरह से ट्रस्ट करके और बॉस पे मेरा ट्रस्ट मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी लेकिन जब बात आई कि टारगेट अचीव हो गए हैं तो मेरे टारगेट चेंज कर दिए गए
0: ओके
1: और मेरा जो मेरी मेहनत का पूरा फल मेरे बॉस को मिला और मुझे कुछ भी कंपनसेशन या वट एवर
0: मॉनिटरी
1: जो भी चीजें थी वो नहीं मिला गया अब इतने डिस्ट्रस्ट में इतने डिप्रेशन में मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया मुझे जिंदगी से ही विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि जब मैंने उस बॉस को उसके लिए कितना काम किया उस पर इतना विश्वास किया तो अब मैं कहां जाऊं क्या मैं नौकरी छोड़ दूं
0: ट्रू ये हो सकता है ना दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो होता होगा तो शायद हमें अपने आप से पहली बात पूछना पड़ेगा कि क्या हमने ट्रस्ट किसी मॉनिटरी बेनिफिट के लिए किया था यू नो हम वैल्यूज को मॉनिटरी या इस तरह की चीजों के साथ इवैल्यूएट या यू नो कंपेयर नहीं कर सकते
1: लेकिन देखिए एक बात है ट्रस्ट तो उन्होंने किया कि भाई मैं जो कर रहा हूं जो मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूं तो उसका क्योंकि बॉस को पता है
0: तो वो ठीक है वो ठीक बात है आज उन्होंने वो ट्रस्ट को बिट्रे कर दिया आपके लेकिन आपने अपनी पूरी सिंसियरिटी से अपने काम को कर दिया था अब ये सिचुएशन हो गई है कि दूसरे ने आपका सारा क्रेडिट ले लिया Now what can you do? Two option. Disillusioned. पूरे तरह से you know give up. सोच लें कि आगे से इस तरह से लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए अपना फायदा सोचना चाहिए दूसरों पर विश्वास करके देखा क्या हुआ Good. If that's my thought, that's my destiny. आगे जीवन में जितने भी लोगों के मैं संपर्क में आऊं चाहे वो ऑफिस में वो मेरा एक दृष्टिकोण जो उनके प्रति बन जाएगा कि विश्वास नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि किसी एक ने धोखा दिया था तो वो मेरा जो आगे संबंध बनते जाएंगे वो बहुत अच्छे फाउंडेशन पे नहीं खड़े होंगे तो बहुत आवश्यकता है कि अभी तुरंत अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा आई पुट इन माई बेस्ट एफर्ट मेरे बॉस ने उसको नहीं अप्रिशिएट किया या उसका क्रेडिट ही खुद ले लिया नाउ व्हाट कैन आई डू अगर तो मेरे लिए वो सिचुएशन बिल्कुल अपने मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है देन आई चेंज माय जॉब अगेन इट्स अ चॉइस आई कैन चेंज माय जॉब सेकेंड थिंग इज
1: वो भी एक्चुअली हमने टेंशन की बात की थी वो भी सिचुएशन से भागने वाली
0: हाँ तो एक्चुअली दैट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन लेकिन वहां रहकर डिसइल्यूजन रहने से वहां रहकर एक नेगेटिव वाइब्रेशन बिल्डअप करने से और सारा दिन ये सोचने से कि मैं छोड़ दूं तो फिर छोड़ दीजिए यू नो बट दैट्स नॉट द ऑप्शन क्योंकि अगर आप जब अपने नेक्स्ट ऑफिस में जाएंगे
1: नेगेटिविटी लेके जाएंगे

0: हो सकता है वहां भी और आपको इस तरह से लोग मिले. तो द ऑप्शन विल बी टॉक टू योर सेल्फ, आई पुट इन माई बेस्ट एफर्ट, आई डन थिंग्स सिंसियरली और एंड आई हैव द सेटिस्फेक्शन कि वो टारगेट अचीव हो चुका है. तो सबसे पहली चीज, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने आप को पहले स्टेबलाइज कर दीजिए, अपनी काउंसलिंग करके पहले स्टेबलाइज कर दीजिए. जब तक वो इनर स्टेबिलिटी नहीं होगी, डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप. चाहे वो बॉस से जाके बात करने की बात है, चाहे वो जॉब चेंज करने, कोई भी इस तरह का डिसीजन डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में कभी नहीं लेना. पहली बात, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपनी सिंसियरिटी को अप्रिशिएट कीजिए और दूसरे की इनसिंसियरिटी की वजह से अपनी सिंसियरिटी को मत गवा दीजिए. ये दूसरा सामने वाला
1: क्या फायदा, हाँ,
0: फायदा क्या हुआ. सी दिस इज अ वेरी डीप थिंग एंड इट कम्स सो इजिली टू पीपल कि मैंने किया, फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा मैं आगे से करूंगा ही नहीं. इसका मतलब कि आपके पास एक इतनी वैल्यूबल चीज थी, इतनी वैल्यू थी उस चीज की, लेकिन जस्ट बिकॉज सामने वाले ने उसकी वैल्यू को नहीं समझा, आप अपनी वैल्यूबल चीज को गवा देंगे. लेकिन जिसने वैल्यू नहीं समझी, वो प्रॉब्लम तो उसकी थी. If you are wearing diamonds right now and I don't recognize because I don't have the knowledge, तो मुझे वो डायमंड और वो पत्थर में शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कनुप्रिया क्या पत्थर पहन के बैठे हुए, पत्थर है ये, कोई काम के नहीं आजकल. एंड मैं दो बार चार बार आपको कहूँ और चार लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लें कि कनुप्रिया पत्थर पहने हुए, फेंको इसको, ये नुकसान कर रहे हैं. If you remember and if you are aware that they are diamonds, will you throw them away? Even if the whole world is telling you, forget one or two people. तो ये अपनी विशेषता की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आज एक जो डिसइल्यूजमेंट, यू नो, ये जो हो रही है, ऑनेस्टी आजकल काम नहीं करती है. सिंसियर होने का फायदा नहीं है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते. क्या हमारी विशेषता इसलिए ताकि लोग अप्रिशिएट करें?
1: क्योंकि तुम्हारी ताकत है बेसिकली. ओ यस, दैट्स अ गुड,
0: इट्स माय स्ट्रेंथ. आई, इफ नोबडी अप्रिशिएट्स, फॉरगेट वन और टू पीपल, आई से लेट द होल वर्ल्ड नॉट अप्रिशिएट. यू नो, लेट्स लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन. पूरी दुनिया नहीं अप्रिशिएट करे, फिर भी वो आपकी विशेषता. आप जिस दिन उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं ना, तब सारे अप्रिशिएट करना बंद करते हैं. बट अगर आपको ही नहीं पता चला कि आपके पास डायमंड्स है, then you might throw it away, then the loss is yours. तो दूसरे की कोई एक गलत बात के लिए अपनी अच्छाई को खत्म कर देना, ये अपने आप से सबसे बड़ा धोखा है. वो क्या हमारे से धोखा करेंगे?
1: हम अपने आप को,
0: हमने ही अपने आप को इतना बड़ा धोखा दे दिया. उन्होंने तो जो किया वो तो छोटी बात है.
1: एक्चुअली ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया ये बोलती आपको जाती है कि इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं बनो, तुम इतनी ट्रस्टवर्दी क्यों हो. आई हैव गॉन थ्रू
0: दैट.
1: ऐसे विश्वास नहीं करते हैं. दुनिया पे विश्वास, दुनिया को समझना सीखो, दुनिया ऐसी है.
0: बिल्कुल.
1: यू नो, सो इट लाइक यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर रॉन्ग.
0: यू विल, दैट्स व्हाई वो जो अपना कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखना पड़ेगा. एंड आस्क योर सेल्फ अगेन, मुझे डाउट करके ज्यादा अच्छा लग रहा है या विश्वास कर. इट्स ऑल अबाउट दैट, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू आर फीलिंग.
1: यू नो,
0: द जर्नी इज आई मीट यू, देन आई मीट अनदर पर्सन, 10 मिनट के बाद आई मीट अनदर पर्सन. और मेरी हर डीलिंग, हर ट्रांजैक्शन, हर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तब इंजॉयबल है इफ इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इफ इट इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट. एंड आजकल हम ज्यादातर डिस्टर्ब्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हरेक जिससे मिल रहे हैं उसको डाउट करते हैं. एंड हरेक पे डाउट करते करते करते बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई रीच होम, हाउ कैन आई बी हैप्पी?
1: यस, डेफिनेटली.
0: आई हैव जस्ट यू नो ट्रांसमिटेड सो मच ऑफ नेगेटिव एनर्जी टू पीपल. इन रिटर्न मुझे इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी मिल गई है. घर पहुंच गए रात को 8 बजे और कहे जी बहुत भारी लग रहा, खुशी नहीं है. पता नहीं वैसे कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन मूड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा. कैसे अच्छा होगा? सारा दिन हर स्टेप पे क्या किया? एंड ये अपने आप से पूछना है, कौन सी चीज मेरे लिए ठीक है. डोंट सी व्हाट पीपल आर सेइंग, डोंट सी व्हाट द मेजोरिटी इज सेइंग. जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हाट मेक्स मी फील गुड. इट्स ऑल दैट फील गुड फैक्टर. फील गुड फैक्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट,
1: डेफिनेटली. एंड यू नो शिवानी, एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, अगेन वी टॉक्ड अबाउट, यू नो, वी टुक अ क्वेश्चन जो कि एक एम्प्लॉई और
0: इनके केस पे जो इन्होंने लिखा, इट वुड बी नाइस कि वो अपने आप को जब स्टेबलाइज कर ले तो एक बार जाकर बात भी करके आए.
1: ये स्ट्रेंथ होता ये है कि जहां धोखा मिला, हाँ, आप अंदर, क्योंकि इतने व्हाट आई यूज्ड टू डू.

0: इतने हर्ट हो जाते हैं देन आई नेवर यूज्ड टू यू नो इंटरेक्ट.
1: लेकिन वो हर्ट वाले स्टेज में वैसे भी जाना नहीं चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, बिकॉज वो एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है. आई अंडरस्टैंड आई विल हैव टू पुट माई सेल्फ इन योर पोजिशन फर्स्ट एज द एम्प्लॉय एंड ये सोचूं कि पहली बात इवन गिव माई सेल्फ द अदर ऑप्शन कि हो सकता है मैंने ठीक से नहीं समझा, हो सकता है कि ये चीटिंग नहीं थी, हो सकता है इसके पीछे कोई और बात है जो मेरे सीनियर्स को पता है जो मुझे पता भी नहीं है, या हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने ये किया है, कुछ भी है, वाई नॉट गो एंड हैव अ डायलॉग. एंड जब अपनी इंटेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इंटेंशन, आपसे बात करने से पहले मेरा भाव क्या है. अगर मेरा भाव ये है कि आपको जाकर मुझे बताना है कि आपने गलत किया,
0: चाहे प्यार से ही बताना, लेकिन
1: इट वोंट वर्क. दैट भाव, जो भावना पीछे है, दैट्स गोइंग टू डू ऑल द वर्क. तो इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग वी डू. तो अब जब आप बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति एक बहुत रिस्पेक्ट, एक डिसरिगार्ड नहीं, अभी डिसरिगार्ड है, उन्होंने धोखा दिया, आई कैन नॉट रिस्पेक्ट. आई विल हैव टू से हो सकता है कोई बात है, टिल आई फाइंड आउट, लेट मी नॉट कम टू अ कंक्लूजन, लेट मी गिव द अदर पर्सन अ चांस टू पुट अक्रॉस
0: बेनिफिट ऑफ डाउट
1: हिज पॉइंट. एंड फिर भी अगर बात करने के बाद भी लगे कि उनकी इंटेंशन कुछ राइट नहीं थी, टॉक इट आउट एंड बिल्ड द रिलेशनशिप. Tomorrow it will not happen again. एंड जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत अप्रिशिएट करेगा आपके इस
0: पूरे जेस्चर
1: एफर्ट को, यू नो, कि आप आए, आपने बात की और आपके बात में या आपसे उसको कोई नेगेटिविटी जब नहीं मिलती है, ही विल जस्ट यू नो बी फॉर यू
0: टोटली. वो भी कहीं ना कहीं गिल्ट,
1: हाँ, गिल्टी तो हमेशा होगा और इसीलिए जो गिल्टी है वो बहुत ज्यादा आपके सामने अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि जहां अंदर कुछ खालीपन है तो उसको भरने का सबसे इम्पोर्टेंट, यू नो, सबसे सहज तरीका होता है बाहर से बहुत, यू नो, आई एम राइट, आई विल ऑलवेज कीप ऑन प्रोजेक्टिंग इट लाइक दैट, बिकॉज एक्चुअली इंटरनली देर इज समथिंग विच इज अ लिटिल मिसिंग. तो ऐसे टाइम पर उसको चाहिए कि कोई आकर उसे एक्सेप्ट कर ले. तो जब अगर ये जाकर उनको उस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे पहले इंटरनली और फिर जाकर उनको उस तरह से बात करेंगे, मिरेकल कैन हैपन.
0: यस,
1: इट विल हैपन.
0: अगेन, यू नो, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट मिरेकल्स, वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग डेस्टिनी, वी आर एबल टू डू इट विद आवर पॉजिटिव थॉट.
1: एंड अभी आप देखिए, ये एक बिलीफ इनकी डेस्टिनी चेंज कर सकता है. दैट्स व्हाट एवरी टाइम दैट साइकिल इज एप्लीकेबल. लेकिन हम कह देंगे जी मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे साथ धोखा हो गया. मैंने तो कितनी मेहनत की थी, लेकिन लोग ही आजकल ऐसे हैं कि धोखा दे जाते हैं. फिर एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाएं, जी मेरा भविष्य क्या है आगे, मैं नौकरी बदलूं, मतलब so much out of control. जबकि हर चीज हमारे control में, and we are giving away the control.
0: Like finally we are understanding that destiny is within us, you know, within our thoughts. So wonderful. In fact, trust is something, you know, which we are lacking. Okay, हम ये लाइफ के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, रिश्तों की बात करेंगे, खासकर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ट्रस्ट की बात बहुत जरूरी है, लेकिन वो हम अपनी अगली कड़ी में करेंगे. आज जो बातचीत रही वो सचमुच काफी क्लैरिटी के साथ हमें नजर आ रही है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
1: थैंक यू.
0: आपके पास भी अगर कोई ऐसा ही सवाल है, कहीं ऐसा लग रहा है कि विश्वास कम हो रहा है, जिंदगी में बहुत सी जिन मूल्यों पर हम खड़े रहना चाहते थे वो कहीं तलाश नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो कम है, तो भाई आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आपको बता दें कि जो जिस विश्वास पर हमारा और आपका रिश्ता है, उसी विश्वास को एक बार फिर पति पत्नी के और बाकी रिश्तों में भी तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कड़ी में, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. तो अभी दीजिए इजाजत, मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में. नमस्कार.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा
3: दोस्तों एक विशेष जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कई कहेंगे रिश्ते, कई कहेंगे स्वास्थ्य, कुछ का जवाब होगा जीवन अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन की महत्वता तब समझी जाती है जब जीवन बहुत अच्छा हो, जितना भी हो, चाहे छोटा जीवन हो, लंबा जीवन हो, बड़ा जीवन हो, लेकिन उम्दा जीवन हो। और उम्दा जीवन या अच्छा जीवन उसे कहेंगे जब हमें अच्छा स्वास्थ्य का अनुभव हो, अच्छे रिश्तों का अनुभव हो, हम एक दूसरे के प्रति बहुत सकारात्मकता के साथ जी रहे हैं। लेकिन कई बार इस यात्रा में ऐसा हो जाता है कि हम अपने जीवन से इतने खुश नहीं रहते, और सबसे पहले उसका कारण कभी न कभी बन जाता है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और अन्न, भोजन, इसका बहुत बड़ा गहरा एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ते को समझ पाना शायद हमारे पूर्वजों के लिए बहुत आसान था, क्योंकि उनका जीवन, उनका जो दिनचर्या था वो बड़ा सरल था। लेकिन अगर आज मैं और आप अपनी दिनचर्या को देखें तो बहुत ही जटिल हो गया है दोस्तों हमारा जीवन। ऐसे में हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, बस खाते जा रहे हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में एक ऐसी हस्ती को लेकर के आया हूँ जो मेरा और आपका, हम सबका भोजन के प्रति सोच बदलने में और उसके द्वारा अपने जीवन को बदलने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज एक साल, दो साल नहीं दोस्तों,

0: लगभग दो दशकों से भी ज्यादा वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। वर्ष 2023 में लगभग तीन दशकों से भी ज्यादा वो इस फील्ड में कार्यरत है। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया और पूरा देश इनको डॉक्टर खादर वल्ली के नाम से जानता है। आइए सबसे पहले रेडियो मधुबन के स्टूडियो में हम इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर खादर वल्ली जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम।
0: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और मुझे पता है आप काफी भ्रमण भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कैसे हैं आप?
1: वैसा ही बहुत खूब सही हूँ। इट्स फाइन। वेरी गुड। अच्छा हो रहा है
0: जी। बहुत बढ़िया। तो खादर वल्ली जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मुझे आपके बारे में कैसे पता चला। मैं खुद भी पर्यावरण प्रेमी हूँ और पर्यावरण से रिलेटेड कुछ न कुछ कार्यों में मैं खुद को बिजी रखना पसंद करता हूँ। और ऐसे में किसी से मैं बात कर रहा था और उन्होंने बोला मुझे ना जाना है, अभी मैं आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ पर खादर वल्ली जी का एक कॉन्फ्रेंस है, मैं वो अटेंड करने जा रहा हूँ। बोला अच्छा। मैंने बात को इतना ध्यान नहीं दिया और मैं आगे निकल गया। दो दिन बाद किसी से मैं मिल रहा था, उसने कहा कि मैं ना यूट्यूब में डॉक्टर खादर वल्ली जी के वीडियोज देख रहा हूँ। मैंने बोला एक ही हफ्ते में दो बार एक व्यक्ति का नाम सुनना थोड़ा सा इत्तेफाक से ज्यादा ही लग रहा है। कुछ दिन बाद मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड जो कि एनवायरमेंट में सेवा करती है, स्पेशली फूड सिस्टम्स या भोजन और भोजन से संबंधित कार्यों में बहुत ज्यादा संलग्न है, उन्होंने बोला डॉक्टर खादर वल्ली जी का मैंने एक ब्लॉग पढ़ा, तो मुझे लगा ये व्यक्तित्व जो है ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। हर छोटे से छोटे गाँव में बैठा व्यक्ति और भोजन या भोजन से संबंधित कार्यों में बहुत गहराई से जो व्यक्ति घुसा हुआ है वो तक आपको जानता है, और ये आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर खादर वल्ली जी का नाम डॉक्टर खादर वल्ली, डॉक्टर खादर वल्ली, डॉक्टर खादर वल्ली ऐसा सुनते सुनते मुझे लग रहा था कभी ना कभी एक बार मौका मिलना चाहिए इनसे मिलने का, और आज ये मौका आया है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि मुझे भी और हमारे सभी श्रोता साथियों को आपसे परिचित होने का। जो हम इंटरनेट पे आपके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, वो तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हम वो बातें जानना चाहेंगे जो कि शायद इंटरनेट पे भी नहीं बयां की गई है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी।
1: कहानी तो बड़ा नहीं है। कहानी जब बनता है जब सारे बात होना है। कुछ भी नहीं है, हमारा तो जन्म हुआ सीधा साधा। मेरा बाप तो टेलर था, मेरी माँ एक व्यावसायिक क्षेत्र का लेबरर के काम पे जाते थे। तो हम आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, प्रदुटोर नाम का गांव में, और अभी तो हम आंध्र से निकल गए, बहुत साल हो गए हैं। हम मैसूर में रहते हैं, हमारा पढ़ाई सब कुछ मैसूर में ही हुआ, तो हमको आंध्र प्रदेश को जुड़ा हुआ था, उससे हमको बहुत दूर हो गए हैं। इतना हो गए कि हम हमारा भाषा भी भूल गए थे। छोटे पे आ गए थे यहाँ पे, तो हमारा कन्नड़ा बोलते हैं हम। और यहाँ पे आने के बाद हम बीएससी एमएससी साइंस सब्जेक्ट्स में, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोलते हैं, बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। हाँ, वहाँ हम पीएचडी करने के बाद अमेरिका भी गए हैं। वहाँ चार पांच साल होने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम हमारा देश आके हमारा देश में काम करना है, हमारा देश के लिए, हमारा संस्कृति और भारत देश का एक अंदाज है वो तो बहुत अजीब है और अनोखा है। सब लोग समझते हैं भारत देश में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको वो नहीं लगा कि हमारा देश में प्रॉब्लम्स है। हमारा देश में इतना खूब जगह है कि हम हमारा खाना को हम उगा सके और हम खा सके। ये तो स्वतंत्र

अरे विश्व में कहां पे भी नहीं मिलता है आपको। ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स, ये कृषि व्यवस्था धीरे धीरे पिछला 100 साल से बदल गया है और हर जगह पे लोग ये चीनी, गेहूं, चावल खा रहे हैं। ये तो हमको एक वैज्ञानिक तरफ से सोचने में बहुत अजीब लगा, क्योंकि सब लोग एक ही खाना खाना वैज्ञानिक नहीं है और साज सिद्धत नहीं है। तो हमें एक वैज्ञानिक के नाते ये सोचा तो बहुत खूब गलत रास्ता में मानव जाति जा रही है। ये सोच तो हम 40 साल से सोचते हैं, लेकिन इसका स्पष्टता, विश्लेषण और वैज्ञानिक विचार धीरे धीरे हमारा दिमाग में आने लगा और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम कुछ काम करना है। हमारा देश का किसानों का हित में और हमारा देश का मिट्टी का हित में, हमारा देश का नदियों का हित में, हमारा देश का पर्यावरण, ये सब हमारा पूर्वजों ने हमको सिखाया है। मैं तो कुछ बातें लोगों को बहुत अजीब लगता हूँ, लेकिन मेरा बात वो है जो हमारा साधु संतों ने बात करते थे, बस इतना ही। हम तो काफी कर रहे हैं। मैं हमारा पूर्वजों का बातों को फिर और एक बार वैज्ञानिक दृष्टि से देखकर प्रायोगिक रूप में निरूपण करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। तो हमारा खाना अब जो हम खा रहे हैं वो नहीं है, वो सही खाना नहीं है। हमारा मुंह से गुदद्वार कर पचन नाल में वो चीज नहीं जाना है, क्योंकि हमारा खून का असमतुलन ये खाना खाने से बन जाता है। और एक बायोकेमिस्ट, जीव रासायनिक शास्त्रज्ञ बनने के बाद ये नामुमकिन है कि हम इसको सही करके मान के मैं भी वो दाना को, वो खाना को हमारा अंदर डाल सके। तो इट इज सो अनसाइंटिफिक टू ईट राइस, व्हीट एंड शुगर, क्योंकि ये हमारा खून का असमतुलन कर सकता है, करता है, कर रहा है। पिछला 50 साल से हर आदमी का खून असमतुलन बन रहा है, इसीलिए हमको बहुत सारा बीमारियां, ये तज्ञ लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस नाम देके हमको एक भ्रमालोक में डाल रहे हैं। और उसके साथ साथ हर बीमारी को एक औषधि के नाम पर टैबलेट्स देके हमको घुमा रहे हैं आसपत्र के आसपास। सो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक कॉरपोरेट फूड कल्चर का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बोर्ड रूम में बैठ कर ये लोग ये रचा है और बहुत सारा गवर्नमेंट्स इसके हाथों में आ गया है और हमारा देश का गवर्नमेंट भी कोई अलग नहीं है। लेकिन हमारा भारत देश में अभी तो गांव-गांव में 4-5 बारिश आने के बाद हम क्या उगा सके और क्या खा सके, वही है ये दाना हम भूल गए हैं। ये वाक्य हम भूल गए हैं ये तो बहुत सही नहीं है। ये हमको ये लोग तज्ञ का रूप में पार्लियामेंटरी रूल्स बना के हमको ये खाना खिला रहे हैं। ये लोग गेहूं चावल हम नहीं खाते थे। 99.9% ऑफ लोग ये धरती पे ये गेहूं चावल नहीं खाते थे पिछला 150 ईयर्स आसपास। ये काम शुरू हुआ है जहां पानी भर के दाना का यील्ड ज्यादा करने के बाद खाने शुरू हो गया। और ये वॉर टेक्नोलॉजी, मटेरियल फ्रॉम बॉम्ब्स, उसको बचाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए फर्टिलाइजर्स, ये रासायनिक गोबर बनाने का तरीका निकाला गया। और उसके साथ साथ हम सब लोगों को ये चावल और गेहूं, चीनी उगाने में धरती का आधा से आधा व्यवसाय क्षेत्र अब जारी है। इससे क्या हुआ, नदियों का पानी डैम्स के रूप में भरा कर ये उगाने में ये कॉरपोरेट कंपनीज पर्यावरण का सर्वनाश करने को शुरू हो गया है। सो हमको एक किलो दाना उगाने के लिए, गेहूं या चावल उगाने के लिए 8 से 10 हजार लीटर पानी भरना पड़ता है और चीनी एक किलो उगाने के लिए 25 हजार लीटर भरना है। सो इतना पानी भरने के लिए हम इतना

गोलमाल कर लिया कि पेड़ पहाड़ों को निकाल कर डैम्स बना के माउंटेन्स को खींच कर माइनिंग सब खराब करके हम डैम्स बना रहे हैं और ये डैम बनाने के बाद क्या कर रहे हैं हम ये तीनों चीज को उगा रहे हैं। ये शुगर केन का उगाने में एक ही काम है वो तो लिकर बनाने का। लिकर से अलग चीनी, चीनी तो एक फेस पेज बोलते हैं ना, तो इसे फ्रंट पेज पीछे हो रहा है टन्स एंड टन्स ऑफ लिकर बीइंग मैन्युफैक्चर हर जगह पे। अमेरिका में तो फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स ऑल दैट वेट लैंड्स हैव डिसअपीयर क्योंकि वो ये शुगर केन उगाने में पानी को खत्म कर दिया है। कैलिफोर्निया इज कम्प्लीटली आउट ऑफ वाटर, वो तो ये पौधे का चीज को लेकर सुअर को और गाय को खिलाकर वो मांस खाने में वो लगा हुआ है। ऐसा सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट खाना खाने का आदत ये यूरोपियंस ए दूध हो या चीज हो या पनीर हो या मांस हो ये पर्यावरण के ऊपर बहुत सारा टेंशन डाल रहे हैं क्योंकि 10,000 लीटर भरने के बाद गेहूं उगाते हैं वो ये जानवरों को खिलाकर उसका खाना हम खा रहे हैं ये मांस गोश्त का, तो 50,000 लीटर पानी भरना है 1 किलो ये मांस उत्पादन करने के लिए। से पिछला 100 ईयर्स से ये कॉरपोरेट वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द एनवायरमेंट हमारा खाने के लिए। ये तीन स्टेजेस में हो रहा है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन बोला है और 2 व्हाइट रेवोल्यूशन बोला है और 3 अभी ये घुमा रहा है पिंक रेवोल्यूशन करके। सो पहला ये बोला है कॉर्पोरेट चाहिए, सो गेहूं और चावल को चीनी को ला गया और दोनों व्हाइट रेवोल्यूशन बोला है उससे एक गाय को GMO करा के दूध निकालकर हर एक गाय से 25 लीटर दूध निकालकर ये तो A1 मिल्क एंड हमारा देसी गाय तो 1 या 2 लीटर दूध देता है इसीलिए हमको A2 बना दिया ये लोग। सो A2 गाय का मिल्क A1 गाय का मिल्क, ये A1 गाय का मिल्क में बहुत सारा स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक से सब भर भर के रेसिड्यूज के रूप में हर आदमी खा रहा है पी रहे हैं। इससे हमारा हार्मोन इम्बैलेंस बन गया है। हमारा हार्मोन इम्बैलेंस का वजह यही है कि हम लोग दूध बहुत अच्छा है, संपूर्ण आरोग्य का परिपूर्ण आहार है ऐसा वैज्ञानिक किताबों में हम लिख कर ये पीने का शुरू किया और हमारा बच्चियों ने 8 साल के उम्र में मासिक धर्म शुरू करने का हो गया है पिछला 25-30 साल से। ये सब का सब सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। सो ये ग्लूकोज इम्बैलेंस बन गया है कार्बोहाइड्रेट रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ। सो मानव जाति में 30-50% लोग BP या डायबिटीज को लेकर घूम रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं और आप डॉक्टर के पास जाके पूछे कब हम ये बीमार से बाहर आ सके, पगला ये तो बाहर आने का काम नहीं है, आपको जीवन भर ये टैबलेट्स लेना है। यही समाधान हर आदमी को जो चाहे अमेरिका में चाहे ऑस्ट्रेलिया में चाहे इंडिया में चाहे बांग्लादेश में कभी कहीं जाओ कभी जाओ कहीं पूछो यही समाधान आपको मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा वैज्ञानिक विचार सही दिशा में नहीं जा रहा है क्योंकि जब हम ये खाना नहीं खाते थे एक बीमारी भी मानव जाति में दाखलात नहीं हुआ है। सो इतना सिंपल लॉजिक था मेरा। तो हम 1997 में अमेरिका से वापस आके हमारा लोगों को ये भूल कौन भूल गया है, हमें नहीं भूला, ये लोग आके हमको ऐसा ही शब्दों में बोला ये जानवरों का खाना है, ये प्रिमिटिव फूड है, ये कोर्स ग्रेन्स है। सो हम जब सारा के सारा जगह पे हम ये उगा के खाते थे हिमालय बेल्ट में कोडो

0: चावल हर आदमी खाते थे। आज भी आप ट्राइबल्स के पास जाओ, वो यही खाना अभी भी खा रहे हैं। लेकिन ये कॉर्पोरेट वालों ने जाके ये सब बोल के आप ये सही नहीं खाना है, आपको नहीं खाना है, ये खाना खा लो, तो ये चावल और गेहूं देने के शुरू किया। लो एंड बिहोल्ड 10 साल में सब लोगों को डायबिटीज और बीपी आने को शुरू। इतना सीधा साधा बात, हम ये गेहूं चावल चीनी को छोड़ने से 70% ऑफ ह्यूमन डिजीजेस कैन डिसेप्ट। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप आज से गेहूं चावल चीनी और दूध छोड़कर, हमारा पूर्वजों का पारंपरिक दाना ये क्या होता है, कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, सावा चावल, मुंडवा, बाजरा, ये खाना आपका थालियों में वापस लाने को शुरू करो। 6 महीने में हम आधा का आधा हॉस्पिटल्स बंद कर सकते हैं। 6 महीने में हम इतना स्वास्थ्य बन जाएगा कि हमको हॉस्पिटल्स का जरूरत भी नहीं पड़ता। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये षड्यंत्र बना दिया है कि हम हमारा थालियों में, हमारा देश में उगाया हुआ उगाने जाने वाला दाना को भूलकर ये दोनों दाना को लाकर उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट्स उप उत्पादन क्या करते हैं, अंडा, गोश्त और दूध को खाने को शुरू किया। ये उत्पादन करने के लिए पर्यावरण का सर्वनाश करने में हम सफल हो गए हैं। इतना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलोन प्रोड्यूसेस 10.2 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड टन्स पर ईयर, और ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सबके सारा सारा काम कुल मिलाकर आपको 4 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट लगता है। सो आउट ऑफ 14 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड टन्स पर ईयर, 10 से 11 तक एग्रीकल्चर और घोष उगाने में हम बना रहे हैं। और ये पर्यावरण तज्ञ लोग ये छोड़कर बात कर रहे हैं पिच छोड़ा हुआ 4 टन के ऊपर, तो ये तो बहुत सिली बात है। मुझे तो बहुत सिली लगता है, ये लोग आके सेव सॉइल, सेव वाटर, सेव दिस, सेव दैट डांस कर रहे हैं और खाने के बारे में एक बात भी नहीं खा रहा है, बोल रहे हैं। सो आपको सही पर्यावरण संरक्षण करने के बात करना चाहिए तो पहला बात आपका मुंह से निकलना है कि आप गेहूं, चावल, चीनी, दूध और गोश्त खाने को बंद करने का बात, एक ही बात आपका मुंह से पहला निकालना है। विदाउट टॉकिंग दैट वर्ड फर्स्ट, यू आर नो एनवायरमेंटलिस्ट। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट एंड नॉट टॉकिंग अबाउट अ फूड प्रोडक्शन, यू आर बीइंग वेरी हिपोक्रेट। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ?
1: ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम हमारे भोजन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब तक हम चाहे बाहर कितनी भी बातें कर ले, वो सब बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि शुरुआत तो हमारे भोजन से हो सकती है। अगर भोजन को हमने बदल दिया तो भोजन की वजह से बाजार बदल जाएगा, बाजार की वजह से उत्पादन बदल जाएगा, उत्पादन की वजह से पर्यावरण बदल सकता है,
0: पर्यावरण बदल सकता है। सो ये उत्पादन हम इतना सर्वनाश कर रहे हैं क्योंकि एक एक किलो का दाना उगाने के लिए हम इतना पर्यावरण का विनाश कर बैठे हैं। सो ये बात को हम हर जगह पे जोड़ना है, हर मानव को ये प्रज्ञा पूर्वक वैज्ञानिक चिंतन में लगाना बहुत जरूरी है। सब लोग डॉक्टर खादरवली को समझ रहे हैं कि ये मिलेट्स का बात कर रहे हैं, मिलेट्स से ये डायबिटीज ठीक कर रहे हैं, मिलेट्स से ये कैंसर ठीक कर रहे हैं, वो तो बहुत छोटा बात है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मिलेट्स खाने से वो सब वैसा ही वैसा हो जाता है। सो इसमें हमारा देना लेना कोई नहीं है। हम मानव जाति को ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम पर्यावरण को कुछ भी टेंशन नहीं देना है, एक बूंद का पानी भी नहीं चाहते हैं ये मिलेट्स उगाने। पर्यावरण में छिपा हुआ, वो वायुमंडल में छिपा हुआ पानी को खींच कर ये कोडो चावल आपके आप उगाती है। सो हमारा खराब आदत यही पड़ गया है पिछला 100 साल से, क्योंकि

0: हम ये पाश्चात्य विज्ञानियों का बात मानकर हमारा खाना को हम छोड़ दिया।
1: जी खादर जी, मुझे ना यहाँ आपसे एक सवाल पूछना। जैसे आपने भी पढ़ाई की शुरुआत की और पढ़ाई जो आपकी हुई वो भी एक पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से ही हुई। आपने भी BSc MSc आदि किया, डॉक्टरेट किया, आपने स्टेरॉइड्स में भी बहुत पढ़ाई की। लेकिन जब आप विदेश गए और विदेश में जाने के बाद जब आपने उस पर डीप रिसर्च करना शुरू किया, उस पर शोध करना शुरू किया, तब शायद आपको लगा होगा कि ये जो मैं शोध कर रहा हूँ और जो हमारा पुरातन संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसमें भी बहुत चीजें हैं जिसका शोध आज तक हुआ नहीं है या हुआ है तो छुपा दिया गया है। मेरा
0: क्या छुपा दिया गया है? तो शोध तो हुआ है हमारा, पुराणों में और प्राचीन किताबों में यही बोला गया है, षष्ठी का शाली एक चावल है, उससे हमको बहुत सारा बीमारियों को सही कर सकते हैं। वही है हम ढूंढ निकाला है, ब्राउन टॉप मिलेट, हरा कंगनी, उसमें रेशा का प्रतिशत 12.5%। हमें पहली बार ये जांच करके लोगों को बताने के लिए, और ये दाना हम भिगो के पका के खाने से आपका सारा का सारा बीमारियां 6 महीने में गायब होता है, इंक्लूडिंग स्टमक कैंसर आपको हम भगा सकते हैं। सो इतना अद्भुत औषधि तत्व होने वाला दाना को हमारा थालियों से खींच लिया है ए सो कॉल्ड वेस्टर्न साइंस। मालूम रहे क्या बात कर
1: खादर जी, एक चीज मुझे आप बताइए, जब आप विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और विदेश में आप रह रहे थे, तो कौन सी एक घटना या कौन सी एक चीज ने आपको समझाया ये बात कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत श्रेष्ठ है? कौन सी वो एक बात थी जिसने आपको आपके रुख को पूरा ही बदल दिया और भारत तक तो वापस आने में आपको मजबूर किया?
0: मजबूर नहीं है, एक्चुअली अदर वे अराउंड, हमको मजबूर नहीं किया है। I was so strong to come back to India because otherwise हमको अमेरिका जाने से पहले ही एक घटना हो गई कि हम बाय बर्थ मांसाहार है। हमारा नाम से आपको पता होगा, हम मुस्लिम्स फैमिली में जन्म लिया है, सो मांस गोश्त खाते थे हम लोग हमारा घर में। तो समवेयर अराउंड 11-12 इयर्स ऑफ एज हमको ये लगा कि हम एक गोश्त खाना सही नहीं है। तो वहां से हमारा खोज कैसे हम जीवन करना है, कैसे क्या खाना है, क्यों खाना है, ये सब का सोच हमारा दिल में बैठा है। और हम हमारा दादी माँ के घर विलेज को गए थे, वहां ये दाना का इस्तेमाल होता था। हमारा ग्रैंड मदर ये कुटकी कोंगरी कोडो चावल का रोटी बनाती थी और खाना बनाती थी। तो एक हम 5-10 दिन वहां रखने के इंतजाम होता था। वो खाना खाने से हमको पैखाने में बहुत डिफरेंस लगा। सो वहां से हमको मालूम था कि हमारा पूर्वजों ने जो खाते थे वो हमारा शरीर को स्वास्थ्य देने का एक अंदाज मिला हमको। सो एज आई ग्रो अप एज अ साइंटिस्ट, इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट थिंग्स टूगेदर।
1: जैसे कि आपका परिवार, आपने बताया आपके पिताजी जो हैं वो एक टेलर थे और माताजी जो थी वो मिस्त्री का काम करती थी। ये पढ़ाई में आगे जाना, क्योंकि कई बार होता है बच्चों को जब वो देखते हैं माँ बाप बहुत मुश्किलात से अपने घर को चला रहे हैं, तो उनको होता है कि भाई मैं जल्दी से पढ़ लूँ, कुछ कमा लूँ या सरकारी जॉब कर लूँ तो मैं घर को संभाल लूंगा। लेकिन ऐसे में एक बच्चे का ये सोचना है कि नहीं, मुझे पढ़ाई करते जाना है, शोध करना है, वैज्ञानिक बनना है, इसकी रुचि और इसके लिए प्रेरणा और माता पिता का सपोर्ट कैसे मिला आपको?
0: जब हमारा स्कूल का पढ़ाई होता था, हमको क्लास में हम फर्स्ट आते थे, सो हमारा माता पिता और हमारा ब्रदर भी दे एनकरेज मी टू स्टडी वेल, सो वो तो प्रॉब्लम नहीं था। और हमारे लिए ये स्कॉलरशिप ये सब मिलता था, सो व्हेन यू कम फर्स्ट टू द क्लास आई यूज्ड टू गेट एंड आई

0: ऐसा ही होता है भगवान का लीला. सो यू कैनॉट से व्हाट हैपेंस एंड हाउ इट हैपेंड. हमको
1: मतलब
0: पढ़ने का
1: शुरुआत से ही आप एक बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं. शुरुआत से ही आप एक बहुत मेधावी छात्र रहे हैं. इसलिए पढ़ाई भी आपका
0: मेधावी नहीं है. मेधावी नहीं है. हमको मालूम है हम मेधावी नहीं है. हमको बहुत जिद है. तो जानने का जिद है बस.
1: जी जी.
0: ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों क्या है, ये क्या नहीं है. सो जानने का जिद बहुत था. और हम हमारा घर के पास एक शिवालय टेम्पल था. उसके पास जाके हम वो पेड़ पर बैठते थे. बहुत सारा कहानियां हम सुनते थे. हमारा सनातन धर्म का बहुत सारा हरिकथा, ये वो तो हमारा बाल्य का एक महत्वपूर्ण विषय है. तो बहुत सारा हमारा कानों पे चलता था. तो हम तो नहीं पढ़ा है, लेकिन सब ऐसा ही ऐसा हवा से हमको ज्ञान मिल रहा था. सब लोगों को मिलता था, लेकिन हम एक बात को भी नहीं छोड़ा. ऐसा ही पकड़ पकड़ के हमारे अंदर घुसा दिया है. सो आई रिमेम्बर थिंग्स इतना सही ढंग से. हम वहाँ थे, उस दीवार पे बैठे थे, उस दीवार पे ऐसा कलर था.
1: ये तो बहुत
0: हम क्या
1: सुंदर है.
0: हम क्या किया है, ये सब का सब
1: तो,
0: अभी भी हम.
1: तो खादर जी, आप ये नहीं कह सकते कि आप मेधावी छात्र नहीं थे, क्योंकि इतनी तीक्ष्ण स्मृति किसी की अगर हो उसे तो हम मेधावी कहेंगे. ये आपकी नम्रता है कि आप ये मानते नहीं है, लेकिन यकीनन आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं.
0: नॉट माई थिंग. वो तो आ गई है. तो ये भगवान का प्रसाद है. हम कैसे मान सकते हैं मेरा है.
1: मेरा नहीं. ये जो निमित्त भाव है, ये जो खुद को एक केवल साधारण समझना और असाधारण ईश्वर की अनुकंपा को असाधारण
0: प्रसाद है. वो तो भगवान का प्रसाद है. वही हमको
1: यही मुझे
0: है ना. जिद बहुत इम्पोर्टेंट है. जिद बहुत इम्पोर्टेंट. क्योंकि सारा लोग ऐसा चल रहे है. हमको अंदर से ये मालूम है कि ये सारा लोग गलत रास्ता में चल रहे हैं. क्योंकि ये गोश खाना, ये दूध पीना. दूध हम कैसे पी सकते हैं? हमारा माँ का दूध हमारा है और गाय का दूध बिछड़ा का है. हम खेल क्यों पीना है? ये सवाल का समाधान कोई नहीं दिया मुझे. व्हाई आर यू ड्रिंकिंग काउस मिल्क? गाय का दूध तो गाय का बिछड़ा के लिए प्रकृति में आ रहा है. व्हाई आर यू स्टीलिंग? कुछ भी हो, वेदर इट इज गुड और बैड इज इरेलेवेंट. क्या हक है हमको वो बिछड़े का दूध को छीने का?
1: तो खादर जी, जैसे ये जो आपने कहा कि समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे लोग आंख मूंद करके फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए कभी सवाल नहीं पूछते हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ. दोनों बातें, करना क्यों है, क्यों नहीं करना है, ये दोनों बातें जो है हम कभी भी सोच नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं. इस वजह से आंख मूंद करके जीवन चलाते जा रहे हैं.
0: लेकिन वो ही बहुत बुरा बात है. वो बहुत बुरा बात है. वो बहुत बुरा बात है. हम
1: लेकिन अगर मैं ऐसा समझूं, हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे समझूं कि हम जैसे मैं हूँ या मेरे जो आयु के लोग हैं या जो यंग जनरेशन है, उनको जो पढ़ाया जा रहा है या वो अपने माँ बाप के साथ जो रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उन तक वो ज्ञान पहुँच ही नहीं रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा कि पूछना क्या है. जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ये खाना और ये पीना तो अच्छी बात है, तो वो कभी उसको सवाल नहीं करते कि ये बुरा क्यों है. अगर कोई कहे कि ये बुरा है और ये अच्छा है तो व्यक्ति सवाल पूछेगा, लेकिन जब बात एक जैसी हो गई है, सबने मान लिया है, तो एक नए व्यक्ति को पूछने का कोई स्थान नहीं मिलता. ऐसे में युवाओं के लिए या जो आज का जो जनरेशन है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ शुड वी लिव? क्या करना चाहिए हमें कि हम सही रास्ते पे चले?
0: हाँ, हमको सही रास्ते में चलना का मुख्य अंश बनाना है, बताना है. लेकिन हर आदमी ये सवाल तो हर रोज पूछना है और उसको ये जांच लेना है कि ये सही है या नहीं है. सो डॉक्टर खादर ने बोला वो फॉलो करो. नो, दैट्स नॉट राइट.
1: मतलब अंधश्रद्धा भी नहीं हो, अंधभक्ति भी नहीं हो, ज्ञान का नेत्र खोल करके समझ करके कि ये चीज को ध्यान रखना है.
0: क्या खादर बता रहे हैं ये सही है या नहीं, ये सवाल पूछना है. क्यों ये सही है क्यों ये सही नहीं है, वो तर्क और तथ्य दोनों जुड़ना है। जुड़ने के बाद एक बात अच्छा लगा आपको सही लगा तो वो फॉलो कर। तो हमारा घर में सब लोग गोश्त खा रहे हैं, वो सब लोग मानते हैं गोश्त खाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम लग रहा है। तो हम तो गोश्त नहीं खाए पिछला 50 साल से। आई एम डूइंग फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम एंड एब्सोल्यूटली हम तो एक टैबलेट भी नहीं लिया है आज तक।
1: कई बार ऐसा होता है कि हमारे भोजन के लिए कई लोग हमें कहते हैं कि अच्छा ये नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, उससे ठीक होगा। कई बार इनको पता भी होता है और नहीं भी होता है, सुनी सुनाई बातों पर कहते हैं। तो ऐसे भोजन से संबंधित कई बातें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैं खुद वीगन हूँ, मैं कोई भी पशु प्राणी से आने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर मुझे ये कहा जाता है कि अरे तुम ये नहीं खाते हो तो तुम तो बीमार हो जाओगे, तुम्हारे में कैल्शियम की कमी हो जाएगी आदि आदि। तो ऐसे में क्या जवाब देंगे आप?
0: ये सब वाणिज्यीकरण का बात है, वो वैज्ञानिक बात नहीं है। हमों को सब हमारा खाने से मिलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सब कुछ मिलता है, भगवान ने ये तो इस इंतजाम किया है। वो हम सही रास्ता ढूंढने में हमको ये लोग छिपा रहे हैं, सब कुछ छिपा रहे हैं। सो दिस इज बिकम इंटरनेशनल माफिया, फूड कॉर्पोरेट्स और इंटरनेशनल माफिया। हमको
1: मुझे आपका वो लाइन बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि ये वाणिज्य है ना कि विज्ञान, दिस इज मोर कॉमर्शियल नॉट फैक्चुअल।
0: या देर इज नो वैज्ञानिक बात नहीं है। वैज्ञानिक बात हुआ तो पिछला 80 साल से हम ढूंढ के वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हमारा मानव जाति में हर बीमारी फैल रहे है, ज्यादा हो रहा है, रोगी बढ़ रहे हैं, रोगियों को कुछ भी तसल्ली नहीं मिल रही है। सो ये वाणिज्यीकरण का बात है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। सो हमारा सही वैज्ञानिक रास्ते में हम पिछला 50 साल से चला तो ये सबका सब परिष्कार मार्ग हमको मिलना था, इतना साल में नहीं मिला।
1: तो आपने जो ये पिछले 30 वर्षों में भारत में जगह जगह जाकर के लोगों के बीच में रह करके उनसे बात करके उनको जो ये वापस से पारंपरिक जीवन पद्धति में लाने का जो आपने एक बहुत बड़ा मुहिम उठाया है, इसको जब आपने शुरू किया होगा तब आपके सामने बहुत परीक्षाएं आई होंगी, बहुत तकलीफ हुआ होगा, लोगों ने बहुत ज्यादा चैलेंज किया होगा, साइंटिस्ट ने चैलेंज किया होगा, गवर्नमेंट ने चैलेंज किया होगा, तो उन चैलेंजेस से कैसे पार आया, क्या क्या किया आपने?
0: चैलेंज तो चैलेंज होता है, लेकिन उसका वैज्ञानिक संवाद सबके सामने हम रख रहे हैं, बस इतना ही। हमें सवाल पूछ रहे हैं, ये खाना खाने से आपका खून में असमतुलन आप उगा रहे हैं, उस असमतुलन को हम निकाल कर बैलेंस करने से हमारा बीमारियों हम छुपा सकते हैं नहीं भगा सकते हैं। आज तक ये लोग सो कॉल्ड डॉक्टर्स और छुपा रहे हैं बीमारियों को, वो नहीं भगा रहे हैं हमारा शरीर से। सो हम डायबिटीज को भगा सकते हैं, बीपी को भगा सकते हैं, ये सब वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में हम हमारा खाना में भगवान दिया हुआ ये पारंपरिक दाना में रेशा भरा हुआ दाना में हम हमारा मूल आहार बनाने से हमको रक्त का असमतुलन 6 महीने में बिगड़ जाएगा, समतुलन वापस आ जाएगा, विल ब्रेक द इम्बैलेंस ऑफ ग्लूकोज विद इन 6 months।
1: इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर भोजन में फाइबर की मात्रा ज्यादा है, रेशे की मात्रा ज्यादा है, तो वो भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत उत्तम है?
0: ऐसा नहीं है, वो तो भी रॉन्ग है
1: जी।
0: हमारा खाना में रेशा जुड़ के रखना,
1: अच्छा,
0: इट्स नॉट दैट यू एड फाइबर फ्रॉम आउटसाइड एंड से, वो तो कुछ का काम नहीं है, क्योंकि हमको ग्लूकोज को रिलीज करने में नियंत्रण रूप में निर्धारित प्रमाण में हमारा खून में मिलावट होने का तरीका ये दाना में भगवान छुपाया है,
1: इसलिए शरीर से श्री अन्न कहा जाता है, श्रेष्ठ अन्न, सभी अन्न में श्रेष्ठ,
0: वो नाम हमें दिया है श्री धान, because that's what is food is all about, it has to maintain the balance of glucose।

0: in your bloodstream. Only then you will have no disease. Ye vaijnanik nirvachan abhi tak ye tajna log nahi de rahe hain. वही काम हम हर जगह पे गांव-गांव जाके हम लोगों को बता रहे हैं, आपको 3 हफ्ते से 3 महीने ये दाना खाने से आपका खून पे भरा हुआ ग्लूकोज समतुलन चल जाएगी और आपको स्वास्थ्य वापस बिठाने में यही वैज्ञानिक तरीका है और कुछ नहीं है।
1: लेकिन खादर जी, मुझे एक चीज यही पूछना है, जैसे मान लीजिए आज भारत में, भारत का जो पूरा भूभाग है, उस पूरे भूभाग का जो समझिए एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो ऐसा हो गया कि फलाना राज्य जो है वो धान उगाएगा, फलाना राज्य जो है वो गेहूं उगाएगा, फलाना राज्य जो है वो फलाना चावल उगाएगा आदि आदि, या महाराष्ट्र के लिए कहते
0: हैं। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, दिस इज ऑल पिछला 80 साल से भरा हुआ सवाल है। आप 800 साल पीछे जाइए और वही सवाल हम पूछिए मुझे।
1: तो अगर मान लीजिए, खैर 800 साल के जैसा पर्यावरण अभी तो रहा नहीं, वर्तमान में अगर एक किसान जो कई समय से चावल उगा रहा है क्योंकि उसके पास पानी भी बहुत ज्यादा होता है, आज आपकी बात सुनकर के उसको श्री धान या मिलेट्स उगाने का मन किया, तो क्या वर्तमान का जो वातावरण है, जलवायु की जो परिस्थिति है, उसको क्या वो मदद मिलेगा श्री अन्न उगाने में?
0: श्री अन्न उगाने में अभी नहीं, पिछला मिलियंस ऑफ इयर्स, नॉट 100 इयर्स, 800 इयर्स, 8000 इयर्स, लैक्स ऑफ इयर्स एंड अनदर लैक ऑफ इयर्स इनटू द फ्यूचर, यही है दाना हम उगा सकते हैं कहाँ भी कभी भी।
1: तो अधिक पानी में भी, कम पानी में भी दोनों कंडीशन में उग सकता है।
0: यस यस, सो आपका सवाल सवाल ही नहीं है, क्योंकि
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो समझ में आया कि जैसे पानी कम है तो चावल नहीं उगा सकते, चावल के लिए ज्यादा पानी चाहिए और गेहूँ के लिए भी काफी पानी चाहिए होता है
0: जी। मिस इन्फॉर्मेशन है, यही तो मिस इन्फॉर्मेशन
1: सुना तो आपने, जैसे मुझे भी आज नई ये बात पता चली, आपको भी सुनकर के नया लग रहा होगा कि श्री अन्न या जो मिलेट्स होते हैं वो कहीं पर भी और किसी भी जलवायु में उगाए जा सकते हैं, तो क्यों ना इस चीज का हमें फायदा लेना चाहिए।
0: आपको ये भी मालूम होना है 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हम उगा सकते हैं।
1: अगर ये ज्ञान सब तक पहुंच जाएगी, 10 डिग्री जैसे ठंडे तापमान में भी आप मिलेट उगा सकते हैं और 50 डिग्री जैसे कड़े तापमान में भी आप मिलेट उगा सकते हैं,
0: ये बात नहीं है, ये काम है। हमको मालूम है कि हम ये उगा सकते हैं बिकॉज वी हैव ग्रोन कुटकी एट 45 डिग्रीज, वी हैव ग्रोन एट 10 डिग्रीज, हिमालय के हिमाचल प्रदेश में भी आप कोडो चावल को अभी उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: तो यहाँ पर मुझे आपको पूछना होगा खादर जी, आप कौन सा मिलेट उगाते हैं, विच इज योर फेवरेट मिलेट?
0: देर इज नो वन फेवरेट मिलेट, हम ये प्रकृति में फेवरेट नहीं होता है। दिस इज द क्वेश्चन अगेन अगेन, योर माइंड इज कम्प्लीटली स्क्रूड अप विथ वेस्टर्न थॉट प्रोसेस। नेचर में देर इज नथिंग लाइक नंबर वन, सबका सब एक स्थान होता है, सबका एक सम्मान करना है। सो देर इज नो फेवरेट मिलेट फॉर मी, हम सबका सब सम्मान करते हैं। क्या आप उगा के खा सकते हैं, वही है सम्मान और श्रेय। तो हम 15 दाना उगाते हैं और एक एक दाना आप एक एक अंग का शुद्ध करने में हमको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप एक के नजर एक पे नहीं डालना वैज्ञानिक है। इंक्लूसिव यूज ऑफ बायोडाइवर्सिफाइड मटेरियल्स इज द रूट कॉज ऑफ योर हेल्थ। तो हमको कोडो चावल अच्छा लगा, कोडो चावल ही खाते रहे, आपको बीमारी बन जाएगा। तो ये डाइवर्सिफाइड फूड सिस्टम इज मेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, हमारा अंग अंग को, हाँ ये शुद्ध करने।
1: दोस्तों आपने सुना, जैसे अभी डॉक्टर खादर जी ने बहुत सुंदर बात कही कि प्रकृति में कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, या प्रकृति में कोई भी आगे पीछे नहीं है, सब बराबर है।
0: बराबर का वो सोच नहीं आता है प्रकृति में, वही है

0: भी है, वो ही है, हमारा भी है. सो दैट्स इट. डोंट इवन कंपेयर. बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो तो वही है, हम है. सो इसका रोल वैसा ही होता है. देर इज नथिंग लाइक बिग स्मॉल. तो आपको एंट भी चाहिए, हाथी भी चाहिए. दोनों का जगह है और दोनों का काम है, दोनों का काम जरूरत है इस प्रकृति में. सो देर इज नथिंग बिग अबाउट एलिफेंट, देर इज नथिंग स्मॉल अबाउट एंट.
1: यही बात हमारे शास्त्रों में कही है कि जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई ही काम आएगी, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार काम में आएगी. तलवार का काम ना सुई कर सकती है, ना सुई का काम तलवार कर सकता है. बिल्कुल. दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए डॉक्टर खादर वली जी. डॉक्टर खादर वली जी विश्व भर में द मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत देश में एक मिशन वापस लाया है, मिशन मिलेट. श्री अन्न श्री धान्य, अर्थात ऐसा अन्न जिससे सेहत जो है वो श्रेष्ठता का अनुभव करे, श्रेष्ठ सेहत, श्री सेहत का अनुभव कर सके, ऐसा सेहतमंद भोजन. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खादर वली जी से. खादर वली जी मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है. लेट्स से फॉर मी, मैं अपने उदाहरण से कहता हूँ कि मुझे आज ऐसा लगा कि भाई ठीक है, मुझे मेरे भोजन को परिवर्तन करना है. मैं दिन में बहुत कम खाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं मान लू ऑन एन एवरेज मैं दिन में 3 टाइम भोजन करता हूँ, और 3 टाइम भोजन में मैं कैसे शुरुआत करूँ, क्या परिवर्तन करूँ कि एकदम से अचानक बड़ा परिवर्तन ना लगे, लेकिन मैं धीरे से कर सकूँ उसको, मैं समा सकूँ और उसको एक सस्टेनेबल परिवर्तन कर सकूँ, उसको एक लंबे तौर पर एक जीवन शैली में परिवर्तित कर सकूँ, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे?
0: हाँ, पहला ये सोच आपके मन में आना है कि हम गलत खाना खा रहे हैं. वो तो बहुत मुख्य अंश है कि हमको बदलाव लाना है हमारा खाने का तरीके में और खाने का खाद्य में चीज. सो ये सोच बहुत जरूरी, पहला काम है. तो वो सोच आ गया आपका मन में, जब ये सब हो सकता है तभी हो सकता है. तो आपको जरा सा प्रज्ञा पूर्वक सोच में ये बिठाना चाहा, हम चाहते हैं कि आप लोगों को, अरे इतना लोगों बीमारी पड़ रहे हैं, इतना लोगों हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतना लोगों को कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए कि हम ये खाना सही नहीं है. आपका ध्यान इस पे एक क्षण रखना चाहिए. एंड वी आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज द डॉक्टर्स आर टेलिंग व्हाट एवर यू ईट टेक दिस टैबलेट. सो आपको ये बात मन में आना है कि ये डॉक्टर्स ट्रुथ से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि ये वाणिज्यकरण का बात कर रहे हैं. ये दूसरा बात है. सो ये इफ यू अंडरस्टैंड दिस टू सिचुएशंस, देन आपका खोज, सही खोज शुरू होता है. खोज शुरू हो गया, आपको बदलाव बहुत सीधा साधा लगता है, क्योंकि आपको ये मन में आ गया कि हम आज तक क्या कर रहे हैं वो गलत है. तो सही क्या है?
1: इसका मतलब जो सही समझ के साथ किया हुआ कार्य है वो कभी भी कठिन नहीं लगेगा.
0: हाँ, दैट इज वेयर इज द प्रॉब्लम विथ ऑल द पीपल. दे वॉन्ट टू चेंज बिकॉज समवन टोल्ड. नो, डोंट डू दैट. आपको पहला समझने का बात करो, क्यों ये गलत है. सो सवाल पूछो, क्यों खादर वली बोल रहा है, क्यों मैं चेंज करना है, वाई शुड आई चेंज, वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है. सो ये तर्क और तत्व को आपको पहले समझना. उसके बाद मिलेट खाना नहीं है, कुछ भी घास भी खा सकते हैं आप, इफ यू अंडरस्टैंड. नो नो, आई एम नॉट टेलिंग यू ईट घास, बट इफ आई मेक यू believe that grass is the right thing that you have to eat, you will eat. वैसा ही होता है. तो हमको ये सवाल पूछने का एक आदत बनना है. Whether it is खादर, whether it is this fellow or that fellow, whether कृष्ण भगवान आके आपको बोला, फिर भी सवाल पूछना है.
1: तो दोस्तों सवाल पूछने से नहीं डरिएगा, क्योंकि खादर जी ने तो छुट्टी दी है कि तब तक कोई चीज को आप अपने साथ नहीं जोड़िए जब तक आपने उसका प्रॉपर शोध, प्रॉपर रिसर्च नहीं किया.
0: अभ्यास तो वही होता है. यस,
1: वो धीरे धीरे हम उसको करेंगे, करते करते वो हमको आसान लगने लगेगा, और फिर उससे हमको जो फायदा होगा

0: जो सेहत में हमें बेनिफिट दिखेगा दैट विल मेक अस डू इट बेटर, है ना।
1: 21 डेज, बस 21 दिन में आपको आदत पड़ जाएगा, लेकिन आपको समझ में सही नहीं बिठाया, 21 दिन खाया और उसके बाद छोड़ दिया।
0: तो 21 दिन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन 21 दिन के बाद उसको जारी रखना, इसके लिए समझ बहुत जरूरी है।
1: समझ बहुत जरूरी है, एंड ये समझने का और समझाने का काम लोग करना है, वो तो बहुत बहुत कम हो रहा है आजकल।
0: लेकिन ये काम आप कई समय से कर रहे हैं, और जिस वजह से भारत सरकार ने आज आपको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है, तो मैं समझता हूँ इस काम में आप काफी सफल हुए हैं, और आप आगे भी इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन आज अगर आपको पूरे देश को एक संदेश देना है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एक संदेश यही है कि आपको सवाल पूछकर समझकर आपका जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आपको कुछ बीमारी है इसीलिए बदल रहा है, वो तो सही नहीं। आपको समझ सोच कर बदलाव लाने का एक प्रयास करना एक मानव का अति अद्भुत एक बुद्धि भगवान ने दिया है, उसका इस्तेमाल करना है। सो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई एम इन ट्रबल आई वॉन्ट टू चेंज, नो ऐसा नहीं। आपको सोच समझ कर करने का काम शाश्वत होगा, परिष्कार, वो परिष्कार नहीं लगेगा आपको, दैट व्हाट विल लुक द राइट पाथ, तो
0: वही स्वाभाविक लगेगा, नेचुरल लगेगा वो।
1: यस यस, सो इट्स दैट्स हाउ आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, बिकॉज हमको व्हेन आई वाज 11 इयर्स ओल्ड आई सेड ईटिंग मीट इज नॉट राइट, डिस्पाइट माई होल फैमिली माई रिलीजन एवरी वन से हेल विद दिस, ऐसे हम वो जीव को मार कर खा सकते हैं, दैट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। सो बस इतना ही, एंड एवरीवन सेड ऑल अराउंड मी, एवरीवन ऑल माय रिलेटिव्स, आज भी हम नहीं जाते हैं उस घर में, क्यों वो खाते हैं हम नहीं जाते हैं, दैट्स इट, आई एम नॉट हैप्पी पीपल ईटिंग मीट, वो तो खा सकते हैं, हमको नहीं चाहे बस। So everyone has right to do what they want, but we have no right to kill an animal. बस That's it, as simple as that. So हमको सूर्य भगवान से लेकर सूक्ष्म जीवियों का एक अद्भुत प्रपंच जगत हमको मदद दे रहे हैं हमारा स्वास्थ्य के लिए। ये सब हमारा रिसर्च में परिशोधन में बाहर निकलाया है, हम 30 साल से यही बोल रहे हैं। सूर्य भगवान का वो अद्भुत काशाय रंग का नहाना भी 30-40% बहुत बहुत जरूरी है हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। तो सुबह उठने के वक्त सूर्योदय का समय में आने वाला वो सब का सब किरणों को हमारा त्वच पर डालने से बहुत सारा फायदा हमारा अंदर होता है, और हमारा गट सिम्बायोटिक माइक्रोब्स अति सूक्ष्म प्रपंच अगोचर प्रपंच है, हमको मालूम नहीं है, वो सब हमारा जीवकोश से जुड़कर काम कर रहे हैं। ये सब बहुत सारा बातें जुड़ा हुआ है हमारा स्वास्थ्य।
0: वही मैं वही सोच रहा था कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे काश ये एक घंटा जो है कई घंटे का होता और हम लंबी बातें कर सकते थे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना सिर्फ मुझे खादर जी लेकिन पूरे हमारे जो श्रोता साथी आज सुन रहे हैं हर एक को ये महसूस होगा कि शायद आपके साथ 2-10 जितने भी सेशन हम कर सके उसमें हमें ज्ञान मिलेगा और हम हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा कभी हमसे जुड़ेंगे और हमसे एक लंबी विस्तृत बातचीत करेंगे।
1: दोबारा नहीं, तीसरा बार चौथा बार भी हम आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: जी जी, लेकिन खादर जी इसके पहले कि हम इस कार्यक्रम को अंत करें, हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे जिसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा।
1: ओके, कोशिश करूंगा, हमारा हिंदी तो वैसा ही सही नहीं।
0: हम हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं।
1: हम पिछला 3-4 साल से हिंदी सीख रहे हैं, तो
0: क्या बात करते हैं अब, आपने तो कमाल कर दिया, 3-4 साल में आप इतनी अच्छी हिंदी कह रहे हैं जो कि शायद मुझे भी और हमारे सभी श्रोता साथियों को लग रहा होगा कि ये असंभव है 3-4 साल में आपने बहुत अच्छी हिंदी बोलने।
1: हमारा स्त्रीलिंग पुमलिंग का बहुत गड़बड़ होता है अंदर।

0: के चीज को
1: नहीं ढूंढना,
0: नहीं ढूंढना, नॉट वंडरिंग फॉर एनीथिंग, वेरी नाइस। सुख क्या है, हैप्पीनेस क्या है?
1: सुख तो बीइंग एट ईज, बीइंग कंफर्टेबल, तो बहुत छोटा चीज है। या जस्ट सेटल डाउन, कंफर्टेबल, सुखासन में बैठ के हाँ बात करेंगे वो तो सुख है। अभी हम सुख है ऐसा बात कर रहे हैं।
0: भोजन क्या है?
1: हमारा प्राण को ये ड्रामा करने का एक ही चीज है।
0: तो इट्स लाइक अ फ्यूल, जो ड्रामा करने के लिए हमको ईंधन की तरह जो हमको मदद कर रहा है,
1: मदद कर रहा है। नहीं नहीं, विदाउट भोजन देयर इज नो लाइफ ऑन द प्लैनेट। ये सब ड्रामा हो रहा है। सी द होल प्लैनेट इज किचन फॉर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स। दिस इज द बिगेस्ट किचन यू कैन फाइंड। अर्थ इज द बिगेस्ट किचन।
0: वाह, ये बहुत सुंदर लगा मुझे आपका एक वाक्य कि पृथ्वी जो है सबसे बड़ा रसोई घर है, इट्स द बिगेस्ट किचन फॉर एवरीवन। जैसे आपने बोला कि भोजन जो है वो हमारे प्राण को चलाने के लिए सबसे आवश्यक है, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है कि कर्म क्या है?
1: काम करना,
0: तब करते रहना है, करते रहना है,
1: काम करना बस। सी देयर इज अ डे एंड नाइट, रात में सोना है, दिन में काम करना।
0: भारत क्या है?
1: भारत एक अद्भुत जगह है। हम मानते हैं हमारा सौभाग्य है कि हम भारत देश में जन्म लिया है, क्योंकि इतना सुंदर है उसका सोच, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ये घोषवाक्य कोई देश में नहीं है, और ये हजारों साल से हमको मौखिक रूप में हमारा पूर्वजों ने दिया है। हम भी हमारा आने वाला पीढ़ियों को ये बात सौंपना है। सौंपने के लिए हम हमारा जगह को वैसा ही वैसा रख कर देना है। सो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु का मतलब ये है, हर जीवी वो जन्म लिया है, जना मतलब
0: जिसका जन्म हुआ है।
1: हाँ, जना मीन्स द वन हु हैज टेकन बर्थ। वो एंट भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, आप हो सकता है। सबका सुख चाहने वाला ये तत्व कहां पे भी नहीं मिलता। सो इसी वजह से हमको सही मार्ग, सही ढूंढने का तरीका और मन आपका अंदर बिठा सकते हैं। सो इफ आई वॉन्ट द एंट टू बी एट ईज, हम कैसे जीवन निभाना है? सी दिस इज व्हाट दैट सेंटेंस टीचेस।
0: सर्व जन सुखिनो भवन्तु,
1: इतना अद्भुत है। सो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमको भारत होता है सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ये जीने का तरीका को एक ही वाक्य में हमको समझने का एक कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स इट, फ्लैट सिंपल।
0: जी, प्रकृति क्या है?
1: प्रकृति ही भगवान का एक प्रतिरूप है। भगवान प्रकृति नहीं होता है, लेकिन उससे जुड़कर हम भगवान को खोजना है, भगवान के पास जा सकते हैं।
0: आखिरी सवाल, डॉक्टर खादर वल्ली कौन है?
1: मालूम नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। मुझे तो वो शब्द का, वो प्रश्न का, सवाल का समाधान अभी तो मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो उसका फिक्र भी नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू इवन नो, आई जस्ट लिव।
0: मुझे लगता है डॉक्टर खादर वल्ली जो है वो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ईज, सरलता का, जो सरल है, जो बहरा है, जो स्वाभाविक है, जो नेचुरल है। तो डॉक्टर खादर वल्ली जी, आपने हमारे साथ जो समय बिताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता साथियों को आपने अपने ज्ञान से जो धनवान बनाया आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप इतना सुंदर कर्तव्य कर रहे हैं पूरे देश को निरोगी करने के लिए श्री अन्न के द्वारा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमसे दोबारा
1: आने वाला 20 साल में हमको हमारा भारत देश को निरोगी बनाने में आप भी मदद दीजिए। Let's work together.

0: ऑल आई कैन नॉट डू.
1: हम तो एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकते, हम सब मिलके करना है काम
2: जी. और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले 20 वर्षों में जो आपने कहा भारत संपूर्ण निरोगी हो सकता है भोजन के जरिए, ये हम जरूर कर सके. तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, रेडियो मधुबन का साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और आते रहिएगा.
1: शुभरात्रि.
2: दोस्तों क्या खूब है ना ये कुछ पल जिनको हम समेटते हैं एक घंटे में, लेकिन इन एक घंटों में कितनी बातें, जीवन के कितने ऐसे पहलू हमारे सामने उजागर हो जाते हैं जिनके बारे में कभी हमने सोचा नहीं था. कभी भी दूर दूर तक भी ऐसे सपने में नहीं सोचा था कि चावल, गेहूं, चीनी, इससे भी हमारे सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, जो कि हमारे दिनचर्या का, रोजमर्रा का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बगैर कई लोग कहते हैं आज चावल नहीं खाए तो मेरा दिन कैसा जा रहा है, चीनी बगैर चाय नहीं, चाय बगैर जीवन नहीं, ऐसे तो बहुत होंगे हम में से कई लोग. और खादर वल्ली जी का ये परिशोध, ये रिसर्च कि जो श्री अन्न है, जो ऐसा भोजन है जो कि रेशेदार है और हमारे शरीर में, हमारे खून में ग्लूकोज का संतुलन बनाए रखने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, ये हमारे सेहत को वापस से सही पटरी पे ला सकता है. डॉक्टर खादर वल्ली जी जैसे कई ऐसे महान हस्ती यशस्वी भारत कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं, जुड़ते रहेंगे, लेकिन इनका जुड़ना और हम सब से मिलना तभी मजेदार होता है साथियों जब आप भी जुड़ते हैं. अगली बार हम फिर आएंगे आपके पास एक नए मेहमान को लेकर के. तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी हाँ, श्री अन्न को जरूर अपनाइएगा. फिर मिलेंगे एक और नए हस्ती के साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वागत है ज्ञान चिंतन में। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है आंतरिक सुंदरता। इस पर मैं आपसे अपना चिंतन शेयर करूँगी। दोस्तों, सही सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। बाहरी आकर्षण कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन असली पहचान इंसान के विचारों, भावनाओं और उसके आचरण से होती है। आइए अब हम समझते हैं आंतरिक सुंदरता क्यों महत्वपूर्ण है। सच्ची सुंदरता अच्छे विचारों, ईमानदारी, करुणा और सहानुभूति में होती है। आत्मविश्वास, सादगी और सकारात्मकता व्यक्ति को अधिक आकर्षित बनाती है। बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन अच्छा स्वभाव और नेक दिली हमेशा याद रहती है। संबंधों की गहराई का जीवन में बहुत महत्व है। रिश्ते केवल चेहरे की सुंदरता से नहीं बल्कि दिल की गहराई से बनते हैं। जीवन में संतुष्टि और खुशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आंतरिक सुंदरता वाला व्यक्ति खुद से संतुष्ट रहता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आंतरिक सुंदरता को कैसे

0: करें, सकारात्मक सोच अपनाएं और हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करें। दूसरों की मदद करें और सहानुभूति रखें। अच्छी आदतें और संस्कार अपनाएं जिससे लोग आपको पसंद करें। ज्ञान अर्जित करें और अपने अंदर बौद्धिक और मानसिक विकास करें। आभार व्यक्त करें और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। आज के इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और स्वभाव में होती है। जब हम अंदर से सुंदर होते हैं तो हमारी आभा अपने आप बाहर भी दिखाई देती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंदित रहा
1: विथ ब्रह्मकुमारीज. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. Sister Shivani, welcome.
2: Om Shanti.
1: Om Shanti and welcome to Being Shakti.
2: Thank you.
1: पिछली बार मैंने कुछ पढ़ा था, लेकिन वो बात भी अधूरी रह गई और कुछ मेरे प्रश्न भी अधूरे रह गए, तो मैं दोबारा उस लाइन को पढ़ना चाहूंगा. It says, if we could look into each other's hearts and understand the unique challenges each of us faces, if we could look into each other's hearts and understand the unique challenges each of us faces, I think we would treat each other much more gently, with more love, patience, tolerance and केयर. अभी ऊपर की सबसे पहला तीसरा वर्ड है कुड. इफ वी कुड लुक इन टू ईच अदर्स हार्ट्स,
2: विच मीन्स इफ वी कुड एवर अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ दैट सोल. इट्स सिंपल, एक सिंपल चीज देखते हैं. सपोज मैं यहां से चल के जा रही हूँ और मैं लिंप कर रही हूँ, ठीक है, तो वो लिंपिंग टेढ़ा चलना according to you will not be the definition of right walk. Right? जो हम कहते हैं ना, हमारे अनुसार वो सही नहीं कर रहे, यही तो हमारी disturbance का main कारण है. तो आते हैं कि ये बिल्कुल सही चलने का तरीका नहीं है. And which is according to the normal definition of right, क्योंकि हम बार बार जब justify भी करते हैं ना कि normal भी तो ऐसे नहीं चलता ना कोई भी, तो ऐसे कैसे चल सकते हैं, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, इसको चलना नहीं आता, जान पूछ के तो नहीं ऐसे चल रहे, मुझे तंग करने के लिए तो नहीं ऐसे चल रहे,
1: डिस्ट्रैक्ट अटेंशन करने के लिए तो नहीं कर रहे,
2: अट्रैक्ट करने के लिए तो ऐसे नहीं चल रहे,
1: विक्टिम अपने आप को पिचारी बताने के लिए,
2: पिटी के लिए तो ऐसे नहीं चल रहे, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए तो ऐसे नहीं चल रहे,
1: टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स के लिए,
2: ओ बाबा, टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो नहीं ऐसे. सी जस्ट सी, एक सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा चलने से कितनी सारी थिंकिंग हो रही है अंदर. नाउ इफ यू कुड एक्चुअली नो द रीजन व्हाई आई एम वॉकिंग लाइक दैट, जब तक आपको रीजन पता नहीं है तो कितनी नेगेटिव थिंकिंग, कितनी डिस्टर्ब्ड थिंकिंग, कितना मेरे प्रति गलत सोचना कि जान पूछ कर रहे हैं, अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक अलग स्टाइल क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, कितनी सारी थॉट्स, ओनली वाई, बिकॉज यू डोंट नो द एक्चुअल रीजन. दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट. इट्स सच अ ब्यूटिफुल लाइन कि इफ वी कुड सी इन टू द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन, कि वो ऐसे जो हैं वो क्यों हैं. अब जैसे अगर आपको पता चले कि चोट लगी है, पैर मुड़ चुका है, इसलिए ऐसे चल रहे हैं, तो ये सारी थॉट्स फिर सारी थॉट्स खत्म हो जाएंगे.
1: नहीं, अपने आप को भी बुरा लगेगा
2: कि हमने ऐसा क्यों सोचा
1: इसके बारे में.
2: वेरी ट्रू.
1: और वाकई जाके देखो तो बेचारा लंगड़ा है, दर्द में है, और मैं इतनी बातें कर रहा हूँ कि देखो अटेंशन सीकर रहा है, विक्टिम बता रहा है, हम क्या क्या कर रहा है मतलब.
2: और फिर जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली तो लिंपिंग इसलिए है कि चोट लगी है, पैर मुड़ चुका है,
1: पैरालिसिस हुआ होगा,
2: अच्छा तो अब आप क्या करेंगे.
1: अब हम बोले अपने आप को भी बुरा लगेगा,
2: पहले गिल्ट फील होगा कि हमने गलत सोचा, और
1: कंपैशनेट हो जाएंगे ना, कि
2: कंपैशनेट भी हो जाएंगे कि अच्छा इस वजह से ऐसे चल रहे हैं. और कुछ
1: और क्या, अगर कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं तो हम कहीं छोड़ देंगे, बोले कि आपको हम लिफ्ट दे देते हैं.
2: परफेक्ट, अब आप हेल्प करेंगे.
1: हाँ.
2: सी कहाँ थे और कहाँ आ गए जस्ट विद द नॉलेज कि एक्चुअली वो ऐसे क्यों चल रहे हैं. यही तो वो लाइन है कि इफ वी कुड लुक इन टू द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन एंड नो द जर्नी ऑफ वॉट दे आर गॉन थ्रू, वी वुड बिकम मोर टॉलरेंट, मोर काइंड, मोर जेनरस,
1: एंड वी विल बी मोर, विल टेक मोर केयर.
2: वही आपने कर दिया कि अगर नहीं पता था क्यों टेढ़ा चल रहे हैं तो इतनी नेगेटिव थिंकिंग, डिस्टर्ब थॉट्स, एंड व्यक्ति ही गलत है, फिर पता चल गया तो अपनी थिंकिंग गलत लगी, दूसरे के प्रति कंपैशन हुआ और तीसरा उनको हेल्प करना भी चाहा।
1: एक दिन एक स्कूटर पे आदमी जा रहा था तो एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था तो स्कूटर वाले ब्रेक मार के उसको गाली दी और पूछा कि अंधा है क्या। वो टर्न करके बोला हाँ बाबा मैं अंधा हूँ। कितना उसको लगा होगा, बोला देखो एक्चुअली अंधा था वो।
2: हर आत्मा जो चल रही है, जिसके लिए हमने कहा कि वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो हमें जान पूछ के तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें हर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो तो खुद ही लंगड़ा रहे हैं, वो आपके साथ माइंड गेम्स
1: को कंट्रोल करने की कोशिश करे वो लंगड़ा रहे।
2: जो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे वो क्यों किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? लेट्स थिंक नाउ, वी रिफ्लेक्ट, यू नो हमारे पास सारे आंसर्स हैं। अगर मैं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करूं, आप मेरा कहना माने, आप मेरे कहे अनुसार चले, मैं जो कहूं वो सही है, आप वैसा करें, इट्स अ सेंस ऑफ
1: मैं वो कहूं,
2: मैं जो कहूं वैसा आप चले, क्योंकि मैं जो कहती हूं वही सही है, आपको वैसा ही चलना चाहिए, उसमें आपका ही फायदा है, दिस इज अ सेंस ऑफ
1: कि आई नो बेटर देन यू
2: एंड इट्स अ सेंस ऑफ
1: सुपीरियर फीलिंग
2: एंड इट्स अ सेंस ऑफ
1: कंट्रोलिंग अदर्स,
2: इट्स अ सेंस कि जब आप मेरे अनुसार चलेंगे तब आई एम पावरफुल, आई फील पावरफुल ना, लोग मेरा कहना मानते हैं। सी हर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी पावर है, शक्ति है। जब हम शक्तिशाली महसूस करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट? ईच वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू बी पावरफुल। जैसे प्यार हमारा ओरिजिनल क्वालिटी है तो हमें अच्छा लगता है जब हमें प्यार अनुभव हो, लेकिन आज अपनी ओरिजिनल क्वालिटी प्यार नहीं अनुभव हो रही थी तो कब अच्छा लगता था? जब कभी किसी और से प्यार मिले। सम्मान रिस्पेक्ट हमारी ओरिजिनल क्वालिटी थी, नई अनुभव हो रही थी तब अच्छा लगता था जब कोई और हमें रिस्पेक्ट दे, और अगर किसी और ने रिस्पेक्ट नहीं दी तो हमें रिस्पेक्ट की कमी महसूस होती थी। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। पावर हमारी ओरिजिनल क्वालिटी थी। पावर एक्चुअली तब अनुभव होगी जब हम अपने ऊपर कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा था तो हमें पावरफुल कब फील होता

0: था जब दूसरे लोग हमारे कंट्रोल में चलते हैं. एवरी क्वालिटी ऑफ द सोल, आत्मा को वो सातों क्वालिटीज अनुभव करनी ही करनी है, उसको चाहिए वो. सिर्फ फर्क ये हो रहा है जब अपने अंदर से नहीं महसूस हो रही तो वो उसको बाहर से महसूस करने की कोशिश करती है. तो आत्मा जब खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, अपने मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रिया कंट्रोल में नहीं, तो द सेंस ऑफ पावर केम फ्रॉम कंट्रोलिंग अदर पीपल. एंड इफ यू सी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर ऑन दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल. वो हम पोजिशन से कंट्रोल करने की कोशिश करें, रिश्ते के नाते कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम बड़े हैं एज में इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन जब लोग मेरे कंट्रोल में हैं तब आई एम पावरफुल. और अगर लोग मेरे कंट्रोल में नहीं तो आई फील अब तो मेरे कोई कंट्रोल में ही नहीं है, वेरी पावरलेस. एंड जब लोग मेरे कंट्रोल से बाहर जाना शुरू करते हैं इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. तो ये जो आप कह रहे हैं कि कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल मीन्स को किसी न किसी तरह वो ट्राई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कह लो उसको. मैनिपुलेट करना भी मतलब क्या करना, कि वो आत्मा कुछ ऐसा ऐसा करेगी जिससे आपकी मन की स्थिति उसके अनुसार चले. मैनिपुलेट कर रहे हैं वो आपको, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी अपने मन की स्थिति उसके अनुसार नहीं चलती है. हर आत्मा की, ये कोटेशन इतनी ब्यूटीफुल है, हर आत्मा की जीवन में हमें नहीं पता क्या क्या हुआ, उसके बचपन में उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता. शायद उसको रिजेक्शन मिला हो पेरेंट्स से, किसी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला हो पेरेंट्स से, किसी को बहुत ही कंट्रोलिंग पेरेंट्स मिले हो जो बहुत डोमिनेट करते हैं उसके ऊपर.
1: जरूरी थोड़ी पेरेंट्स ऐसे हो, तुम खुद ही पैदा हुए ऐसे विद आई वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड.
0: चलो अगर
1: जन्म से आप लेके आए होंगे
0: संस्कार भी लेकर आए हो, संस्कार भी लेकर क्यों आए हो, कभी ना कभी कुछ अनुभव हुआ होगा ना.
1: मतलब आपका ये है कि कोई कंट्रोल करे मुझे तो मैं आगे जाके
0: कंट्रोल करे, एक्सप्लॉइट करे, अब्यूज करे, उस क्षण मुझे ऐसा फील हुआ होगा कि आई एम बीइंग ओवरपावर्ड बाय अदर पीपल, आई एम वेरी वीक. ये मेरे अंदर प्रोग्रामिंग में फिट हो गया. जब मेरी प्रोग्रामिंग में फिट हुआ आई एम वेरी वीक, अब मुझे मैं पावरफुल हूं ये मैं कैसे प्रूव करूं अपने आप को, बाय कंट्रोलिंग समवन एल्स ना. उसके अलावा हाउ विल आई बी एबल टू प्रूव टू माय सेल्फ कि नो आई एम पावरफुल.
1: व्हाई कांट आई से कि यस आई एम वीक एंड आई कांट फाइट दिस.
0: आई कांट फाइट व्हाट,
1: व्हाटएवर इट इज इन लाइफ.
0: वीकनेस किसी आत्मा का संस्कार नहीं है. हर सी वी हैव
1: आपने कहा ना कहीं जब मुझे कोई कंट्रोल कर गया होगा पहले, एक्सप्लॉइट कर गया होगा, फाइन आई वॉज एक्सप्लॉइटेड, आई वॉज
0: एक्सप्लॉइटेड, तो वो दर्द तो हो गया ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग में.
1: तो उस वजह से दूसरे के साथ करने की क्या जरूरत है?
0: दूसरे के साथ हम इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं. सी दैट इज ओनली वॉट इज ट्राइंग टू टेल अस, कि अगर हमें समझ में आ जाए कि यात्रा क्या थी, आत्मा के साथ क्या क्या हुआ था, तो फिर उसका प्रेजेंट बिहेवियर हमें अजीब नहीं. कोई जान पूछ के आके नहीं कंट्रोल करता, हाँ ना अभी मैं इनको कंट्रोल करूंगी, ऐसा कोई नहीं कर रहा है. नोबडी इज मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग डेलिबरेटली. जो वो कर रहे हैं उनको वही करने का तरीका सही लगता है. उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो जान पूछ के कुछ कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं. बट हमें अब अपने आप को कैसे उनसे प्रोटेक्ट करना है, हमें सी पावर टू टॉलरेट मीन्स व्हाट, सहन करने की शक्ति हमारे अंदर तब आएगी जब हम सामने वाली आत्मा के बिहेवियर को सिर्फ ना देख, बिहेवियर के पीछे की इंटेंशन और उसके पीछे के दर्द को समझने की कोशिश करें.
1: इंटेंशन तो बैड ही है लेकिन दर्द को देखेंगे तो फिर टॉलरेट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो समझ गए.
0: इंटेंशन भी एक्चुअली बैड नहीं है, इंटेंशन बैड नहीं है. बहुत बहुत कम लोग होंगे जो इंटेंशनली गलत कर रहे होते हैं, दैट्स अ वेरी स्मॉल नंबर. मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स जो हमें गलत दिखाई दे रहे हैं,
1: मोस्ट ऑफ द अदर पीपल आर मजबूर
0: अपने संस्कार के परवश,
1: संस्कार की वजह से वो मजबूर हैं कि दे कैन नॉट डू अदरवाइज.
0: यस, वो अपने वो ऐसे प्लान करके इंटेंशनली नहीं कंट्रोल कर रहे.
1: मुझे

0: गुस्सा आ जाता है तो मैं आपको हर्ट करने के लिए रुलाने के लिए तताने के लिए नहीं करता हूँ, वो मेरे अंदर का संस्कार है। फिर तो ऐसा झूठ क्यों बोल रहा भाई साहब, साफ क्यों नहीं बोलता एकदम, फिर मैं चिढ़ जाता हूँ। बट मेरा उसके अंदर इंटेंशन है कि आएगा तो वो ऐसा बोलेगा तो मैं उसको रुलाऊंगा और आप जाके वहाँ रोने लगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं
1: है। एक्जैक्टली, दिस इज इट।
0: अच्छा टेल मी स्ट्रेट ना, व्हाई झूठ क्यों बोलते हो?
1: बस लेकिन अगर मैं अब रोने लगू और उदास हो जाऊं, मतलब ऐसे बोल दिया मुझे गुस्सा कर दिया,
0: तो आप सोचेंगे कि मैं घर से सोच के आया कि था कि आज आपको रुलाऊंगा, ऐसा तो था नहीं।
1: ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। सिर्फ ये है कि जिसे गुस्सा एक बड़ी विजिबल एनर्जी है ना, गुस्सा ना दिख जाता है कि कोई गुस्सा कर रहा है, लेकिन उसको भी हम में से मेजोरिटी लोग काफी पर्सनली लेते हैं। मुझे गुस्सा कर दिया, मेरे साथ ऐसे बात कर दी, अभी आपने क्या कहा, मैं जान पूछ के आपके साथ ऐसी बात नहीं की, मुझे
0: प्लान किया न सोच के
1: तो कोई नहीं कर दिया।
0: जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि इसका उसकी प्लानिंग है, इंटेंशन है और क्या क्या, वो वर्ड पहले मैंने यूज किया था भूल गया,
1: हर्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए।
0: तो मैनिपुलेट करने के लिए तो प्लान करना पड़ता है, तो यहाँ कहाँ, ये तो एक दिस पर ऑफ द मोमेंट आ गया,
1: संस्कार के परवश,
0: हीट ऑफ द मोमेंट खट।
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हीट ऑफ द मोमेंट निकला तो वो क्या निकला, वो आपका संस्कार निकला ना। अब मैं अपने नजरिए से देखूं कि अगर आपने आए, मैंने कुछ किया गलत, जैसे आपने कहा चलो झूठ बोला, मैंने अगर झूठ बोला या झूठ नहीं बोला, आपको लगा झूठ बोला तो और भी तकलीफ होती है कि मैंने तो झूठ बोला ही नहीं था एक्चुअली, आपको लगा मैंने झूठ बोला, हीट ऑफ द मोमेंट आपने कहा, रिएक्ट कर दिया। सपोज अब मैं ये थिंकिंग करूं, जब आए मुझे गुस्सा किया, मैंने सच बोला था फिर भी गुस्सा किया, जान पूछकर मुझे तंग करते हैं, चाहते हैं कि मेरा काम खराब हो जाए, इनको मालूम है इनके गुस्सा करने से आगे मेरे से काम होने वाला नहीं है, ये मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं मेरा काम गलत करने के लिए, इज ऑल दिस राइट?
0: मेरा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ,
1: बट इज ऑल दिस ट्रू?
0: नहीं,
1: इज नॉट ट्रू ना,
0: इज नॉट ट्रू। बट फॉर आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज किसी को ये मालूम करना है कि मैं अपने बेटे के लिए कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, तो अगर कोई मुझसे आके डायरेक्ट पूछे कि भाई साहब फिल्म इंडस्ट्री में इन्हों का भी ऊपर नीचे होता रहता है, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट सी कर लो जहां से एक मंथली इनकम आए, तो अगर वो नहीं पूछ के बोले देखो मैं तो अपने लिए अपना काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं और ऐसा ऐसा है, आपको भी करना चाहिए, तो नाउ दे वॉन्ट टू नो कि सडनली मैं बोलू हाँ हाँ मैंने तो किया है। अब इतना सोच के इतना घुमा के कोई बात करे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग,
1: ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, ऑनेस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये भी तो एक विशेषता है ना।
0: अब मैं वो चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ।
1: हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अंदर विशेषता है वो सबके अंदर होनी चाहिए।
0: मुझे क्या मालूम है विशेषता, मैं समझ नहीं।
1: अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपकी विशेषता है, मेरे अंदर नहीं है सपोज, ठीक है, लेकिन मैं इतना गुस्सा नहीं करती,
0: आपसे की बात नहीं है,
1: हर एक के अंदर अलग अलग।
0: आपको कुछ मेरे से जानकारी करनी है तो इतना घुमा के बोझ तो मेरे पिताजी ने तो किया था, मेरे माता जी ने।
1: ऑनेस्ट कम्युनिकेशन मेरी क्वालिटी नहीं है।
0: ओके,
1: मैं पीसफुल हूँ, आप क्यों नहीं पीसफुल हो जाते एक सेकेंड में, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं?
0: अभी उस दिन क्या हुआ, हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो यहाँ पर एक टीम आई थी, कोई अपनी पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, जो भी उनका मीटिंग थी, जो भी उसमें फंक्शन था, गाना वाना जो भी था, भागते भागते आ रहे हैं, हम आपको देखते हैं, मैंने बोला कैमरा इज ऑन, मुझे गुस्सा रहा, मतलब रुक जाओ। तो आपने क्या किया, बोले प्लीज लेट देम कम, आओ बैठो, हाँ जी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं मैम, और बड़ा अच्छा लगता है सुबह अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी से हमने बहुत सीखा, आपने उनको एक डेढ़ मिनट दिया, वो भी खुश, हम भी खुश, सब चले गए। उस दिन अगर मैं आप नहीं होते, मैं उनको डांट देता था, आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो, आप अपने आपके फंक्शन में मैं आके बीच में बोलूँ कि एक्सक्यूज मी कैसे लगता है, सपोजिंग आप स्पीच दे रहे हो माइक पे और आप बोल रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट दिखता है, मैं बोले हेलो हेलो हेलो आई लाइक यू, आई सेड दिस इज माई बिजनेस लाइक दैट इज योर्स, तो मैं दूसरे एंगल से देखता। आपने क्या किया, उसको डेढ़ मिनट में निकाल दिया। अब वो मेरे में विशेषता नहीं है ना।
1: कोई बात नहीं ना, यही तो हमारी जर्नी है कि हम दो लोगों के अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं, इसी तरह हम दो लोगों के अंदर कमजोरियां भी अलग अलग होनी है, कमजोरियां भी अलग अलग होनी है ना। तो अगर डायरेक्ट सीधी बात करना आपकी विशेषता

0: विशेषता है, हो सकता है वो मेरी विशेषता नहीं होगी, तो मुझे अजीब लगेगा सीधा सीधा पूछना आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। मैं नहीं पूछ सकती, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है ऐसे सीधी बात करने का।
1: मुझे बोलते हैं तुझे बड़े ब्लंट हो जी।
0: हाँ तो फिर अब अच्छा अभी ब्लंट तो अभी आप देखो उस विशेषता को भी जिसके अंदर वो विशेषता नहीं होगी उसको वो विशेषता भी अजीब लगेगी ऐसे सीधा सीधा बोल
1: रहे हो। तुझे कमाल कर दो, ब्लंट हो जी बड़े
0: सीधा सीधा
1: ऐसे कोई बात करते हैं मुंह पे ही पूछ लिया आपने।
0: बस दिस इज व्हाट डिफरेंस इज, वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। अब क्योंकि मैं इतना डायरेक्टली नहीं पूछ सकती कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया, मेरे से नहीं पूछा जाता ऐसे सीधा सीधा, तो मैं पर मेरे को जानना भी है, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करना चाहिए, आपने किया क्या, ये
1: आप क्यों नहीं कर देते,
0: नहीं मतलब दो चार ऐसे ऐसे बात करके ताकि मुझे वो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर वो विशेषता नहीं है, मैं इसको जान पूछ के नहीं कर रही।
1: बट तीसरा थिंग ना मेरे बारे में दिमाग में चलते, ये आया या आई मुझसे पूछने के लिए कि मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ किया नहीं किया, क्यों इसको इतनी इंक्विजिटिवनेस है, क्यों जानकारी
0: जानना चाहती
1: है, और जानना भी तो सीधा क्यों नहीं पूछा,
0: सीधा नहीं बोलना
1: क्यों मेरे ऊपर बड़ा एहसान करके कि आई विल शो यू हाउ टू इन्वेस्ट दिस दैट दैट करके इतना अच्छा। अगर मैं बोल दूं कि ये किया तो आई विल शो यू, आप तो शो नहीं करे, आप तो सुन के अपना मतलब सीधा किया भाग गए।
0: मैं उसी के लिए आई थी ना, सीधा पूछना मुझे नहीं आता, मैंने दो तीन तरह से बात करके पूछ लिया काम हो गया मेरा, मैं जान पूछ के नहीं किया।
1: दिस इज नॉट मैनिपुलेशन,
0: नो दिस इज नॉट मैनिपुलेशन,
1: दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन,
0: दिस इज अ संस्कार ऑफ दैट पर्सन कि वो जानना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, तो वो कुछ ऐसा ऐसा करेंगे। और आप देखो नॉर्मली भी कुछ लोगों के अंदर संस्कार होता है, सपोज उन्हें कहीं जाने वाले हैं वो, ठीक है, जैसे बहुत बार लोग मिलते हैं उनका प्रोग्राम फिक्स्ड है, वो कहीं जाने वाले हैं, उनकी डेट फिक्स्ड है, उनकी टिकट बुक्ड है, उनका सब कुछ हो गया है, उनसे पूछो आप जाने वाले हैं वहां पे, हाँ सोच रहे हैं, बना रहे हैं प्रोग्राम, चले जाएंगे थोड़े दिन में, वो नहीं बताएंगे कि डेट क्या है, कब जा रहे हैं। अब इनके लिए
1: शायद भी
0: शायद हाँ बन रहा है प्रोग्राम, देखते हैं शायद हो जाएगा। अब फॉर मी इनिशियली आई वुड फाइंड दिस स्ट्रेंज, ऐसे मतलब जब सब कुछ फिक्स्ड है पता है तो बताने में क्या जाता है, लेकिन देन व्हेन यू सी फ्रॉम द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, नहीं है कॉन्फिडेंस अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील करने का, या कोई वहम है कि नहीं बताना चाहिए, एक संस्कार है कि मुझे अपने बारे में सब नहीं बताना है।
1: बिना मतलब के भी लोग झूठ बोलते हैं, बिना मतलब, जैसे एक वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स हु केम टू माई हाउस, बाहर से आया तो मेरा फोन बजा, तो उसका मैंने बोला तुम्हारे लिए फोन आया, भाई कब आए, बोले कल ही आया, आगे 10 दिन हुए, आदत है। और उसको दूसरे को फोन किया कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैंने बोला तुम निकले नहीं आज से आधे घंटे, कोई बात नहीं।
0: अच्छा, अभी तो आपने एक लाइन यूज़ की, आदत है, आदत है ना, ठीक है, अब इस लाइन को हमें शेयर,
1: झूठा है नहीं बोल रहा, उसको इस तरह की झूठी बात करने की आदत,
0: आदत है।,
1: है
0: वो ठीक है, आदत है बोलना ठीक है, रादर देन थिंकिंग जान पूछ के मुझे झूठ बोला, डेलिबरेटली मुझसे छुपाया, मुझे तंग करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी,
1: तो फिर ये मेरे बारे में भी बोल सकते हैं, फिर मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ और सोचता ये उल्टा है, तो फिर उल्टी सोच का अपने आप को भी लेबल देना पड़ेगा।
0: दिस इज द डिफरेंस। अभी पहले आपने थोड़ी देर,
1: वो अगला बंदा बोलेगा कि मेरे में वीकनेस है कि मैं सच नहीं बोल सकता,
0: वो ये भी नहीं,
1: जा रहा
0: हूं। वो ये नहीं बोलेगा, ये नहीं
1: सपोज वो बोले वीकनेस नहीं, वो बोले मेरा तरीका ही नहीं है, मुझे वह मैं नहीं बताता मैं ट्रैवल का, फॉर एग्जांपल, ठीक है वो है वो, लेकिन मेरे में तो वो बोल सकता ना कि आप मुझे क्यों
0: लेबल लगा रहे, मेरे बारे में क्यों गलत सोच रहे हैं। अब जिसके अंदर ये वहम है ना कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उसके पीछे भी रीजन है उस आत्मा के पास, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में या इस जन्म में उस आत्मा ने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन किसी को दी होगी और उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। यस दैट इज
1: या किसी, मैं किसी और चीज में तरफ, या कुंडली वाले ने बोला होगा
0: ये भी
1: कि प्लीज कभी भी ट्रैवल कर दो तो किसी को बताना मत,
0: दैट थॉट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जर्नी अगर आप उसके झांक कर देख लो कि उसके साथ क्या हुआ है जीवन के अंदर, क्यों वो जैसा है, ऐसा वो क्यों है, देन यू विल बिकम मोर टॉलरेंट काइंड एंड
1: वी कुड लुक इनटू ईच अदर्स हार्ट।

0: हमें सिखाती है, वो आत्मा भी किसी चैलेंज से गुजरी है, वो चैलेंज ने उसको दर्द दिया, उस दर्द ने ये संस्कार बनाया और ये संस्कार के थ्रू आज वो आत्मा बिहेव कर रही है। वो कुछ भी मेरे साथ जानबूझ के डेलिबरेटली मैनिपुलेट करने के लिए नहीं कर रहे है।
1: नाउ आई कैन नॉट टेल एनीबॉडी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू और बिहेव, आई मीन डील विद यू, क्योंकि फिर वो भी बेचारा मजबूर है ना।
0: वो डेलिबरेटली, वन थिंग वी हैव टू जस्ट ऑलवेज रिमेम्बर कि कोई जो हमारे साथ
1: मजबूरी इन द सेंस उसको मजबूर, उसको मालूम नहीं है,
0: उसको मालूम नहीं है,
1: पर्सन थिंक्स दिस इज राइट,
0: दिस इज राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें ये याद रखना होगा, वो आत्मा वो चीज हमारे साथ नहीं कर रही है, हम उसको पर्सनली लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया। सी जैसे अभी आपने बोला मैंने ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट गुस्सा कर दिया, राइट? तो ये जो आपने कहा मैंने गुस्सा कर दिया, विच मीन्स आप जैसा बिहेव करेंगे इट विल कम आउट थ्रू द फिल्टर ऑफ योर संस्कार ना। तो मुझे ये लगता है कि मुझे क्यों गुस्सा किया, ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ इन्होंने ऐसा नहीं किया है, उनका वो संस्कार है। छोटा सा भी स्टिम्यूलस आएगा तो जिस आत्मा का जो संस्कार होगा और वो जिस चैलेंज की वजह से क्रिएट हुआ होगा, वो आत्मा उस संस्कार के थ्रू ही ट्रिगर करके बिहेव करेगी।
1: ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा सिस्टर, एंड उसका जवाब इतना अच्छा मिला। दिस एपिसोड हैज टॉट मी अगेन समथिंग।
0: थैंक यू
1: सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: इफ वी लुक एट द जर्नी ऑफ एवरी सोल एंड अंडरस्टैंड द यूनिक चैलेंजेस Each one faces, we would treat everyone much more gently, with love, patience, tolerance, and care. Each soul is carrying sanskars created in many lives. In each life, the soul gets a new body, new parents, environment, situations faced and conditioned responses to them. All these factors create different sanskars of the soul. Souls on the journey of many lives could have experienced pain, abuse, trauma, betrayal, rejection, failure, authority, recognition, attachment, and many other experiences. What each soul is today is a result of the vast spectrum of experiences on this long journey. Every soul wants to experience its original qualities. When we are not able to experience it within, we feel nice when we get it from outside, even if it is temporary. We feel love when others love us, feel good when others respect us, feel powerful when others obey us. Instead of radiating our qualities in our relationships, we keep seeking from others for our fulfillment. Powerful soul means a soul whose mind, intellect, sanskars and therefore sense organs are in its own control. When a soul does not experience its true power, it tries to fulfill its sense of power by controlling others. To understand the other soul's behavior, go beyond the behavior to understand their sanskar and the pain behind that sanskar. People do not intentionally want to hurt us or manipulate us. Their behavior through their recorded sanskar is what

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रिया, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हम जाएं बंदर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपना है।

0: असतो होतो. नळजमिनीतील ही गाथा आपल्याला शिकवते की जीवनात संकटे तात्पुरती असतात, पण विश्वास आणि प्रेम कायम टिकतात. आपल्या जीवनात ही प्रेरणा घेऊन आपण पुढे जाऊया. मी आरजे संजय रेडिओ पुणेरी आवाज वरून तुमचा निरोप घेतो. पुन्हा भेटूया एका नव्या कार्यक्रमात एका नव्या प्रेरणास्वर. आनंदी रहा, आनंद लौटा. चला तर मग ऐकूयात एक सुंदर गीत.
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
2: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है. पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है. और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है. आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति. और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है. टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है. और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

तो मैं हूं श्रवण सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। और आज हम लोग एक ऐसे करियर के बारे में बातें करेंगे जो सम्मानजनक भी है और सेवा प्रदान करियर है। जी हाँ साथियों, मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही सुंदर सम्मानजनक सेवा प्रदान करियर है, दंत चिकित्सा, डेंटिस्ट। जी हाँ साथियों, एक सम्मान और सेवा प्रदान करियर है डेंटिस्ट बनना। जी हाँ साथियों, आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है दांतों के परेशानी झेल रहे हैं, दांतों के अंदर कीड़े लगना, बहुत सारे ऐसी समस्याएं दांतों के साथ हुई है, क्योंकि दांतों को ठीक रखना ये भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है, जिसके कारण आज जगह जगह आप देखेंगे शहरों में गांव में डेंटिस्ट ही जो है क्लिनिक मिलते हैं। दंत चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं जो दांत, मसूड़े और जबड़े और मुख्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निदान और उपचार करता है। आज के समय में जहां पर एक हेल्दी टीथ यानी स्वास्थ्य दांत केवल सुंदर मुस्कान का प्रतीक नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़े हुए हैं, ऐसे में दंत चिकित्सक का करियर न केवल आर्थिक रूप से सशक्त है बल्कि सामाजिक सेवा और मानवीय संतोष से भी भरपूर है। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग एक अच्छे डेंटिस्ट करियर के बारे में बातें करने वाले हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे कैसे आप इसे क्रैक कर सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी कुछ ही पल में आपके लिए। आप सुना है रिमोट 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं दंत चिकित्सक बनने की योग्यता के बारे में। अब साथ

क्यों एक डेंटिस्ट बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन या जीव विज्ञान बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय के साथ पास होना आवश्यक है। इसके बाद NEET यानी नीट जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स में प्रवेश मिलता है। ये कोर्स लगभग 5 वर्षों का होता है जिसमें 4 वर्ष की पढ़ाई और 1 वर्ष की इंटर्नशिप शामिल होती है। BDS के बाद जो छात्र और अधिक विशेषज्ञ प्राप्त करना चाहते हैं वे MDS मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकते हैं। इसमें ऑर्थोडेंटिक्स ओरल सर्जरी पीरोडेंटिक्स और बहुत सारे अलग अलग विकल्प कॉस्मेटिक डेंटिस्ट जैसे कई शाखाएं उपलब्ध है। अब फिर आपकी रुचि के अनुसार आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा एक अच्छे करियर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है वो हम लोग अगर समझे तो एक दंत चिकित्सक का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। आज के समय में वे निजी क्लिनिक खोल सकते हैं, सरकारी या निजी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक बन सकते हैं या फिर शोध के क्षेत्र में भी योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा कॉस्मिक डेंटिस्ट्री, इम्प्लीमेंटोलॉजी और डिजिटल डेंटिस्ट्री जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं समाई हुई है। तो आपके लिए क्षेत्र कम नहीं है, क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन आप किसमें रुचि रखते हैं उसके ऊपर आप शोध कर सकते हैं। जिसमें ज्यादा आपको रुचि है उन्हीं चीजों को लेकर आप अच्छा जो है शोध कार्य कर सकते हैं। आप समय है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर जीवन कौशल करियर ऑप्शंस कार्यक्रम में डेंटिस्ट करियर के बारे में। तो चलिए आशा करूंगा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट है जो सिर्फ दांतों को इम्प्लांट करते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन वो है, यानी आपके दांत खराब हो जाते हैं या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं 70-80 तक पहुंच जाते हैं तो उनके दांत अगर खराब होते हैं तो सारे दांतों को वो इम्प्लांट भी करते हैं। और कुछ जगह पे आप जितनी चाहे उतनी दांत लगा सकते हैं और कुछ जगह पे ऐसा करते हैं कि अगर आपके दांत बहुत ज्यादा खराब है तो पूरे के पूरे एक जो है चेंज कर देते हैं और उसमें नया आपको दांत लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें आज हो रही हैं और कई बार हमारे जो है दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसको भी ठीक किया जाता है, तो उसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है और वो चीजें समय पर अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है शरीर का हर अंग कितना इम्पोर्टेंट है ये इससे हम समझ सकते हैं। दांतों की सड़न या फिर दांतों की कमी के कारण भी हमारे चेहरे की मुस्कान कम हो जाती है। तो हमारे चेहरे के हमें अगर अपने चेहरे की मुस्कान बढ़ाना है तो दांतों की सफेदी बरकरार रखना, तो इसलिए आज डेंटिस्ट जो है बहुत ज्यादा आपके आसपास में दिखाई दे क्योंकि इसकी जरूरत आज के समय में बढ़ गई है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और 4 से 5 साल अगर आप मेहनत करते हैं पढ़ाई का तो आप लाइफ टाइम के लिए एक अच्छे करियर कौशल को अपना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जहां पर हम डेंटिस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, दंत चिकित्सा। जी हाँ साथियों, एक सफल दंत चिकित्सक बनने के लिए केवल डिग्री की नहीं बल्कि कुछ विशेष कौशल की भी जरूरत होती है। अब देखिए, जैसे कि मरीजों से अच्छे संवाद की क्षमता। अगर कोई पेशेंट आपके पास आते हैं, उनके पास अगर आप अच्छे से बात करते हैं, उनको ट्रीट अच्छा करते हैं, तो वो आपके परमानेंट ग्राहक भी बन जाते हैं और साथ ही साथ एक सम्मानजनक जो है भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है धैर्य और संवेदनशील रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दंत चिकित्सा में काफी मशीनरी यूज होती है, तो यहाँ पर धैर्य के साथ आपको काम करना है, संवेदनशीलता आपके अंदर हो। तीसरा, हाथों की सफाई और एकाग्रता, क्योंकि मशीन जो है वो स्पीड वाली होती है और बहुत सारे चीजें वायर्स आपके हाथ में होते हैं, प्लस पेशेंट की जो है बहुत ज्यादा निगरानी के साथ देखा जाता है और उन चीजों को अच्छी तरह से हैंडल करना आना चाहिए। तो हाथों की सफाई और एकाग्रता बहुत जरूरी है, और इसके साथ में आती है नवीन तकनीकों को सीखने की इच्छा भी हो, और जिससे आपको मरीजों को आसानी से चेक कर सके और उनका इलाज आसानी से कर सके। आखिरी में स्वच्छता और अनुशासन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि दांतों की सफाई के साथ साथ आपके आसपास की चीजें भी उतनी ही स्वच्छ और सुंदर होना बहुत जरूरी है। साथियों, यहाँ पर करियर की संभावनाएं जो है बहुत है, और एक दंत चिकित्सक के रूप में करियर की संभावनाएं लगातार आज बढ़ती जा रही है। आज लोग मुख्य स्वास्थ्य को लेकर पहले से अधिक जागरूक है। शुरुआत में आय सामान्य हो सकती है, लेकिन अनुभव और विशेषज्ञता का प्रमाण मिलता है और अपना क्लिनिक स्थापित करने के बाद आय काफी अच्छी हो जाती है। कॉस्मेटिक और इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में तो आय की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं साथियों, आजकल जो है काफी अलग अलग क्षेत्रों में जो है डेंटिस्ट दूर जगहों पर भी रहते हैं, तब भी लोग उनके पास जाते हैं। इवन गांव में भी दांतों के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, जिससे ये जागरूकता का ही कमाल है कि आज ग्रामीण लोग भी इस दंत चिकित्सा के बारे में जान चुके हैं और वो भी अपने दांतों का इलाज करते हैं। साथियों, समाज में दांत चिकित्सा की भूमिका कैसी है? समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डेंटिस्ट। वे केवल दांतों का इलाज ही नहीं करते बल्कि लोगों को स्वच्छता, सही खानपान और नियमित जांच के प्रति जागरूक करते हैं। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में दंत शिविर लगाए जाते हैं, जहां

हजारों लोगों को वो मैसेज देते हैं और लोग वहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक सम्मान का प्रोफेशन है, ये एक अच्छी प्रोफेशन है और साथ ही साथ आप लोगों के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर हम कुछ सुंदर कहानियां आपको जरूर बताना चाहूंगा, एक सफल डेंटिस्ट की कहानी आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं। डेंटिस्ट के बारे में जानकारी हासिल कर ली हमने, अब एक सफल डेंटिस्ट की कहानी भी आपके नाम। यहां पर मैं डॉक्टर आरती शर्मा, जो डेंटिस्ट हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर आरती शर्मा की मुस्कान मिशन। जी हाँ साथियों, डॉक्टर आरती शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनके गाँव में लोग दांतों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते थे। बीडीएस पूरा करने के बाद उन्होंने बड़े शहर में क्लिनिक खोलने का अवसर छोड़कर अपने गांव में ही सेवा करने का निर्णय लिया। शुरुआत में मरीज बहुत कम आते थे, लेकिन डॉक्टर आरती ने हार नहीं मानी और उन्हें इस बात का एहसास भी था, जब लोगों को यह पता चलेगा कुछ लोग ठीक हो जाएंगे तो अपने आप ही दूसरे लोग भी आएंगे। उन्होंने लगातार कंटिन्यू जो है अपने क्लिनिक को चालू रखा और उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को दांत साफ करने की सही विधि बताई और रेगुलर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शिविर भी करती रही। महिलाओं के लिए निशुल्क जांच शिविर भी लगवाया

धीरे धीरे इसके कारण लोगों का भरोसा बढ़ गया डॉक्टर आरती शर्मा पर और आज उनका क्लिनिक न केवल सफल है बल्कि उनके गांव को स्वास्थ्य मुस्कान गांव के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर डॉक्टर आरती मानती हैं कि दंत चिकित्सा केवल पेशा नहीं बल्कि समाज को मुस्कुराने का या मुस्कान देने का माध्यम भी है। तो साथियों, आशा करूंगा डॉक्टर आरती शर्मा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक प्रेरक कहानी है जो हमें एक अच्छा डेंटिस्ट बनने की ओर आकर्षित करती है। तो आइए यहाँ पर जाते जाते एक और सुंदर कहानी आपके लिए डॉक्टर विवेक मेहता का। जी हाँ साथियों, डॉक्टर विवेक मेहता बचपन से ही तकनीक में रुचि रखते थे और बीडीएस और एमडीएस करने के बाद उन्होंने डिजिटल डेंटिस्ट्री पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने क्लिनिक में 3D स्कैनिंग, लेजर ट्रीटमेंट और दर्द राहत तकनीकों को अपनाया। शुरुआत में लोगों को नई तकनीक पर भरोसा नहीं था लेकिन बेहतर परिणामों ने सबका मन बदल दिया। आज डॉक्टर विवेक का क्लिनिक आधुनिक दंत चिकित्सा का उदाहरण बन चुका है और देश विदेश से मरीज उनके पास आते हैं। डॉक्टर विवेक का मानना है कि यदि ज्ञान के साथ नवाचार जुड़ जाए तो दंत चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण सफलता पाई जा सकती है। साथियों, डॉक्टर विवेक ने अपनी मेहनत और लगन से नवाचार की राह चुनी और आज सफलता के शिखर पर वो है। चुनौतियां और समाधान। साथियों, हर करियर में कुछ चुनौतियां जरूर होती हैं लेकिन उसके समाधान भी होते हैं। हर करियर की दांत चिकित्सा के पेशे में भी चुनौतियां हैं जैसे दूसरे पेशे में हैं। शुरुआत में निवेश, मरीजों का भरोसा जीतना और लगातार बदलती टेक्निक के साथ काम करना, लेकिन निरंतर सीखने, ईमानदारी से, सेवा भाव से इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया जा सकता है। साथियों, यहां पर दंत चिकित्सक का करियर उन लोगों के लिए आदर्श है जो विज्ञान, सेवा और सम्मान को एक साथ पाना चाहते हैं। ये पेशा न केवल आर्थिक स्थिति को बनाए रखता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर भी प्रदान करता है। सही मार्गदर्शन, मेहनत और समर्पण के साथ दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक उज्जवल और संतोषजनक भविष्य सुनिश्चित किया जाता है। एक स्वस्थ मुस्कान एक बेहतर जीवन की पहचान और इस मुस्कान के शिल्पकार होते हैं डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। तो साथियों, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपना करियर अच्छा बनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए करियर के बारे में बातें करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है. नमस्कार, मैं हूँ अमोल. आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

मोठ्या मोठ्या मिशा।

0: मोरा मूर्खा गोप्या गध्या, मोरा मूर्खा गोप्या गध्या देते सर्वा दम।
1: छम छम छम छम छम छम
0: आएगा छड़ी लगे,
1: छड़ी लगे छम छम विजय घम घम छम छम छम छम छम छम।
0: तोंडे फिरवा पुस्ते गिरवा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: see such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance.
1: What?
2: अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, आज देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्स्टापोजिशन बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप में हम प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: सो क्यूट।

0: आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबास्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
3: ओह यस।

0: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
1: क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो मनु।
0: हाँ पुराना स्तंभ जी, अपने फोन में ना मैंने बहुत सारे गाने सेव किए हैं, उन्हीं को ना अभी सुनते सुनते आ रही हूँ यहाँ पे।
1: हाँ, और रास्ते में भी अपने एयरफोन को कान में लगाए जोर जोर से संगीत सुन रही होंगी।
0: हाँ बहुत ही मजा आया।
1: शाबाश।
0: और ये शाबाशी किस लिए?
1: अब डांटने से तुम लोग सुनने वाले तो हो नहीं, तो सोचा शाबाशी ही दे दूं। सड़क पर गाने सुनते सुनते चलने और गाड़ी चलाने के लिए।
0: पर वो एक्चुअली रास्ते में गाने सुनने में मजा आता है ना?
1: और ये मजा कभी कभी सजा भी बन जाता है। रोड सतर्क होकर चलने के लिए है, अपने साथ साथ सड़क पर अन्य लोगों की भी जिंदगी खतरे में डालना सही नहीं। तुमने सुना है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और गाने तो बाद में भी कभी सुन लेना।
0: हाँ बात तो आपकी सही है। सॉरी पुराना स्तंभ जी, अब से ना कभी ऐसा नहीं करूंगी। पर अब संभाजी महाराज की कहानी आगे भी तो सुनाइए।

0: हाँ, तुम्हें बताया था ना कैसे संभाजी ने मराठा साम्राज्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए युद्ध किए। औरंगजेब की बड़ी सेना भी उन्हें हरा नहीं पाई थी, वे कुशल योद्धा थे, ये तो तुम जान ही गई। चलो अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। यसूबाई के वरिष्ठ भ्राता अर्थात संभाजी का बहनोई घाणोजी शिर्के हिंदवी स्वराज्य से बेईमान हो गया। जुल्फिकार खान रायगढ़ पर आक्रमण करने आ रहा है। ये समाचार मिलते ही संभाजी सातारा वाई महाड़ मार्ग से होते हुए रायगढ़ लौटने वाले थे, परंतु मुकर्रब खान कोल्हापुर तक आ पहुंचा।
1: अच्छा,
0: इसलिए संभाजी ने संगमेश्वर मार्ग के चिपलुन खेड़ मार्ग से रायगढ़ जाने का निश्चय किया। संभाजी के स्वयं संगमेश्वर आने की वार्ता आसपास के क्षेत्र में हवा के समान फैल गई। शिर्के के दंगों के कारण उद्ध्वस्त लोग अपने परिवार लेकर संभाजी राजे के पास आने लगे।
1: अच्छा,
0: जनता को परिवार समझकर उनका समाधान करने में उनका समय व्यतीत हो गया एवं संगमेश्वर में 4-5 दिन तक निवास करना पड़ा। उधर राजा को पता चला कि कोल्हापुर से मुकर्रब खान निकलकर आ रहा है।
1: अच्छा,
0: कोल्हापुर से संगमेश्वर की दूरी 90 मील थी और वह भी सह्याद्री की घाटी से व्याप्त कठिन मार्ग था।
1: अच्छा,
0: इसलिए न्यूनतम 8-10 दिन के अंतर वाले संगमेश्वर को

0: की दूरी लगभग 250 मील की है, परंतु मुकर्रब खान ने मराठों के भय से केवल 13 दिनों में ये दूरी पार की एवं 15 फरवरी 1679 को संभाजी तथा कवि कलश को लेकर उसने बहादुरगढ़ में प्रवेश किया।
1: अच्छा,
0: पकड़े गए संभाजी कैसे दिखाई देते हैं ये देखने के लिए मुगल सेना उत्सुक हो गई थी। औरंगजेब की छावनी एक जैसे बड़ा विशाल नगर ही था। छावनी का घेरा 30 मील का था, जिसमें 60 सहस्त्र घोड़े, 4 लाख पैदल, 50 सहस्त्र ऊंट, 3 सहस्त्र हाथी, 250 बाजार पेट और जानवर कुल मिलाकर 7 लाख, अर्थात बहुत बड़ी सेना थी।
1: इतनी बड़ी सेना?
0: इसके पश्चात भी आयु के 24वें से 32वें वर्ष तक संभाजी ने मुगलों की पार्श्विक शक्ति से लड़ाई की और यह योद्धा एक बार भी पराजित न हुआ।
1: वाह, एक बार भी पराजित नहीं हुए थे?
0: संभाजी वास्तव में पकड़े गए ये देख औरंगजेब बहुत आनंदित हुआ। कहते हैं कि जब संभाजी और कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो निडर कवि कलश ने ये पंक्तियां कही। यावन रावण की सभा शंभु बंध्य बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेल रन रंग, जोर विछवि लछत ही खद्योथोत बदरंग, त्योतुव तेज निहारिते तखत त्यज्यो अवरंग। अर्थात जिस प्रकार रावण की सभा में हनुमान जी को लाया गया था, उसी तरह संभाजी को औरंगजेब के समक्ष उपस्थित किया गया। जैसे हनुमान जी की देह पर सिंदूर शोभित होता है, वैसे ही भीषण युद्ध में संभाजी राजे की देह रक्त से लहूलुहान थी। औरंगजेब इस हिमाकत से रुष्ट हो गया। औरंगजेब ने संभाजी को जीवित रहने देने के लिए कुछ शर्तें रखी।
1: और वो क्या शर्तें थी?
0: सारे किले जो मराठा साम्राज्य के पास हैं, उन्हें मुगल सल्तनत को दे देना, गुप्त खजानों के बारे में बताना और साथ साथ संभाजी इस्लाम कबूल कर औरंगजेब के लिए काम करे।
1: ओह नो!
0: परंतु छत्रपति संभाजी कहां मानने वाले थे, वो बेड़ियों में बंधे भी अड़िग रहे। इससे क्रोधित औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी और वीर कवि कलश को घोर प्रताड़ित कर मृत्यु को सौंप देने का कटु निर्णय सुना दिया। इसके बाद संभाजी और कवि कलश को बहुत यातनाएं दी गई। इतिहास खुद भी अपने पन्नों पर लज्जित होता है। ये दर्दनाक दृश्य काली घोर अंधियारी रात से भी बदतर और काला था। संभाजी और कवि कलश को इतनी यातनाएं दी गई कि किसी की भी रूह कांप उठे।
1: ओह माय गॉड!
0: परंतु ये दो वीर कभी नहीं झुके। संभाजी और कवि कलश की आंखों में तपती सलाखें घुमाकर उनकी आंखें फोड़ दी गई। तत्पश्चात दोनों की जिव्याएं भी काट दी गई। उस दिन से दोनों ने अन्न जल का त्याग किया। 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष के दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े कर उनके जीवन को समाप्त कर दिया। परंतु आज भी उनका पराक्रम, धर्म निष्ठा, मराठा साम्राज्य के कुशल संचालन की स्मृतियों और भारत में वीरता की शौर्य गाथा के रूप में हर क्षण जीवित है। तो ऐसे थे हमारे संभाजी महाराज और ये थी उनकी वीर गाथा।
1: संभाजी महाराज ने अंत तक हार नहीं मानी, है ना पुराना स्तंभ जी? सच में मैं भी अपने देश की मिट्टी को मान गई। ऐसे महान आत्माओं को जन्म दिया है इस मिट्टी ने।
0: हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, पर हमने भी तो यही जन्म लिया है ना।

0: हाँ हाँ मुझे पता है अब आप क्या कहने वाले हैं।
1: अच्छा क्या कहूँगा?
0: यही कि हमारा फर्ज है अपने शहर अपने देश की रक्षा करना।
1: हाँ बिल्कुल, पर ये तुम करोगी कैसे?
0: रोड पर गाने न सुन के और गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात न करके देशवासियों की तो रक्षा कर ही सकती हूँ।
1: बिल्कुल सही।
0: थैंक यू पुराना स्तंभ जी, आज की शौर्य और बलिदान से भरपूर कहानी सुनाने के लिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।

पुराने स्तंभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक्सपर्ट से चलिए अब सुनते हैं संभाजी महाराज के बारे में कुछ अन्य दिलचस्प बातें।

संभाजी महाराज से भी कि दृढ़ता कैसे अपने अंदर कायम रखनी है। अभी वक्त तो चला है मेरे जाने का दोस्तों, मैं फिर से आपसे जरूर मिलूंगी। तब तक सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी।
0: आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के,
1: लो आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के।

0: साल मुबारक पापा जी,
1: साल मुबारक काका जी,
0: बोलो आज पियो हंस के, दो झूठ सोम रख के, ये साल भर इसका नशा रहेगा।
1: और जो आज हंसे हंसे जो आज

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी,
0: आज पियो हंस के दो घूंट सोम रख के, साल भर इसका नशा रहेगा,
1: जो आज मिले मिले जो आज मिले।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी मोनाली स्वागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया पाठ।
1: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर को हम देखें तो रिश्तों को नए अंदाज में देखने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। जब हमने समझा कि हम मैं कौन हूं, मेरी अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा का साथ मिला, तो रिश्तों को भी एक नई जान, एक नया अंदाज, एक नई खुशबू मिली। घर तक जब सीमित थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पिछली कड़ी से हमने बात शुरू की है कि घर के बाहर कदम रखा जाए और जब हम अपने कर्म क्षेत्र या ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे विश्वास की एक डोरी उनमें भी डाल सकते हैं। थोड़ा और

0: बढ़ते हैं और आज एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ है रमा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। पिछली बार अगर हम देखें तो हम ऑफिस पहुंच गए थे और ऑफिस पहुंच के हमने ये जाना था कि जब हम ऑफिस में एंटर कर रहे हैं या जब ऑफिस जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव है कि जाना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिशन की भावना, एक बोझ लेकर हम जाते हैं और फिर वो पूरा दिन हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात आपने की थी। एक बार आगे बढ़े और उस पूरे सिलसिले को और जाने, थोड़ा सा रिवाइव करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों घर और ऑफिस के माहौल में या ऑफिस जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है।
1: कहा जाता कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यू नो, एंड नॉर्मली वी लीव द हार्ट एट होम when we go to work, and nowadays in the offices it is said bring your heart to work. Kyunki ek samay tha jab kaha jata hai ki bring your hands to work sirf, you know, ki yahan par hai intelligence, hum sare ideas denge, top management sare ideas dege, jisko hum pyramid structure kehte the ki jo top ke log hain ideas sirf unhi ke honge aur jo lower level par aayenge unko sirf us idea ko implement karna hai. आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको जो कहा जाए वैसे का वैसे उसको करना है. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वे बैक, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क. फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता गया तो इट सेज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क बट ब्रिंग योर हेड टू वर्क ऑल्सो, अपना दिमाग भी साथ में लेकर आइए, आपका आइडिया भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है. और तब हम अब जो समय पर चल रहे हैं कि हरेक के आइडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो आइडिया यू नो लोअर लेवल से आया या टॉप मैनेजमेंट से आया, एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, सो ब्रिंग योर हेड टू वर्क. बट देन वॉट हैपन, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग आर हैंड्स एंड हेड टू वर्क. अर्लियर वी वर ब्रिंगिंग ओनली हैंड टू वर्क. इट वॉज वेरी सिंपल, एक व्यक्ति का दिमाग ऊपर, बाकी सब
0: कई सारे हाथ काम करने वाले,
1: तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें. एक ने बताया, सब ने उसको सिर्फ फॉलो
0: करते, उस वक्त की जरूरत भी शायद वही थी.
1: अब जब सो मेनी हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, यू नो, क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पे आ गए कि सब लोग एक ही लेवल पर हैं एज फार एज गिविंग द आइडिया इज कंसर्न, तो जहां इतने सारे हेड्स केम टू वर्क, तो दैट मीन्स हेड अर्थात ईगो, इतने सारे ईगोज केम टू वर्क ऑल्सो, माई आइडिया इज बेटर देन योर आइडिया, या आपका आइडिया क्यों लिया गया, मेरा आइडिया क्यों नहीं लिया गया, मेरा आइडिया ज्यादा बेटर है. तो जहां सिर्फ हाथ आ रहे थे ना, ईगो प्रॉब्लम कम थी क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं था. लेकिन वेयर ऑल द हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, तो सारी जो आई क्यूज थी, ईगोज थी, वो सारी क्लैश होने लग गई. और जहां इतनी सारी ईगोज क्लैश होने लग गई, तब प्रॉब्लम्स आने लग गई. और फिर हम काम तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. एंड सो नाउ द करंट ट्रेंड इज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, ब्रिंग योर हेड्स टू वर्क, बट ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क ऑल्सो. हेड्स, हैंड्स एंड हार्ट टू वर्क. क्योंकि हार्ट टू वर्क से क्या होगा, यू आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग योर आइडियाज, आपकी ईगो सिर्फ नहीं लेकिन बिलोंगिंगनेस. हार्ट जहां है अर्थात क्या, कि बिलोंगिंगनेस है.
0: दिस इज योर ऑफिस.
1: हम एक पॉसिबल है ये कि हम अगर चाहें तो अपने ऑफिस को अपना घर बना सकते हैं.
0: लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये भी कहा जाता है कि ऑफिस के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए, ऑफिस को इतना सब कुछ नहीं बना देना चाहिए.
1: जहां तक अटैचमेंट की बात आती तो वो तो हम वैसे भी अब डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए. ऑफिस के साथ भी आज हम कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्द कितना है सारा दिन ऑफिस में. बिकॉज अटैचमेंट मे नॉट बी टू द ऑफिस, बट अटैचमेंट इज टू माई इमेज, अटैचमेंट इज टू माई आइडिया. आप मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करो आज, मुझे कितना दर्द होने वाला है. क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट अपने आइडिया से है. आपसे भले ना हो, इस ऑफिस से भले ना हो, इस पोजिशन से ना हो, अपने आइडिया से तो है. मेरी एक इमेज है इस ऑफिस के अंदर. आप अगर आकर कुछ और कह गए, लेट्स से मेरी इमेज है दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अगर आपने आज आकर कह दिया कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द होने वाला है क्योंकि आई एम अटैच्ड टू दैट इमेज. तो अटैचमेंट तो हमारी बहुत सारी चीजों से है, लेकिन अटैचमेंट और बिलोंगिंगनेस दो अलग अलग बातें हो गई. अगेन, अटैचमेंट वो जहां दर्द है और बिलोंगिंगनेस वो जहां प्यार है लेकिन दर्द
0: नहीं है. और अभी भी अटैचमेंट

0: जो हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे वो मुझसे ही रिलेटेड,
1: बिकॉज अटैचमेंट है क्या, फिजिकली तो अटैचमेंट ही है ना, यहाँ हम किसी चीज को अपना समझकर, आइडेंटिटी को अपना समझकर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि दिस इज माय आइडिया, या मेरा आइडिया सबसे अच्छा है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सबसे अच्छा है, इन्होंने उसके अंदर गलती निकाली कैसे। सारा दिन तो सबसे ज्यादा हर्ट इसी बात पर है कि मेरे काम को आपने क्रिटिसाइज किया कैसे, अटैचमेंट्स। और ये सारी अटैचमेंट्स किस लिए, क्योंकि ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, सो माई आइडिया, माई पोजिशन, माई स्टेटस, सो मेनी थिंग्स, वो सारी अटैचमेंट्स यहाँ। लेकिन बिलोंगिंगनेस वो एक अलग चीज है। बिलोंगिंगनेस हुई कि जैसे ये मेरा परिवार है वैसे ये भी मेरा परिवार है, है तो परिवार ही ना। और वास्तव में देखा जाए तो आज हम घर से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं, अब के समय पर जो हम चल रहे हैं, तो शायद हम घर तो रात्रि को सोने ही जाते हैं, यू नो, बाय द टाइम वी रीच होम इट इज 8, 8:30 व्हाटएवर टू ईच वन, एंड वापस सुबह 8, 8:30 बजे हम निकल जाते हैं। तो जो मेजर पोर्शन है वेकिंग अप टाइम, क्योंकि वो जितनी देर घर गए वो तो सोने का समय, वो सारा तो ऑफिस में है। तो शायद अ मोर इम्पोर्टेंट फैमिली इज हियर, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। तो वहाँ हाउ टू फील गुड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अपने जीवन को इंजॉय करना।
0: वहाँ तो मैं हमेशा ऑन टोज हूँ, वहाँ इफ वी लुक एट, एक्चुअली तभी तो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, इतना स्ट्रेस है। अगर हम देखें, बिल्कुल देखा जाए, तो वहाँ हम कभी भी बिलोंग फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी आपकी पीठ पे छुरा भोंक दे।
1: तो ये डर यहाँ है, ये डर हमें है, क्यों, क्योंकि हम इनसिक्योर है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो है। अगेन, हर सिचुएशन में जो ऑफिस में आने वाली है, हर व्यक्ति जो ऑफिस में हमें मिलने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव को चेंज करके उधर से हटाकर अपने ऊपर लेते चाहिए। ऑफिस और घर में क्या फर्क है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, घर में एक बच्चा या एक मेरा यंगर ब्रदर या छोटी बहन गलती कर देती है, हम सारे घर में बैठते हैं और हम कहते हैं घर की बात को घर में रखना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और वो बात सच में घर में रह जाती है। बड़ी से बड़ी गलती छुप जाएगी, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है, इसको घर में रहना चाहिए। ऑफिस में भी कोई छोटा नया रिक्रूट आया, छोटा बच्चा है मेरे कंपैरिजन में, मे बी आई एम 30 एंड ही इज जस्ट 20 और व्हाटएवर, वो एक गलती करता है, व्हाट विल आई डू,
0: सारी जगह फैलाया जाए।
1: नाउ दैट इज द डिफरेंस, क्यों, क्योंकि ये मेरा भाई था और ये नहीं है। तो देयर द एटीट्यूड विल बी, उसकी गलती को हाईलाइट कर दो, उसकी गलती को हरेक को सुना दो, सीनियर्स तक रिपोर्ट कर दो, ये सब किस लिए, बिकॉज ही इज नॉट माई फैमिली मेंबर, ही वॉज माई फैमिली मेंबर, डिफरेंस। यहाँ उल्टा मुझे चांस मिला है कि उसने गलती की, इट्स एक्चुअली एज इफ आई विल कीप वेटिंग कि वो जो मेरे कलीग्स हैं या जो भी जिनके साथ मुझे जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो गलती करें और मैं सबको बता दूं कि देखा, एंड प्लस आई गेट अ चांस टू कीप ऑन ऑल्सो पुलिंग हिम डाउन, ये गलती की, तो वो एक अंडरकरंट कैसा बिल्डअप हो जाएगा, और ये जो मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे कैसा फील होगा, और जिसके प्रति मैंने ये किया तो उससे मुझे कैसी वाइब्रेशन आएगी, तो हाउ कैन आई फील गुड इन द ऑफिस इफ आई टेक दैट सेम रिलेशनशिप देयर, अ यंगर ब्रदर और अ यंगर सिस्टर और इवन सेम एज व्हाटएवर, गलती की, help the person out and just keep it between the two people, kya hoga us relationship mein, this is cooperation, wo tha competition, ab ye jo agar humne kar liya ek baar ki kisi ne galti ki aur humne usko kisi ko nahi bataya, bilkul kisi ko nahi bataya, jahan tak zarurat nahi hai, report nahi ki uski aur usko sikha kar samjha kar sort out karke bilkul usko bhi halka kar diya, what you have a family member for the rest of your life, not till you are only in that office you have a friend for the rest of your life, but we don't want to build these relationships because we are in that belief system ke sabko piche girana hai aur khud aage bhagta jana hai, to agar office mein wo jo log hain unko bhi parivar ki tarah bhi nahi, parivar hi, this is my family, this is my office, this is my home, to wo aise hone lagega ki jab aap subah ghar se uthenge to aap ek ghar se uthenge
0: dusre parivar
1: mein, dusre ghar mein pahunch jayenge, and sunday ko aap us parivar ko miss karenge kyunki aap unse nahi milte hain, and monday morning look forward, to meeting them again. It is possible. And for that, I don't have to wait ki pura office kab ka ban jayega. No, kyunki wo hone nahi wala. It's again like waiting for the world to change. It's not going to happen. Just my way of looking at the people. And that person who can do this is a leader. Wo chahe junior most vyakti ho us office ka. That person is a leader in the office who can do that. It's possible. And then I would love to go to work.
0: Actually, I can feel the, you know, vibrations. Agar ek parivar se utke hum dusre parivar ki taraf ja rahe hain, to pura ka pura attitude, pura ka pura hamara dekhne ka nazariya badal chuka hoga jab hum apne office mein enter karenge.
1: Aur jab aap pahunchenge na sara din mein, to aapko aisa nahi lagega ki aap kaam kar rahe hain. You know, that feeling. Kyunki wo aapko yahi nahi lagega ki aap office mein hain. Koi bhi cheez agar aap enjoy karte hain, koi bhi group ke saath, let's say aap apne friends ke saath kuch kaam kar rahe hain, to halka kitna lagta hai. Kyunki aap
0: us ghar mein bhi jo kaam kar rahe hote hain, responsibility samajh ke, to bilkul bhi problem
1: bilkul nahi lagta. To thakavat nahi hoti hai, energy. Sara din office mein energy drain out kyun ho jati hai? Ye choti choti baatein jo hum karte hain, isko niche khinchna, isko niche girana, idhar se udhar tak gaye, vending coffee machine tak gaye, उसके वहां खड़े हुए कॉफी पी, जब तक वो इतना सा कॉफी का कप होता है, जब तक वो पिया, चार लोगों के बारे में डिस्कस करके आ गए. दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट देन व्हाट विल हैपन, माय एनर्जी गेट्स पुल्ड डाउन. हाउ कैन आई फील गुड, तो कैसा अच्छा लगेगा. तो मैंने अपने लिए ही, किसी और ने नहीं. लोग नॉर्मली कहते हैं जी क्या करें, हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा है ना. इट्स एन एनर्जी फील्ड विच आई क्रिएट ना, माई चॉइस कि मैं किस तरह की एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ. तो टुमोरो व्हेन आई गो बैक टू वर्क, लेट मी गो बट दिस थॉट, आई एम गोइंग टू माय फैमिली.
0: बट देन इफ आई गेट ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशन,
1: दैट्स ओके. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू गिव
0: एंड हाउ स्ट्रांग आई एम.
1: जब वो नेगेटिव अगर आ भी रही है अभी, तो मेरी फिर भी चॉइस है कि मुझे क्या देना है. सी नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ईच वन इज कैरिंग एन एनर्जी फील्ड. एक ऑरा तो है हर एक का. तो अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, दोनों का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है. तो बहुत जल्दी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो नेगेटिव ही एक दूसरे से कैच करते हैं. अब अगर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी थॉट को चेंज करके, और थोड़ा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस अगर करें, तो हमारा ऑरा धीरे धीरे, एनर्जी फील्ड चेंज होता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए. नाउ व्हेन आई कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन, इनका नेगेटिव ही है, दे हैव नॉट चेंज्ड, मे बी द होल ऑफिस हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन मेरा ऑरा पॉजिटिव है, एंड मेरे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है कि अब आपका ऑरा
0: मुझ तक नहीं है,
1: आई एम स्टेबल. आपको जो बोलना है आप बोलते जाइए. मेरे को एक विधि आ गई है जिससे मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकती हूँ. अब आप मुझे ओवरपावर नहीं कर सकते. तो आप यहाँ नेगेटिव हैं, लेकिन आई मेंटेन माय स्टेबिलिटी. ये सेकंड स्टेज थी. फर्स्ट स्टेज थी, मैं आपके कांटेक्ट में आई, आपकी नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर ओवरपावर किया. सेकंड स्टेज, आप जहां हैं वहां हैं, आई रिमेन स्टेबल. नाउ आई कीप वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ, लीकेज नहीं होने दो सारा दिन. थर्ड स्टेज क्या पहुंचेगी,
0: मेरी आपस पहुंचेगी. हेलो बाबा यू,
1: एब्सोल्युटली माय पॉजिटिविटी आपको ओवर पावर करेगी, और तब ये लोग कहेंगे कि इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है. दिस पर्सन इज नाउ अ लीडर, क्योंकि इनके साथ काम करके औरों को अच्छा लगता है. नाउ व्हाई विल दिस पर्सन नॉट मूव अप इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लैडर, क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, क्यों इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी. इनफैक्ट जब इनको प्रमोशन मिलेगी, तो ये लोगों को जेलसी नहीं होगी, इनको खुशी होगी.
0: लेकिन अगेन जो ये था, मैं भी उसी पे आ गई हूँ, उनको जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनली और आउटर, बोथ शुड बी सेम इन सिंक.
1: हाँ, वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ इनर,
0: यू नो. हर बार क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छे हो जाते हैं. ऑफिस में ये बहुत एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट ये चलता है कि हम ऊपर से तो वी आर लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ ऐसा चलता
1: है. हम एक ऑफिस के ग्रुप में, एक कंपनी में ग्रुप के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज वी हैव लिटिल लिटिल मशीन जिससे आप सबकी थॉट्स इस समय रीड हो जाए. तो एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर लाइक दैट एंड देन दे सेड, फिर हम सब एक रूम में नहीं बैठ सकेंगे, यू नो. एंड बाहर से देखें तो एवरीबडी इज परफेक्टली फाइन, बट जो हम एक दूसरे के प्रति सोच सकते हैं, उसकी तो लेवल
0: I think that becomes very important.
1: बट वो ही तो वायुमंडल है, ऑफिस कल्चर और क्या है. लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि सारे कब चेंज होंगे. इफ आई चेंज
0: एंड आई हैव टू चेंज एक्चुअली इंटरनली, बहुत
1: ओनली इंटरनली, क्योंकि अगर आपकी

0: बस पॉजिटिव है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट कि मुझे बोलना पॉजिटिव है कि कहीं मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं निकल जाए. वो कैसे निकलेगा? यू नो, उसका बीज नहीं है अंदर. अभी एफर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बीज नेगेटिव है यहाँ, तो एफर्ट करना पड़ता है कहीं गलती से बाहर ना निकल जाए. तो यहाँ सारा दिन अटेंशन रखना पड़ता है कि आई शुड टॉक प्रॉपरली, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, आई शुड वर्क प्रॉपरली. लेकिन जब रॉ प्रोडक्ट, यू नो, रॉ मटेरियल ठीक होगा तो आपको एंड प्रोडक्ट पर मेहनत के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा.
1: वंडरफुल. एक्चुअली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. यू नो, ये माइंड सेट दिमाग में आते ही कि मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक पूरा यू नो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी. अब हम उस परिवार में जा रहे हैं जहां मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में देखा है कि जब हम घर में थे तो उन रिश्तों में इतनी मुश्किलें थी. तो वो मुश्किलें आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मतलब वो मेरा परिवार है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं. चलो, हम पहले चीज ऑफिस में क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू लीव, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क हियर, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता. घर पे तो मैं नहीं कहती कभी भी कि मैं घर में नहीं रहना चाहती.
0: बिलोंगिंगनेस नहीं है ना. देखो, घर पे बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, यू नो, बच्चे कितनी बार झगड़े में गुस्से में, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन छोड़कर कौन जाता है? कोई नहीं जाता. अगले दिन वापस वही उतना ही प्यार, हस्बैंड वाइफ भी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा. वाइफ तो कितने प्यार से अपना सूटकेस भी निकाल देती है, सारा पैक कर देती है, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के बाद वापस. वाई इट्स ओके. सी, कॉन्फ्लिक्ट इन, यू नो, छोटी छोटी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स गोइंग टू ऑलवेज बी देयर. लेकिन जहां वो बॉन्डिंग है तो वो झगड़ा अगले दिन तक भूल जाता है, लेकिन यहां बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस में, तो वो छोटी सी बात भी वो इतनी यहाँ इम्पैक्ट कर देती है, वो हर्ट इतना डीप हो जाता है. और क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है तो छोड़ना बहुत इजी हो जाता है.
1: पहले चीज, पहला थॉट आता है लीव.
0: आई लीव, या क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ना. तो जहाँ बॉन्डिंग नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ना बहुत इजी है.
1: बहुत सुंदर. आई थिंक दिस रियली गिव अनदर विजन टू माई रिलेशनशिप इन द ऑफिस एंड माई रिलेशनशिप टू द ऑफिस, यू नो, माई बिलोंगिंग फीलिंग की आई बिलोंग टू दैट ऑफिस. अगर ये माइंड सेट लेकर चलते हैं, अब पहला तो हमने पहला पड़ाव पार किया है कि हमारा एटीट्यूड जब हम ऑफिस जा रहे हैं वो क्या होगा. अब हम उन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे हमने रिश्तों के घर में बात की थी, वैसे यहां पर भी जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम आते हैं तो डिफरेंट है थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मुझे लगता है कि हम सोल्यूशन उसी में ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट इज कि मेरे प्रोजेक्ट को, या मैंने जो जितना जहां तक पहुंचा था, मेरी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया गया. दैट्स द बिगेस्ट हर्ट.
0: अगेन, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ जर्नी. एक प्रोजेक्ट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. एक चीज की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है. और अप्रिसिएशन मुझे किससे चाहिए? मोटिवेशन. कई बार लोग बोलते हैं मोटिवेट ही नहीं कोई करता है, अप्रिशिएट नहीं करता है, तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? तो वर्तमान समय एक चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, वो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं रिश्तों में, कि जो चीज औरों के पास नहीं है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें. मे बी दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन इन देम राइट नाउ, तो वो हमें कैसे मोटिवेट करेंगे? तो मोटिवेशन या अप्रिसिएशन ये पॉजिटिविटी है. लेकिन अगर मेरा सीनियर खुद ही बहुत नेगेटिव है, खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कहाँ वो अप्रिशिएट करे? उस तो अपने ही प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ है. लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा काम अच्छा नहीं. लेकिन अगर मैंने उसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, अब ये रिलेशनशिप है, अ जूनियर एंड अ सीनियर लेट्स से, एंड घर में एक फादर एंड अ चाइल्ड. ओके, अगर एक बच्चा घर में समझ सकता है कि मैं भी, मेरे पापा किसी बात से परेशान है, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, और उसके मन में कंपैशन है, गुस्सा नहीं आएगा कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों वो परेशान है, कोई बात नहीं, मैं कल डिस्कस कर लूंगा. व्हाई कैन अ जूनियर नॉट थिंक द सेम थिंग अबाउट हिज सीनियर? कि मे बी ही इज अपसेट अबाउट समथिंग, वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में है. क्या बात है जो उन्होंने रिकग्नाइज ही नहीं किया मैंने ये किया? क्या होगा उससे? इमीडिएटली आपके यहां से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी. अभी क्या था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, जान के खींचने किया ये, हाँ मुझे आगे नहीं, क्या गया,
1: खुद डर गए हैं. सबसे इनसिक्योर, हाँ खुद इनसिक्योर है क्योंकि मैं ज्यादा हूँ. तो हो सकता है आप ज्यादा,
0: दो एस्पेक्ट हो सकते हैं. हो सकता है कि सच में ये रीजन हो, इफ यू फील लाइक दैट. लेकिन ऑफकोर्स ये जजमेंट हमें एक या दो बार में कभी भी किसी के लिए पास नहीं करने चाहिए. मेजोरिटी टाइम्स आज वर्तमान समय लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ही हैं. कई बार तो वो अपनी घर की किसी प्रॉब्लम से

0: मतलब चाहे वो बैठे हुए हैं ऑफिस में, लेकिन उनकी वो घर की प्रॉब्लम, कई बार उनकी तबीयत, कुछ भी, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर कि वो सब चीजें उनके माइंड पर है और उस समय उनका मूड ही नहीं होता अप्रिशिएट, क्योंकि आपको कोई चीज उस समय बहुत ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है। तो पहले तो आप वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, फिर अगर आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, आपको कैसा लगा, डू यू थिंक इट वॉज ओके, आप मेरे बड़े हैं, यू कैन गिव मी ऑल वॉट यू फील कि इसमें क्या क्या रॉन्ग था, वेन विल आई डू दिस इफ आई वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, इफ आई वॉन्ट टू, नॉट आई हैव टू। लेकिन क्योंकि हम वो सब नहीं करना चाहते, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो करेंगे ही नहीं अप्रिशिएट। तो उससे क्या होगा, हमारा डायलॉग नहीं होता, हम और ही विथड्रॉ हो जाते हैं। अब अगर कई बार ऐसा हो गया है, मेनी मेनी मेनी मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि देयर इज सम स्ट्रैटेजी या इनसिक्योरिटी, अब क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग योर वर्क, वॉट इज द चॉइस, क्योंकि आपकी विशेषता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरे का इनसिक्योर होना हमारे प्रति, ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी अपनी कमजोरी है, और अगर सामने वाला व्यक्ति कमजोर है तो फिर मुझे रहम करना पड़ेगा उस पर, आई विल हैव टू सिंपथाइज रादर देन गेटिंग एंग्री, क्योंकि उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है और वो इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या होना चाहिए,
1: लेकिन मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ, क्योंकि
0: अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो मेरी अपनी विशेषता वो खत्म हो जाएगी। आई हैव टू रियली रियली टेक केयर, सी दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट इज हैपनिंग कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर ओवर पावर हो रही है, ये तो सारा दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चाहते थे कि मेरा काम खराब हो जाए, If we feel के वो चाहते थे मेरा काम खराब हो जाए, and they succeeded, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होता गया, मैं डिप्रेस्ड होता गया, तो मेरा काम से माइंड हट गया और मेरा मन इन्हीं बातों में चल गया कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो वो जो क्रिएटिविटी मेरे काम में थी जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी थी, अब वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई एंड नाउ ही सिक्योर, अब वो सिक्योर हो गए कि हाँ इनकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई, तो आई लेट हिम विन ओवर, I let him overpower me, and then I say, उनकी वजह से मैं नीचे गया या उनकी वजह से मैं ऊपर नहीं गया, किसी की वजह से नहीं, मैंने होने दिया ऐसा, I gave in to that power, दूसरे ने कोशिश की, maybe intentionally, unintentionally, दूसरे ने कोशिश की मुझे क्रिएटिविटी से हटाने की या मेरी विशेषता को खत्म, मैंने वो होने दिया, अगर मैं चाहता प्रोटेक्शन वो करते रहेंगे अपना इनसिक्योरिटी में, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि वो मोटिवेट करने वाले नहीं है, तो अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा,
1: मैं खुद,
0: हर चीज इज गोइंग टू कम बैक टू माई सेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन, वेन विल आई बी एबल टू डू दैट, जब मेरे को ये समझ में आ जाए आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनना, ये किसी और को अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, एम आई हैप्पी विद इट,
1: लेकिन इससे मेरे जो ग्रोथ के जो रास्ते थे वो बंद हो गए,
0: ग्रोथ के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, किसी को वो अथॉरिटी नहीं देंगे आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की, तो जहां पावर है, एनर्जी है, वहां ग्रोथ है, जहां पावर ही खत्म हो जाती है तब ग्रोथ फिनिश हो जाती है, आप रुक जाते हैं या फिर पीछे जाना शुरू कर देते हैं, आप एज लॉन्ग एज अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, अपनी मोटिवेशन को मेंटेन, आप करते जाएंगे, इन द प्रोसेस आप नया सीखते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक व्यक्ति करे या नहीं करे, एंड फिर भी इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन विच विल नॉट हैपन, बट इफ आई लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन देन मे बी नॉट हियर, maybe in some other job, lekin my whole process of maintaining that, learning, working hard, going on, wo agli jagah par use ho jayega, lekin wo kabhi bhi waste nahi ja sakta, truth does not have to be justified, truth will reveal itself, to usko give up nahi kare, isliye shiv baba kehte hai ki jo sach ki nav hai,

0: मैं हमेशा कहते सच में चलने में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है, तो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं, लेकिन जब वो हिलती डुलती है तो थोड़ा सा डरना नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रखना कि ये डूबेगी नहीं। सत्यता को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता कि मुझे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा मैं कितना अच्छा, सत्यता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है। सो जस्ट लिटिल पेशेंस, गो ऑन ग्रोइंग इनसाइड एंड वर्किंग हार्ड।
1: वंडरफुल, आई थिंक इट गिव्स अ रियल न्यू डायमेंशन शिवानी। अभी तो वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो आज वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज नीडेड देयर। हम ये सोचते थे कि घर तक सही है, लेकिन काम में मेरा ये क्यों आए, लेकिन अगर काम भी अब घर या एक परिवार बन गया है तो वहां ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस तरह से किया जाना चाहिए, यहाँ किस तरह से ग्रुप एनर्जी जो है वो पूरे माहौल को बेहतर कर सकती है, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में। अब इजाजत लेते हैं, ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, अगर ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी हम अपने हिसाब से ये मान लें कि वो मेरा एक परिवार है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल इतनी नहीं लगेगी। जो सारे आपके सामने अड़चने आ रही हैं उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप हथियार नहीं डाल देंगे और ये नहीं मान लेंगे कि जहां एक प्रॉब्लम आई आई विल चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर योर डेस्टिनी इज। अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसको पूरा वक्त देने की कोशिश कीजिए और पूरा एनर्जी देने की कोशिश कीजिए एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09999935 0999934666 0987366555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। वक्त बदला है और आज जब हम एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो वहां मेडिटेशन कितनी जरूरी हो जाती है और कितना स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट वहां पर भी होना जरूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स ऑफिस में हम और आप फेस करते हैं, कैसे उनसे निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद
1: विद ब्रह्मा कुमारी इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत नमस्कार। जागरूकता किसके प्रति होनी है? जागरूक हमें अपने प्रति होना है कि हु एम आई द सोल, आई द बॉडी, आई द माइंड। इसके बारे में हम कई बातें कर चुके हैं और ये बात हमारे सामने आती है कि आई द सोल इज सुप्रीम। और उसके बाद जागरूकता अपने पूरे इस सफर में खुद को पहचानने की और किस तरह से जिंदगी जीते हुए एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी डिप्रेशन की। क्यों है इतना प्रेवलेंट आज डिप्रेशन? क्यों आज हर आम आदमी डिप्रेस्ड फील करता है? किसी न किसी मोड़ पर जरूर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हमने ये जाना था कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, एक ऐसी सच्चाई है, लेकिन उससे हम अपनी माइंड पावर से यानी कि अपने विचारों से भी बदल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल्स की मदद की कब जरूरत पड़ सकती है और किस तरह मदद ली जा सकती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, जो कि खास मुंबई से आए हैं। और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में ये भी बता दें कि 7 किताबें लिख चुके हैं कि किस तरह से जिंदगी को पॉजिटिव किया जा सकता है। आपका हार्दिक स्वागत। और हमारे साथ हर बार की तरह हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, अ वेरी वार्म वेलकम।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर गिरीश, हमने जहां छोड़ा था वहां एक बार फिर लौटते हैं और डिप्रेशन की हमने बात की थी कि इतना प्रेवलेंट है, इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बार फिर उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ये जानने को थोड़ा और डिटेल में कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन है क्या।
3: यह शब्द में ही वह क्या है समय डिप्रेस्ड, किसी को दबाना, नीचा करना, तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने आप को नीचा समझता है, जीवन में इंटरेस्ट खो बैठता है, इस प्रकार की जो स्टेज होती है तब उसको कहेंगे डिप्रेशन। बल्कि कई सिम्टम्स भी है। आज अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने हर बीमारी के वास्तव में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स उन्होंने तैयार की है। उसमें से कुछ 60-70% अगर सिम्टम्स फिट होते हैं तब उस व्यक्ति को कहेंगे कि सचमुच डिप्रेस्ड है।
1: जी बिल्कुल। और शिवानी, अगर हम बात याद करें तो सेल्फ एस्टीम की बात की थी, आज अभी डॉक्टर पटेल ही कह रहे हैं कि खुद को ही सप्रेस करने लग जाए, खुद को ही कहे कि मुझ में तो कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, या पूरा ये डिप्रेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ एस्टीम ऐसे में कितनी हेल्प करती है और कहां हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं?
2: क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं समझा, अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी विशेषताओं को नहीं जाना, तो एक खालीपन है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई ना कोई ऐसी थॉट इसको ट्रिगर कर देती है, या मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता, या जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, यू नो कंपैरिजन, सो ऑल दैट पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दिस कैन लीड टू सप्रेसिंग माय एक्चुअल क्वालिटीज एंड इन इट इंटरनल यू नो द ब्यूटी दैट इज देयर इन आई स्टार्ट सप्रेसिंग इट।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक पूरी तरह से हमें नजर आता है कि डिप्रेशन क्या है बेसिकली, खुद को सप्रेस करने का एक एस्पेक्ट। अगर हम देखें तो आपने बात की थी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वो लाइफ स्टेट की जो बात की जाती है कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं या वहां से नीचे कहाँ तक आते हैं, एक बार फिर से उनसे दोबारा दो चार हो लेते हैं कि कौन सी है वो स्टेजेस।
3: सबसे पहले तो जो हाईएस्ट स्टेज है वह है कि हमें जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, हर क्षण का आप पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। वो भले कह सकते हैं कि भी करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आएगी, परंतु वो एक आइडियल लक्ष्य हो। सेकंड जो स्टेज है कि सचमुच जीवन में हैप्पीनेस है, हाँ, और वो सदा के लिए, वो हैप्पीनेस कम ज्यादा नहीं हो रही है। कभी थर्ड स्टेज है कि भी कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज है, कि भी थोड़ा सा एक दो घंटा अच्छा लगता है, फिर से दो घंटा में निराश हो रहा हूं या तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बाद की स्टेज है कि वो जो अच्छा नहीं लगना या दुख का अनुभव करना, कुछ मुझे जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, इसी स्टेज वो लंबी चलती है कि दिन में देखो 8 घंटा भी इसी स्टेज चली, 3-4 घंटे आपको अच्छा लगा, और फिर है कि सचमुच व्यक्ति डिप्रेस्ड फील कर सदा के लिए अच्छा नहीं लगता। तो जहां पर हम कहेंगे क्लिनिकली आइडेंटिफाइबल यहां होता है अधिकतर, साइकेट्रिस्ट के पास भी आप तब ही जाते हो, तो जो आगे की स्टेजेस है उसके तो आज हमने जीवन का एक समझ लिया है कि हमारे जीवन का हिस्सा है।
2: लेकिन जो मेरे को लगता है जो केमिकल इम्बैलेंस की उस दिन बात हुई, ठीक है, तो वो इसमें से कौन सी स्टेज पर हो रहा होगा या शुरू से है?
3: नहीं, शुरू से नहीं, थर्ड स्टेज कहेंगे कि थर्ड स्टेज।

0: दिन तक अगर वो करते रहें तो डिप्रेशन का शिकार
1: वो तो पांच छह दिन भी कहेंगे भी। एक दिन जो संडे को आप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हैं, नो यू वॉन्ट टू जस्ट लेट गो थिंग्स। परंतु ऐसा अगर दो तीन भी रहे और आपको दिल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि भी वो डिप्रेशन की सचमुच शुरुआत है, हो गई है। और कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि भी खाने का दिल नहीं होता, नहीं अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाई है फिर भी आपको लगता है कि भी नहीं खाऊं तो अच्छा है, आज भूख ही नहीं है, तो वह भी एक डिप्रेशन की निशानी हो सकती है।
0: और सोना भी जुड़ा हुआ होता है नींद,
1: नींद है ना पिक्यूलियर है डिप्रेशन में, जो नींद की पिक्यूलियरिटी है कि एक तो सारी रात भी नींद नहीं आएगी, वो भी पॉसिबल है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है सारी रात व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको एक बार नींद आ जाएगी, चार घंटे पांच घंटे नींद आ गई, लेकिन फिर सवेरे तीन चार साढ़े चार बजे नींद उड़ गई, फिर लाख कोशिश करने से भी नींद आ नहीं रही है, तो वह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। और एक सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, कि उसका वजन है वह देखो हर मास कम होता जा रहा है, और साथ में और भी सिम्टम्स है। हाँ, कुछ फिजिकल डिजीज में भी लॉस ऑफ वेट हो, जैसे डायबिटीज वाले भी वेट को लूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट। बढ़िया, और सिम्टम्स के साथ उसको जोड़ना होगा तो सचमुच पता चलेगा। और एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जो कई बार फैमिली फिजिशियन भी मिस कर जाते हैं, वह एक्सेसिव स्लीप,
0: अच्छा ज्यादा
1: सोना भी कहते भी बच्चा सोता ही जा रहा है, 11 बजे उठता है सवेरे, बड़े भी है उनको लगता है सवेरे 9 बजे अभी भी थकावट है, अभी भी सो जाऊं, दैट एक्सेस ऑफ स्लीप ऑल्सो कैन बी अ सिम्टम ऑफ। और एक पावरफुल जो सिम्टम है वह है कि जीवन जीने की इच्छा खो देना, कभी एक शुरुआत में होता है कि मर जाऊं तो अच्छा है, कल खुद बोलेगा नहीं परंतु कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ जीवन अच्छा नहीं है। दूसरा एक है व्यक्ति खुद बोलेगा कि अभी भगवान ले ले तो अच्छी बात है। उसके आगे की स्टेज है कि व्यक्ति प्लान करने लगता है कि भी कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे गिर के मरूं, जहर पी के मरूं, क्या करूं तो मैं मर जाऊं। अगर प्लानिंग की शुरुआत हुई तो देन स्टिल यू आर इन अ डीपर डिप्रेशन, एंड दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड दे आर रियली एक्यूटली डिप्रेस्ड।
0: यहाँ ये एक बहुत क्लियर बात हमें ये सामने नजर आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं इन्हें पकड़ लेना चाहिए हमें खुद भी, और अगर हम खुद नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे अपने क्या समझ सकते हैं इस बात?
1: बिल्कुल है ना, वो अपनों फैमिली मेंबर्स को ये देखना चाहिए। कई बार फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं उसको ब्लेम करते हैं कि आलसी हो गया।
0: एक ईमेल भी हमारे पास आया है सुधीर शिवानी डॉक्टर साहब की, ये अल्पना जी ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि ये 16 इयर्स की इनकी बेटी है, 12th में पढ़ रही है और 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 10th में टॉपर थी, लेकिन 11th में आते आते सडनली शी सेज की शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर स्टडीज, और अब वो टोटली रिबेल भी हो गई है, लेकिन म्यूजिक में चली जाती है, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है, और इतना हम प्रेशर नहीं भी डाल रहे लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट होती जा रही है। और कई बार ये कह रही है कि मैंने उसे देखा है कि वो, मैंने बात करने की कोशिश भी की है कि किसी से प्यार तो नहीं हो गया या कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो कहीं मेरी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है, तो क्या ये कोई ऐसी बात पता चलती है?
1: काफी है वो इसी प्रकार के, और भी थोड़ा अच्छे से उसको केस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिम्टम्स है यहाँ।
0: एक सडनली जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट हो जाना,
1: हाँ अगर ये सडन हुआ,
0: हाँ।
1: और अगर यही बात एग्जाम के दौरान हुई है, समझो एग्जाम के 15 दिन एक मास पहले, तो फिर एग्जामिनेशन फोबिया भी कॉज
0: नहीं
1: फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, कि जब भी कोई एग्जामिनेशन फोबिया का सवाल ही नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन की संभावना है,
0: तो ऐसे
1: इसको और भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए।
0: कैसे कैसे वो हेल्प कर सकती हैं अपने बेटे की?
1: तो भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, कई माता पिता इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते, उल्टा ब्लेम करते कहीं बार कि भी बच्चा आलसी हो गया है, हाँ उसने जिसे और कहीं उसका मूड लग गया है, कई बार तो सोच भी ड्रग्स लेने लगे, सचमुच वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो जो आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आवश्यकता है कि भी प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करे एक बार, तब है ना एग्जैक्ट वो बात को समझ में आएगी, और एक्सपर्ट सचमुच बता सकते हैं, कई टेस्ट भी आती है इसकी।
0: स्कूल काउंसलर जैसे में कितना हेल्प कर सकते हैं? स्कूल काउंसलर से बातचीत अगर की जाए, बच्चा अगर बातचीत करने की हिम्मत रख पाए, तो कितना कहाँ तक उनकी मदद हो सकती है?
2: आई थिंक काउंसलर बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन उससे अच्छा भी अगर ये मदर,
0: इफ शी कैन टॉक,
2: मदर अगर बात करती है, इसीलिए वो एक रिलेशनशिप पहले से कैसे बना हुआ

0: अगर वो डॉटर उतनी कंफर्टेबल है कि वो जिस दौर से गुजर रहे हैं अगर वो शेयर कर पाए देन द मदर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
1: एक्चुअली परफेक्ट की बात करें उसमें रिबेल भी हो चुका होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मदर और डॉटर के बीच में भी कई बार वो कोल्डनेस आ चुकी होती है. मतलब देखा ये गया बिकॉज शी इज अ रिबेल द वे शी इज कमिंग आउट ऑफ, कि वो इग्नोर करती है चीजों को, तो मदर भी अप्रोच नहीं कर पा रही है. तो वो
2: प्रोफेशनल काउंसिलर कैन डेफिनेटली प्रोफेशनल इनफैक्ट ना एज एन अ काउंसिलर एनीबॉडी कैन बी अ काउंसिलर.
1: अंडरलाइंड हमने बात की थी, आपने एक बार कहा था कि अंडरलाइंड कुछ वो बातें होती हैं, तो अंडरलाइंड वजहें क्या हो सकती हैं
2: इस प्रकार की स्टेज की? हाँ हाँ, अभी ये जो यूथ में अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं तो यूथ में तो एक नो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैन बी अ कॉज, क्योंकि ये एक स्टेज है कि जिसमें बॉडी ग्रो हो रही है, वो बच्चे भी नहीं है शायद एडल्ट भी नहीं है, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो तब कई यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन में उनको सही आंसर नहीं मिले तो भी डिप्रेशन होने की एक बहुत बड़ी संभावना.
1: और आज के वक्त में जबकि इतनी अवेयरनेस है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है.
0: एंड आई थिंक यही वो फेज है जहां हम वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं. यूथ ये वाले एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं लेकिन वो इंटरनल जो चेंजेस हैं, फिर से कॉलेज स्कूल लाइफ तक फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, दूसरों की तरह बनने की कोशिश, किसी फिल्म स्टार की तरह यू नो, और फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज्यादा अटेंशन.
1: तो ये भी रॉन्ग मिथ हो सकती है क्या कि एडोलेसेंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे रिबेल होते ही हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है? क्या ये भी एक रॉन्ग मिथ है या
0: होता ही है? नहीं है, बट उनके लिए सिचुएशंस वैसी बनती जा रही हैं. यू नो, एक तो वो पेरेंट्स से थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं क्योंकि लगता है ये वो पीरियड है जहां हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, या कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप्स में इस तरह से फंस जाते हैं जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते. ये वो भी पीरियड है जब पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होने लग जाते हैं, इंटरफियरिंग ज्यादा लगने लगते हैं, करने तो नहीं लेकिन शायद वो लगने बहुत लगते हैं. दिस इज दैट पीरियड जहां आप अपनी फ्रीडम शायद बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे प्ले करते हैं और उस टाइम पर अगर आपने वो इंटरनल ब्यूटी पर नहीं ध्यान दिया तो देन दीज फैक्टर्स कैन यू नो जस्ट वे यू अवे एंड आपको वो दूसरी तरफ फिर ले जाता है.
2: मैं बहुत समझता हूँ कि आज पेरेंट्स में जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि भी सब कुछ दे देते हैं, पैसा दे दिया,
0: बहुत ज्यादा
2: गिव टाइम,
1: और एक्चुअली उनके पास कुछ बचता ही नहीं कि खुद अचीव करने के लिए. बच्चों के पास भी कुछ नहीं बचता कि वो अचीव करें. दे कांट इवन लुक अप टू कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा. उनके कहते ही तो मिल जाती है चीज.
2: हाँ, वो चीजें मिल जाती है.
0: लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो
2: बता रहा हूँ, मेरी एक सचमुच राय भी है कि भले आप कम कमाओ कोई बात नहीं है, कम लग्जरीज लो, आपका फ्लैट छोटा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम एक घंटा रोज दो.
0: और अपने लिए भी
2: अपने लिए तो देना है, अपने लिए देना है लेकिन बच्चों के लिए भी कम से कहीं से भी निकालना है.
1: एक्चुअली ये पूरा सफर जो हम तय कर रहे हैं सिर्फ एक बात सामने ये आती है कि अभी तक तो हम ये जानते आए थे कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे क्लियर लगती जा रही है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ. यू नो, आई हैव टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया गया है. सबसे कम काम हमने अपने ऊपर किया है और बाहर काम हमने सबसे ज्यादा,
0: क्योंकि जैसे इस केस में भी अगर वो मदर अपनी बेटी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो खुद एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए. यू नो, बच्चे को डिप्रेशन से निकालना, पेरेंट खुद स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए.
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अपने लिए भी, लेकिन हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, आत्मा के लिए नहीं निकालते. इनर डेवलपमेंट ठीक है ना, आंतरिक जो उन्नति की जरूरत है कि सदा काल के लिए चलेगी.
1: अच्छा, आज अभी जब हम बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आज के यूथ की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ अवेयरनेस की बात करी. वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा हैं आज की, वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या सच्चाई है और क्या बाहर से मैंने लिया है. तो ऐसे में जहां हम ये देख रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वहां भारतीय जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है या पूरी हमारी फिलॉसफी है उसे अपनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी कहीं इतना सब कुछ होने के बाद खोखलापन है. तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि वहां का सब कुछ है, जो नेगेटिविटी है हम ले रहे हैं, हमारी जो पुरानी पॉजिटिविटी है वहां जा रही है, तो इसका क्या आगे आस्पेक्ट नजर आ रहा है?
2: आपने कहा तो बात मुझे याद आई कि कहीं अखबार में पढ़ा था कि भूटान के किंग को किसी ने पूछा कि आपके वहां पर जो

0: ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम, दे आर लिमिटेड पीपल, मे बी 1%, 2%, और उसी से भले वो तो बेस्ट सेलर किताब भी बन जाती है अगर 1% भी पढ़ने लगे तो, परंतु ओवरऑल अगर हम अवेयरनेस देखें तो और लाने की जरूरत है. लोगों को ये सचमुच बताया जाए कि आप अपनी जो अंदर की खुशी है उसको प्रायोरिटी दीजिए.
1: तो हम डिप्रेशन पे हैं डॉक्टर साहब, की डिप्रेशन के उस एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे हम जब बच्चों पे आ गए थे. हर वर्ग में, हर उम्र में डिप्रेशन नजर आ रहा है. केमिकल चेंजेस तब हो रहे थे जब कभी खुशी कभी गम वाले स्टेज पर थे, कि थोड़ा थोड़ा वक्त हम खुश थे, थोड़ा थोड़ा हम सुखी थे. लेकिन वो स्टेज वो है जहां हम डॉक्टर के पास जाने की अभी जरूरत नहीं है. स्कूल के काउंसलर से बात चल जाएगी या अपने ही किसी परिवार वालों से बात चल जाएगी. आज उस सीवियरिटी की बात करते हैं जब डिप्रेशन इतना बढ़ जाए कि हमारे अपने हाथ में ना रहे, जब पूरा कंट्रोल खो दें हम. अब कितने सीवियर केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो वेस्ट में हो, कई बार भारत में भी देखने को आ रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होके वायलेंस पर उतर आ रहे हैं. सो ऐसे में पहले ही कैसे रोका जा सकता है?
0: ये भी बात बहुत ही अच्छी है कि क्या सीवियर चीज होती है वो हमें कई बार देखना चाहिए. धारावी सूरत में ही हुआ था कि वे थोड़ा सा डिप्रेस था, सब बच्चों को भी नींद की गोलियां दे दी, खुद सुसाइड कर दिया, सारा परिवार खत्म हो गया.
1: मतलब क्या हमने जिंदगी को इतना छोटा बना लिया है पूरी तरह से? बात
2: होपलेसनेस आ गई है ना. तो जैसे कहा, जीवन जीने का उत्साह नहीं रह गया और जीवन जीने की शक्ति जो चाहिए, पावर टू फेस द वर्ल्ड, वो भी नहीं है
0: इसमें. तो नहीं, हमारे दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है सचमुच कि भी इस चीज से क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं शुरू में. जैसे नहीं बर्ड आगे बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं, तो डिप्रेशन की जो स्टेज शुरुआत हुई उसको रोको. नहीं, अमेरिका में कुछ समय पहले मैं देखा था कि जो यूथ ने गन लेके आया और कहीं 25-30 को खत्म कर दिया,
1: देवर
0: डिप्रेस्ड. हम समझते नहीं, कई बार हमें ना उसको कहीं और कॉजेज ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीजों में कॉज है वो डिप्रेशन. कई बार ऐसा भी हुआ कि माँ ने बच्चों को मार दिया, वो डिप्रेशन की स्टेज थी एक्चुअली.
1: अगेन होपलेसनेस भी था ना, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं नजर आ रही थी. तो वो रोशनी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम आपसे जानते हैं इस वक्त.
2: उसी में अगर हम पहले से ही, ये तो एक बहुत सिवियर स्टेज पर पहुंच गए, तो आई थिंक इस समय तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है. वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उसके बिना, क्योंकि शायद इस टाइम सेल्फ काउंसलिंग पॉसिबल भी नहीं है, हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि हम उस दौर से गुजर रहे. लेकिन उससे पहले, जैसे समय की बात की, थोड़ा समय अगर हम अपने लिए निकालना शुरू करें, थोड़ा अपने प्रायोरिटीज को देखना शुरू करें. अब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि भले छोटा फ्लैट हो, बट हाउ मेनी पीपल विल अग्री कि भले छोटा फ्लैट हो लेकिन अपने लिए समय निकाले. एवरीबडी वॉन्ट्स द बिगेस्ट, बिगेस्ट घर, बिगेस्ट गाड़ी, बिगेस्ट एवरीथिंग, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी,
1: और ये भी कि दूसरों का भी हाल ले ले.
2: हाँ, तो वो कंपैरिजन, कंपटीशन, तो वो अगर जीवन की यात्रा के दौरान हम इतना जोर से भाग रहे हैं इस यात्रा में कि हमें रुक कर चेक करने के लिए भी टाइम नहीं है कि हम सही दिशा पर हैं कि नहीं, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू रन. आई थिंक स्टॉप एंड पॉज, दिस इज वॉट आई वॉन्ट. क्या मेरे जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि मुझे पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज चाहिए? तो वो हो जाएगा, लेकिन वो सब चीज भी खुशी के लिए चाहिए थी. तो क्या वो खुशी भी उतनी ही मात्रा में आ रही है? आई थिंक बीच में अगर एक बार भी रुक कर ये चेक किया जाए, और अगर हम पाते हैं कि नहीं ये थोड़ा कम हो रहा है, वील बी एबल टू चेंज इट, वील डेफिनेटली.
1: यू सेड स्टॉप एंड पॉज, लेकिन वो स्टॉप एंड पॉज भी हम तभी करेंगे जब अंदर से कहीं उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम. एक्चुअली हम अभी तक तो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं, हम में से हर कोई, जैसे आपने भी लाइफ की कई स्टेजेस बताई, उसमें हम अभी तक अपनी उस खुशी को, कि चार घंटे अगर मैं खुश हूं तो चार घंटे दुखी हो भी जाता हूं, तो मैं कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लेता हूं, तरीका ढूंढ लेता हूं,
2: क्योंकि तब हमने बहाना बाहर को दिया हुआ है ना, तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने दुख को. लेकिन जहां वो बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया कि बाहर मेरा दुख का कारण नहीं है, मेरे अपने अंदर है, तो अगर वो चार घंटे नहीं, चार मिनट के लिए भी आता है, आई विल हैव टू स्टॉप एंड चेंज. अगर वो बाहर तक था तो वो चार घंटे आ जाएगा, कल 8 घंटे आएगा. When it's inside, then I can change faster.
1: बिल्कुल. और अब डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि ये तो पूरे एस्पेक्ट हुए कि हमें किस तरह से अपने मेंटली अपने आप को, अगर हम समझ लें इस बात तक आ जाएं कि दुख भी आ रहा है, वो चार घंटे जो दुख आ रहा है वो बाहर से अगर आ रहा है, तो हमें इंटरनली अपने आप को रियलाइज करवाना है कि वॉट आई वॉन्ट, यू नो, एंड विल आई गिव द राइट टू समबडी एल्स टू ब्रिंग अनहैप्पीनेस टू मी. एक वो स्टेज डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, जब कोई सेल्फ काउंसलिंग, कोई किसी की बात, आवाज ही नहीं.

0: बनती है।
1: क्या करना पड़ता
0: है? तो दो चीजें, जो शिवानी बेन ने दवाइयों की बात की उतना ही इक्वली इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। भारत में शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास धर्म की आदि बातें भी, लेकिन विदेशों में सचमुच रिसर्च स्टडीज भी हुई। कई बार साइकेट्रिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई दवाइयां ही लो बस। तो दवाइयों से डेफिनेटली फायदा होता है, लेनी भी चाहिए, परंतु अब स्टडीज में उतनी ही इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। इसको कहा गया है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी।
1: साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या किया जाता है?
0: ऐसे बहुत प्रकार की साइकोथेरेपी है, जैसे फ्रॉइड से इसकी शुरुआत हुई वास्तव में। सेगमेंट फ्रॉइड ने सारी सिस्टम डेवलप की साइको एनालिसिस की। उसके बाद उनके ही शिष्य कहेंगे यंग थे कि जिन्होंने एनालिटिक साइकोलॉजी बनाई। ऐसे दूसरी एक है बिहेवियर थेरेपी, परंतु वर्तमान समय में कि जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, व्यक्ति अपने आप भी बहुत कुछ कर सकता है, वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके द्वारा अपनी बिहेवियर में परिवर्तन लाओ। और इस पर अमरीका में तो लाखों डॉलर खर्चे किए गए ये देखने के लिए कि वो कितनी इफेक्टिव है। और ये देखा गया है कि एमिप्रामाइन नाम की एक मेडिसिन है, कि जो बेसिक मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, एमिप्रामाइन जितना मदद करती है उतना ही ये बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प करती है। एंड दैट्स एन पावरफुल रिसर्च।
1: तो बिल्कुल, अब ये जो पूरी थेरेपीज हैं जो कि काउंसलिंग का भी एक हिस्सा हो सकती है और पूरे रिसर्च पे बेस्ड है, इसके ऊपर बातचीत हम डिटेल में अगली कड़ी में जरूर करेंगे कि डिप्रेशन को कौन कौन से सीवियर डिप्रेशन में ये मदद कर सकती है और किस तरह से बिना दवाई के भी। हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रगलेस थेरेपीज के बारे में बात करें, तो इन थेरेपीज को अपना के हम जो सीवियर डिप्रेशन के केसेस हैं उनको भी लाभ दिलवा सकते हैं। और उसके अलावा जो आम जिंदगी में जो है, किस तरह से इस तरह का जो पूरा दिनचर्या जीने का हम अपना एक एस्पेक्ट ले रहे हैं, उसे हम डिप्रेशन से ही दूर रह सकते हैं। तो फिलहाल आज आपके साथ बातचीत रही डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको भी बता दें कि आज हमने जिन छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत की है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको एक बार फिर नक्शल में ले लेते हैं कि कई स्टेजेस में हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब ये लगने लगे कि कभी खुशी है कभी गम है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारे आसपास आ चुका है, सीप इन कर रहा है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वो तरीके तलाशने लगते हैं कि किस तरह से हम सुसाइड करें या किस तरह से जीवन को खत्म कर सकते हैं, ये वो स्टेज है जहां हमें अब कोई भी इंतजार नहीं करना है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो डिप्रेशन से जुड़ी हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। कई ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अगली कड़ी में हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। अगर आपके पास

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है, क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति

0: किसके कंट्रोल में है, किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: बाबा पृथ्वी सिंह आजाद गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। गदर लहर को शुरू करने और उसके माध्यम से समूचे देश को आंदोलित करने के जुर्म में अंग्रेजी सरकार ने उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में कालापानी की सजा में तब्दील कर दिया गया। अंडमान जेल में कालापानी की सजा के दौरान उन्हें कई यंत्रणाएं दी गईं, मगर वे जरा भी विचलित नहीं हुए। बाद में जब उन्हें अंडमान से नागपुर जेल लाया जा रहा था तो वे पुलिस के चंगुल से भाग निकले और 16 सालों तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। इस दौरान उन्होंने भूमिगत रहकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने 1938 में स्वेच्छा से गांधी जी की पहल पर उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। बाद में एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही उन्हें छोड़ दिया गया। वे 20वीं सदी की शुरुआत में देशकाल के लिए समर्पित हुए थे और सदी के अंत तक देश सेवा की खातिर सक्रिय बने रहे। उनकी जीवन कथा में थकान और विश्राम नहीं, केवल चलते रहने की व्याकुल लालसा, अन्याय का विरोध करने के लिए मर मिटने की उमंग और अनुध्यात लक्ष्य पर दृष्टि बांधे रखने का दृढ़ संकल्प था।

0: आज इतने वर्षों बाद मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि आज देश के नौजवानों में अगर कोई भाव भरना है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि इंसान इंसानियत की राह पर चले जी, एक दूसरे का विश्वास पात्र बने, एक दूसरे के प्रेम पात्र बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। जहाँ तक धन की बात है वो 400 बीसी के मार्ग पर जाने के बगैर नहीं मिलता। आज देश के सामने नौजवानों को तपस्वी बन के आने की जरूरत है, वही देश को बचा सकते हैं।
1: तो बेटा तुमने सुना बाबा का संदेश, उनने नौजवानों से क्या उम्मीद बांध रखी थी।
2: दादा उन्होंने तो नौजवानों से बहुत उम्मीद बांध के रखी थी, पर बाबा के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: हाँ हाँ दादा बताइए ना।
1: तो सुनो, बाबा पंजाब के पटियाला जिले के लालडू गांव में पैदा हुए थे।
2: अच्छा, लालडू में।
1: उनकी जन्मतिथि 15 सितंबर 1892 को बताई गई। उनके पूर्वज जैसलमेर राजस्थान के विस्थापित राजपूत रहे।
2: अच्छा।
1: पर बाबा का बचपन बर्मा में बीता। उनके पिता रोजगार के लिए बर्मा चले गए थे तो वहीं बस गए।
2: तब तो बर्मा भारत का हिस्सा रहा होगा ना।
1: हाँ बेटा, कोई 1907 या 1908 का समय था।
2: अच्छा।
1: सारे भारत में तब देश की आजादी के आंदोलन चल रहे थे। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार कर लिए गए और लाला लाजपत राय सरदार अजीत सिंह को जिला बदर कर दिया गया। उन दिनों की बात है, पृथ्वी सिंह जब ठाकुरवाड़ी से मत्था टेक के लौटे तो पिता से बोले,
0: बापू जी मैंने यहाँ बर्मा में नहीं रहना, मुझे अपनी जन्मभूमि पंजाब जाना है।
4: अरे लाले, अचानक तेरे को अपनी जन्मभूमि की याद कहाँ से आ गई?
0: ओ जी वो क्या है कि वहाँ देश की आजादी ना ले इतना कुछ हो रहा है, मैंने भी कुछ करना है। बस मैंने कह दिया मुझे जी पंजाब जाना है।
4: अरे यहाँ जो इतना कारोबार है, काम है, उसे संभालने के देना है तो कहता जन्मभूमि पंजाब जाना है। अरे आखिर तेरे हुआ क्या है?
0: ओ बाबू जी मैंने अभी ठाकुरवाड़ी में रामायण सुनी। हाँ। वो लंका जीतने के बाद रामचंद्र जी से जब सोने की लंका पे राज करने की बात कही ना। हाँ। तो जानते हैं क्या कहा उसने?
4: क्या कहा?
0: कहा मेरी अयोध्या मुझे सोने से भी ज्यादा प्यारी है, मैं अपनी मातृभूमि जाऊंगा, उसे स्वर्ग बनाऊंगा। बाबू जी मुझे भी अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वास्ते पंजाब जाना है।
2: तो गजबी दादा, क्या पृथ्वी सिंह पंजाब लौटे?
1: हाँ पृथ्वी सिंह पंजाब लौटे तो, पर उनके समझ में नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या करें कैसे करें।
2: अच्छा।
1: वहाँ आर्य समाज का बोलबाला था। वे उपदेश के द्वारा, अपने गाने के द्वारा देश प्रेम का प्रचार करते रहे।
2: अच्छा।
1: बाबा उन सबसे प्रभावित थे, पर अपनी मंजिल का रास्ता नहीं मिल रहा था उन्हें। सो फिर लौट के बर्मा आ गए।
3: अच्छा दादा, उस समय बाबा की उम्र क्या थी?
1: ये कोई 15 साल की। बर्मा में तब तक हालात बदल गए थे, पिता को कारोबार में नुकसान हो गया था, पृथ्वी ने नौकरी करने की सोची।
0: बाबूजी।
4: हाँ बोलो।
0: वो किया कि जी अपने कई साथी पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। मेरे मजबूत अट्टे कट्टे बदन को देख के पुलिस अफसर भी मुझे भर्ती करना चाहते हैं जी। सोचता हूँ मैंने भी भर्ती हो जाने चाहिए।
4: अरे नहीं नहीं नहीं वाले, नहीं, पुलिस की नौकरी सही नहीं है।
0: क्यों बापू?
4: अरे वो मैंने पता है किस किस तरह से रिश्वत लेने के आदमी ने पते तो हो जाना है, तुम चाहे के भी सदाचारी नहीं रह सकते। नहीं नहीं लाले, नहीं, पुलिस में भर्ती होके तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जानी है।
0: बापू ठीक है जी, आपकी बात मैंने समझ आ गई है जी, मैं पुलिस में भर्ती नहीं होऊंगा।
1: बात आई गई हो गई, पर पृथ्वी के मन को चैन नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या और कैसे करें। लो बेटा तुम्हारी चाय आ गई। सुनो ये चाय आया रख के 3 समोसे वहां लगा दे।
3: हाँ दादा सुनाओ ना।
1: तो मैं कह रहा था कि पृथ्वी बहुत बेचैन थे।
2: अच्छा।
1: कुछ काम में मन नहीं लग रहा था, तभी पता चला

0: अमेरिका में बहुत हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: पृथ्वी को राह मिल गई, 100 रुपए जुगाड़े और अमेरिका के लिए चल पड़ा बिना बापू को बताए,
1: अकेले ही बिना किसी साथी के।
0: हाँ, मन में देश के लिए कुछ करने का जुनून जो था, बर्मा से रंगून, रंगून से पिनांग, पिनांग से सिंगापुर और फिर हांगकांग।
2: इतनी लंबी यात्रा, तो दादा फिर वो हांगकांग कब पहुँचे?
0: सन 1911 में।
2: अच्छा,
0: वहाँ उनकी मुलाकात लाहौर के कुछ नौजवानों से हुई।
3: अजी तुसी हिंदुस्तानी हो जी?
4: आहो जी।
3: अजी हम सब लाहौर से हैं।
4: असी पटियाला से। ओए होए, इधर कैसे?
3: अजी अमेरिका जा रहे हैं। अजी तुमने देखा वो माचू डायनेस्टी के खिलाफ चीन की धरती पे जो इनकलाब हुआ जी?
4: हाँ देखा। ओ जी किस तरह एक रात में डॉक्टर सन्यास सेन के कहने पे चीन के सभी मर्दों ने गुलामी की निशानी अपने लंबे लंबे वालों की चोटियां काट भेगी जी। केवल एक रात भर में सारे चीन में चौराहों पर लंबे लंबे वालों के ढेर लग गए।
3: जी ऐसे ही जज्बात हम हिंदुस्तान के लोगों के दिल में भरना चाह रहे हैं जी।
4: तो असी भी चाह रहे हैं, पर चाहने भरने से क्या होता है जी?
3: ओ जी इसी वास्ते हम अमेरिका जा रहे हैं। उथे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई जी, उनके कार्यक्रम ऑरेगन स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट और कनाडा सभी जगह चल रहे जी।
4: अच्छा?
3: हाँ जी, हम भी उसमें शामिल होना चाह रहे जी।
4: ओ जी फिर तो असी भी तुम्हारे साथ अमेरिका चल रहे हैं। ओए अमेरिका, मैं आ रहा हूँ। ओए सुना।
0: और इस तरह पृथ्वी सिंह, बलवंत सिंह और प्यारा लाल आदि की सहायता से अमरीका जा पहुंचा और लाला हरदयाल की गदर पार्टी में काम करने लगा। अमरीका के रास्ते में मनीला, फिलीपींस, आइलैंड में उन्होंने नौजवानों द्वारा अमरीका के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को भी देखा।
2: अच्छा,
0: उनके मन में देश प्रेम की आग और बढ़ गई।
2: तो अमरीका में गदर पार्टी ने उन्हें कौन सा काम सौंपा था?
0: गदर पार्टी ने एक प्रेस चला के गदर अखबार निकालने की योजना बनाई थी।
2: अखबार का नाम ही गदर था।
0: इस अखबार की सारी बागडोर पृथ्वी सिंह को दे दी गई। उन्होंने बड़ी कुशलता से अखबार चलाया, साथ ही कैलिफोर्निया में योगांतर आश्रम की स्थापना की।
2: अच्छा,
0: उनकी एक ही योजना थी कि हिंदुस्तानी दुनिया में जहां कहीं भी हो देश के लिए संगठित हो और भारत में इनकलाब करे।
1: अरे वाह। अच्छा दादा, तो अमेरिका में बाबा कब तक काम करते रहे?
0: पहला विश्व युद्ध शुरू होने तक। विश्व युद्ध शुरू होने पर गदर पार्टी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है, गदर पार्टी के लोग हिंदुस्तान जाके अंग्रेजी राज को खत्म करें, हिंदुस्तानी फौज तैयार करें। आखिर 24 अगस्त 1914 को गदर पार्टी के चुने गए 150 लोग के संग पृथ्वी सिंह प्रिंस कोरिया जहाज से हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े।
2: फिर प्रिंस कोरिया जहाज से बाबा हिंदुस्तान कब पहुंच गए होंगे?
0: प्रिंस कोरिया जहाज तो हांगकांग में ही खत्म हो गया।
2: अच्छा,
0: वहां से वो लोग टोसामारू जहाज से हिंदुस्तान आए।
2: अच्छा,
0: नवंबर 1914 की बात है, लुधियाना के पास लोडोवांग स्टेशन पर क्रांतिकारियों की बैठक में जब पृथ्वी सिंह पहुंचे तो झांसी के पंडित परमानंद ने, जो अमरीका से उनके साथ ही चल रहे थे, उनसे पूछा,
5: पृथ्वी सिंह जी आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? टोसा मारू जहाज से उतरने वाले सभी साथी तो कलकत्ता ही पकड़ लिए गए थे।
4: ओ जी वैसे ही पहुँचे जैसे आप। जी हुआ यूँ कि जगत राम जी तो जहाज से ही भेष बदल कर निकले थे और आपने पुरभैये की बाल्टी उठाकर पुरभैया होने का नाटक किया, सो आप दोनों तो बच के निकल गए जी। हम पूरे सूट बूट में थे, सोचा किसी को शक नहीं होगा, पर दूसरे लोगों के साथ पकड़ा गए जी।
5: अब फिर क्या हुआ?
4: अब फिर सबका नाम लिख लिख हमें गोरखा फौजियों की निगरानी में पंजाब जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी विंडसर स्टेशन पर जब रुकी तो एक नया फौजी अफसर एक सूची लेकर आया और एक एक करके जी उन लोगों का नाम पुकार कर नीचे उतारने लगा जो क्रांतिकारी नहीं थे, उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत थी। पहला ही नाम उसने नत्था सिंह का पुकारा, वो सो रहा था, मैं तेजी से नीचे उतरा और भीड़ में खो गया जी और अम्बाला अपने साथियों के पास जा पहुंचा।
0: और शांति पृथ्वी सिंह के भाग में कहां लिखी थी।
2: क्यों?
0: वो 8 दिसंबर का दिन था। पृथ्वी अम्बाला के एक बोर्डिंग हाउस में बैठे थे। तभी उनकी राजपूत जाति के दूर के रिश्तेदार सरदार निहाल सिंह आए।
2: अच्छा,
6: अरे प्रदीप पुत्र, की हाल है? बड़े दिनों बाद दिखे।
7: सत श्रीकाल जी, बैठे, खुशी हुई मिलके।
6: सुना है तुसी अमेरिका होके आए हो?
7: हाँ, ओरेगन होके आया हूँ, एग्रीकल्चर सीखने गया सी।
6: अरे वाह पुत्र वाह, यहाँ मैं भी एक एग्रीकल्चर फार्म चला रहा हूँ, शाम को तुम्हें ले चलूंगा, देख के अपनी राय देना। अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, थोड़ा काम है, शाम को आता हूँ। तुम कहीं जाना नहीं, शाम को चलेंगे? अच्छा, अभी चलता हूँ।
7: गया मंजीते, ये निहाल सिंह अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों की वफादारी के कारण ही इसे सरदार बहादुर सिंह का खिताब मिला हुआ है। पता है ये पुलिस स्टेशन क्यों गया है? मेरे बारे में खबर देने वास्ते। देखना, शाम को पुलिस के साथ आवेगा।
8: फिर तूने क्या सोचा?
7: सोचना की है, यहाँ से रबू चक्कर होना पड़ेगा। सोचना ये है कि कहाँ जाया जाए।
8: अरे तू तो कह रहा था शाम को पुलिस आएगी, ले खुफिया पुलिस का आदमी अभी आ गया। लगता है तेरा निहाल सब कुछ पहले ही सेट करके आया था, अब संभाल से है, मैं तो खिसकता हूँ।
3: अरे सुनिए सुनिए, ये खालसा छात्रावास यही है क्या?
7: नहीं जी, ये खालसा छात्रावास नहीं है, ये तो राजपूत छात्रावास है जी।
3: सुनिए, मुझे खालसा छात्रावास में जाना है जी, नया आदमी हूँ, आपको तकलीफ तो होगी, जरा अगर साथ चल दें खालसा छात्रावास तक पहुँचाते तो कृपा होगी।
7: जी बैठिए बैठिए, बताइए खालसा छात्रावास में क्या है?
3: अरे नहीं नहीं, बैठने का समय नहीं है, मैं कहता हूँ साहब पृथ्वी सिंह यू आर अंडर अरेस्ट।
7: ओए ओए, तो तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो? निहाल सिंह ने खबर दी होगी।
3: तुम्हारा अनुमान सही है पृथ्वी सिंह, अब जल्दी से हाथ आगे बढ़ाओ।
7: कोई बात नहीं, अले पकड़ मेरा हाथ, इंकलाब जिंदाबाद।
0: अरे पृथ्वी सिंह ने हाथ आगे क्या बढ़ाया, लपक के पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया।
2: अच्छा,
0: और झटक के पिस्तौल छीन कर दूर फेंक दी। जासूस ने चाकू निकालकर पृथ्वी पे कई वार किए, खून के फव्वारे छूट पड़े।
2: अरे बापरे,
0: पर पृथ्वी ने उस पे काबू पाके चाकू भी छीन के दूर फेंक दिया और जासूस को जमीन पे गिरा के उसकी छाती पे सवार हो गया, उसकी धुनाई शुरू कर दी।
2: अच्छा,
0: पर चाकू के वार से काफी खून बह चुका था, मारते मारते पृथ्वी और जासूस दोनों बेहोश हो गए।
2: फिर क्या हुआ दादा?
0: दूसरे दिन जब पृथ्वी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल में पाया। पास के ही पलंग पर जासूस भी पड़ा था।
2: अच्छा,
0: और पूरा कमरा पुलिस की गिरफ्त में था।
1: दादा एक बात समझ में नहीं आई कि जब जासूस के हाथ से पिस्तौल पृथ्वी सिंह ने छीन ली थी तो फिर उसे दूर क्यों फेंक दी और जासूस को वहीं ढेर क्यों नहीं कर दिया?
0: यह बात तुमने अच्छी पूछी। बात यह है कि गदर पार्टी ने यह शपथ ली थी कि किसी भी हिंदुस्तानी को मारना नहीं।
2: अच्छा,
0: पृथ्वी को अस्पताल से और बाकी 80 दूसरे लोगों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार करके लाहौर में मुकदमा चलाया गया। आरोप लगा लाहौर में बगावत करने की साजिश।
2: ये साजिश उसने कब रची?
0: ये साजिश हुई थी लोडोवान स्टेशन पर एक मीटिंग में।
2: अच्छा,
0: पर उन्हें पता नहीं था कि उनके बीच अमेरिका से कपाल सिंह नाम का जासूस शामिल हो चुका है। वही सब जानकारियां पुलिस को देता रहा और विद्रोह निश्चित 23 फरवरी 1915 को होना था, लेकिन उसके पहले ही सब गिरफ्तारियां हो गई।
1: अब फिर मुकदमा का क्या फैसला हुआ दादा?
0: गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने मिलकर तय किया कि 7 लोग विद्रोह की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे और बाकी सबको फांसी की सजा से बचा लेंगे। सो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया और अदालत ने 24 आदमियों को फांसी की सजा सुनाई और बाकी को काले पानी की उम्र कैद।
2: दादा एक बात बताओ, ये पृथ्वी सिंह का नाम किस लिस्ट में था?
0: पृथ्वी का नाम तो रहा था फांसी की लिस्ट में।
2: अच्छा,
0: और जनता ने 24 आदमियों को फांसी देने के आदेश पे भारी विरोध जताया।
2: अच्छा,
0: आखिर वायसराय की काउंसिल ने आदेश बदल दिया और केवल उन 7 लोगों को छोड़ के जिन्होंने जुर्म कबूल कर लिया था, बाकी 17 को काले पानी की सजा दी गई।
2: अच्छा,
0: पृथ्वी इन 17 लोगों में आ गया।

0: इनको फांसी दी गई वो सात लोग कौन कौन थे दादा?
1: अवे रहे करतार सिंह सराबा, बख्शिश सिंह, विष्णु गणेश पिंगले,
0: अच्छा,
1: सुरेन सिंह, ईश्वर सिंह, सुरेन सिंह, भूरा सिंह, हरनाम सिंह, जगत सिंह, इन्हें लाहौर की सेंट्रल जेल में 16 नवंबर 1915 को फांसी की सजा दे दी गई।
2: अच्छा दादा, पृथ्वी सिंह काले पानी में कब तक रहे?
1: करीब 6 साल वो अंडमान की जेल में रहे।
0: अच्छा,
1: वहाँ उन पर भारी जुल्म किए गए। इतने कि एक बुजुर्ग क्रांतिकारी बाबा भान सिंह की पिटाई के कारण मौत हो गई।
0: अच्छा,
1: इस घटना के विरोध में सारे कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उधर हिंदुस्तान में अंडमान के कैदियों पर हो रहे जुल्मों को लेके भारी आंदोलन शुरू हो गया।
0: फिर
1: आखिर सरकार ने निर्णय लिया इन कैदियों को अंडमान से हटाकर हिंदुस्तान की जेल में रखा जाए। पृथ्वी को मद्रास की राजामुंद्री जेल में रखा गया। उनके हिस्ट्री टिकट पे लिखा गया, बहुत खतरनाक, सुधरना असंभव, बहुत होशियारी से संभालने की जरूरत। और पृथ्वी ने इसे सिद्ध भी कर दिया।
0: वो कैसे?
1: 2 बार चलती रेलगाड़ी से छलांग लगा के।
0: अच्छा,
1: हुआ ये कि खतरनाक कैदी मान के पृथ्वी को कलकत्ता के जेल में भेजने का निर्णय हुआ। 2 अन्य क्रांतिकारी और 3 सिपाहियों के साथ रेलगाड़ी से रवाना किया गया।
0: अच्छा,
1: रात का समय था, सभी लोग नींद के झोंके झूल रहे थे। सिपाही भी, पृथ्वी ने संडास जाने का बहाना किया। सिपाही ने उनकी हथकड़ी खोल दी, पर पैर में बेड़ियां लगी थी, तो मौका पाते ही पृथ्वी खिड़की में से बाहर छलांग लगा गए।
0: और फिर दादा, ये दूसरी बार वो कैसे भागे?
1: इसका वर्णन उनकी अपनी डायरी में कुछ इस तरह मिलता है।
0: अच्छा,
1: 16 महीने राजमंद्री जेल में रहे। अब तक चलती ट्रेन से कूदने की चोटें ठीक हो गई थी, पर फिरंगियों ने फिर से मुझे चलती ट्रेन से कूदने का दूसरा मौका दे दिया।
0: अच्छा,
1: राजामुंद्री से नागपुर ले जाते समय इस वक्त फेवरेबल चीज ये थी कि न कैदी के कपड़े थे, न बेड़ी थी और हथकड़ी भी नहीं थी।
0: अच्छा,
1: लेकिन उस वक्त जो मैंने एस्केप किया बहुत ही मिराकुलस एस्केप है।
0: अच्छा,
1: कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। इस बार मैं संडास के वेंटिलेटर से चलती मेल ट्रेन से कूदा और बचा।
2: अच्छा दादा, वो भाग के फिर गए कहाँ? पकड़े तो नहीं गए?
1: नहीं पकड़े गए। पूरे 8 बरस 1923 से 1930 तक वे सौराष्ट्र के भावनगर शहर में गुप्तवास पर रहे।
0: अच्छा,
1: वहाँ जिम्नाजिम चला के नवयुवकों को अपनी तरह हट्टा कट्ठा कसरती बनाते रहे, पर क्रांति के लिए अभी भी उनकी जरूरी भूमिका बाकी थी। सो चंद्रशेखर आजाद के बुलाने पे वो क्रांतिकारी धन्वंतरी के साथ अलाहाबाद जा पहुंचे, जहां 2 क्रांतिकारियों के बीच महत्वपूर्ण मीटिंग हुई।
3: पृथ्वी सिंह जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि 2 बार ब्रिटिश सरकार के गाल पर तमाचे जड़ने के बाद भी आप अपनी छाया भी उसे छूने नहीं दे रहे हैं।
4: भाई जी, इस प्रशंसा और हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। सच तो ये है कि हम सभी एक ही रास्ते के पथिक हैं। आज्ञा कीजिए, आपने मुझे किस लिए याद किया?
3: आप तो जानते हैं, हमारे साथी भगत सिंह दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट करने के बाद जेल के अंदर है। फिर हमारे कई साथी कमजोरियों के शिकार होकर सरकार से मिलते जा रहे हैं। अतः लगता नहीं है कि हमारा आंदोलन सफलता से आगे चल पाएगा।
4: बाबूजी, तो फिर मैंने क्या करना है?
3: भगत सिंह जी चाहते हैं कि अब आतंकवाद टेररिज्म नहीं होगा, अब तो बोल्शेविक मेथड से हिंदुस्तान में क्रांति करनी होगी। इसके लिए एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो रूस जाकर इस क्रांति की स्टडी करके आए और यहाँ आकर इसकी तैयारी कराएं।
4: मैं तैयार हूँ। मैं प्रसन्न हूँ कि मुझे आप और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ जी काम करने का मौका मिलेगा।
3: हमारी पहली भेंट के उपलक्ष्य में मैं 11 गोलियों का एक ये ऑटोमेटिक पिस्टल दल की ओर से आपको भेंट करता हूँ। रूस आप कैसे पहुँचेंगे ये व्यवस्था आपको ही करनी होगी।
4: जी, इस बहुमूल्य भेंट के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इस बात की इजाजत चाहता हूँ कि रूस जाने से पहले जी सरकार के गाल पर एक और तमाचा जड़ता जाऊँ।
3: चढ़ते जाओ, जय हिंद।
5: दादा, ये तमाचा क्या था?
1: ये तमाचा बम्बई के भीड़ भरे स्थान

0: लेमिंगटन रोड के पुलिस थाने पे धुआंधार गोलीबारी थी।
1: अच्छा, वहां पर कितना साहसी कदम था उनका।
0: लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
1: अच्छा,
0: और जेल भेज दिया।
1: फिर जेल से कैसे छूटे?
0: वहां से वे जादू के जोर से ही छूटे।
1: जादू के जोर से? वो कैसे? क्या वो जादू जानते थे?
0: बेटा, काबुल जेल की कोठरी काल कोठरी के नाम से मशहूर थी।
1: अच्छा,
0: रोज एक दो कैदी मर जाते।
1: अरे बाप रे।
0: और योग और कसरती बदन के कारण पृथ्वी पे कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था।
1: अच्छा,
0: तो लोगों में ये बात फैल गई कि पृथ्वी बड़ा जादूगर है।
1: ओ,
0: और ये बात जेलर के साले को मालूम पड़ गई, तो पृथ्वी से मिलने जा पहुंचा जेलर का साला।
2: पृथ्वी सिंह जी, मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है। लोग कहते हैं मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, कुछ कीजिए ना।
0: पृथ्वी ने देखते ही समझ लिया कि ये मानसिक बीमार।
1: अच्छा,
0: सोने जमीन से कुछ दूबा तोड़ के मंत्र पढ़ने का नाटक किया और दूबा साले को देते हुए कहा, इस दूबा को ताबीज में बंद करके गले में पहन लेना।
1: अच्छा,
0: तुम देखना प्रतिदिन तुम स्वस्थ होते जाओगे।
1: अरे वाह।
0: और दुश्मन जादूगर समाप्त हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। जेलर का साला ठीक हो गया।
1: अरे,
0: और उसने पृथ्वी को रिहा कराने में भारी मदद की।
1: अरे वाह, तो इसके बाद क्या हुआ गजबी दादा?
0: इसके बाद की कहानी बिल्कुल सीधी सादी है। वधा आश्रम में वे गांधी जी के साथ रहे।
1: अच्छा,
0: 1942 से 1947 तक आजादी के संघर्ष में काम करते रहे। आजाद भारत में भी कोई 25 बरस तक वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष रहे।
1: अच्छा,
0: 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
1: ये तो बड़े सम्मान और बड़े गर्व की बात थी, उनको मिलना ही चाहिए था ये सम्मान।
0: 1982 में अपने 90 वर्ष की उम्र में भी वे बुजुर्गों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। अमरीका में 91 वर्ष की उम्र में उन्हें लेडरले पुरस्कार और 93 वर्ष की उम्र में 100 मीटर की दौड़ में कीर्तिमान बनाने के कारण विश्व चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया।
1: अरे वाह।
0: और 5 मार्च 1989 को ये महान क्रांतिकारी देशभक्त दुनिया से कूच कर गया।
3: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से

0: हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: द करेज टू लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट चेंज.
1: सो ब्यूटीफुल.
0: तो मैंने सर चेंज भी क्यों करूं.
1: हाँ.
0: मैंने तो ये बोला, मैंने बोले फिर दूसरे को मैं क्यों चेंज करूं, अपने को करूं ना.
1: दूसरे को क्यों चेंज करूं, नहीं कर दूसरे से चेंज कर ही नहीं.
0: हाँ.
1: सकते.
0: तो मैंने उल्टा अपना अपने ऊपर ही वर्क किया एंड आई एम द हैप्पीएस्ट टुडे.
1: वेरी गुड. सी एंड इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज व्हाट वी थॉट इट वुड बी.
0: जी.
1: इट्स वेरी सिंपल. अब इसका फायदा क्या होगा. नॉर्मली क्या होता था, जब हम पास्ट एक्सपीरियंस को लेट गो नहीं करते एंड हम उसको यहां पकड़ के रखते हैं, तो जब हम नेक्स्ट टाइम उस व्यक्ति से मिलते हैं या नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन में जाते हैं, तो हमारी पास्ट की जो थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, वो ऑलरेडी उस व्यक्ति की एक पिक्चर पेंट कर देते हैं. एंड वो पिक्चर यहां पेंट होती है, राइट. एंड देन वी सी दैट पर्सन थ्रू दैट पिक्चर ओनली. सपोज पास्ट में कोई एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ हुआ एंड मैंने यहां एक रजिस्टर किया, ये ऐसे हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू, मैंने उस इमेज के थ्रू ही आपको देखना है. एंड क्योंकि मैंने उस इमेज के थ्रू ही आपको देखना है, आप थोड़ा सा कुछ भी कहेंगे या करेंगे, मेरा यहां जो रजिस्टर है वो इंडोर्स कर देगा. मैंने कहा हाँ देखा, ये तो है ही ऐसे. एंड देन आई विल नेवर बी एबल टू सी यू इन अ डिफरेंट वे. And we can live years and years and years. The other person also could have changed, but we will never be able to see that change in the other person
0: because we are seeing through
1: the past labels and the images that we have created.
0: And that colored chashma jo aap kehte hain.
1: And that's very risky. That's very risky. So, ab jabki hum us past memory ko let go karenge, jab hum next time unko milenge, hum ek fresh nazariye se milenge. एक फ्रेश नजरिए से कि टुडे न्यू बिगिनिंग, अ न्यू वे ऑफ बीइंग विद देम.
0: आपने एक एपिसोड में मुझसे कहा था कि जब भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो जैसे कि आप उसको पहली बार जीवन में मिल रहे हो.
1: मतलब उसके साथ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको हटा के अब हमें उसको मिलना है. ये एक बहुत बहुत बहुत पावरफुल टूल है, इसको हमें रोज करना है.